उसका 11 वर्षीय बेटा रंगनाथ चित्तूर के जिला जज के घर जा पहुंचा। उसने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जज साहब, आप मेरे पिता को एक दिन के लिए जेल से छुड़वा दें, वो मेरे बाबा का श्राद्ध करके वापस जेल चले जाएंगे। जज ने कहा कि बिना जमानत लिए मैं कैसे किसी को जेल से छुड़ा दूं। रंगनाथ ने कहा, ठीक है जज साहब, पिताजी की जगह आप मुझे जेल भेज दीजिए। मेरे स्वर्गीय दादाजी का श्राद्ध नहीं हुआ तो मेरी दादी जीवित नहीं रहेगी। जज एक बालक की अनूठी पितृभक्ति और स्वर्गीय दादा के प्रति कर्तव्य बोध को देखकर दंग रह गए। उन्होंने खुद ही जमानत नामे पर हस्ताक्षर किए और किसान को जेल से रिहा करा दिया। पितृभक्त वो बालक आगे चलकर दक्षिण भारत के अग्रणी विद्वान रंगनाथ शास्त्री के नाम से जाना गया।

0: भजन या किसी भी अन्य प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य जीवन का जश्न मनाना है, और हमें ये जीवन देने के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वजह से संगीत के साथ ये गाए हुए शब्द भजन कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन। ईश्वर ने शुरुआत में ही मनुष्य को इस तरह बनाया था कि उन्हें न खाने पीने की आवश्यकता थी, न काम करने की, न कपड़े लत्ते की और न घर में रहने की। उन दिनों सब तंदुरुस्त हुआ करते थे और उनकी औसत आयु भी 100 वर्ष के आसपास हुआ करती थी। इसकी वजह यह थी कि लोगों में कोई बीमारी थी ही नहीं, उन्हें पता भी नहीं होता था कि बीमारी कोई चीज है। ईश्वर मनुष्य को बनाकर निश्चिंत हो गए और उन्हें लगा कि संसार में सब अच्छा ही रहेगा। कुछ दिन बाद उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर चलकर देखें कि इंसान रह कैसे रहा है। तब वो पृथ्वी पर आए। उन्हें यह देखकर बेहद हैरानी हुई कि मनुष्य सुखी नहीं था। वे रात दिन आपस में लड़ते झगड़ते थे। उन्हें सिर्फ अपने दुख सुख की चिंता थी और इसके लिए हर कोई दूसरे को परेशान किया करता था। ऐसा करके हर एक ने अपना जीवन विषाद पूर्ण बना दिया था और वे रात दिन संसार को ही कोसने में लगे रहते थे। बहुत सोचने के बाद ईश्वर को समझ में आया कि शायद इंसान अलग अलग रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, इस वजह से शायद वह अपने ही जीवन के बारे में सोचता रहता है। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर मनुष्य का कोई ना कोई काम हो जिसके बगैर उसका जीवन ना चल सके। तो अब मनुष्य के पास काम भी आ गया। उन्हें खेती करनी होती थी, अपने खाने के लिए अनाज उगाना पड़ता था, साथ ही सर्दी बारिश धूप से बचने के लिए घर बनाना पड़ता और फिर तन ढकने के लिए सूत भी काटना पड़ता। ईश्वर ने सोचा कि ये सारे काम अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, इसके लिए उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। इस तरह मिलकर काम करने से उनमें एकता की भावना पैदा होगी और ये दूसरे के जीवन की कीमत समझ सकेंगे। औजार बनाना, मकान बनाना, लकड़ी काटना, ढोना, अनाज बोना, सूत काटना, कपड़े बनाना, ये सभी काम अकेले कर पाना तो मनुष्य के लिए संभव था ही नहीं। इसी से मनुष्य को समझ में आ जाएगा कि जितनी अच्छी तरह वह दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करेगा उतना ही सुखी रह सकेगा। अंत में उसे एकता की कीमत पता चल जाएगी। ईश्वर यह सब प्रबंध करके निश्चिंत हो गए। कुछ समय बीता तो वह फिर से मनुष्यों को देखने आए कि वो लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं या नहीं, उनका जीवन सुखमय हुआ या नहीं। वो ये जानकर और दुखी हो गए कि मनुष्यों का जीवन तो पहले से भी बदतर हो गया था। वे साथ साथ काम तो करते थे क्योंकि ऐसा करना जरूरी था, मगर सब एक साथ नहीं थे। उन्होंने छोटे छोटे दल बना लिए थे। हर दल दूसरे के काम छीनने की कोशिश में लगा रहता था। वे एक दूसरे के काम में विघ्न डालकर अपनी शक्ति और समय को लड़ाई झगड़े में नष्ट कर रहे थे। सभी की दशा बुरी थी। ईश्वर को लगा यह व्यवस्था भी तो ठीक नहीं है। तब उन्होंने ऐसा उपाय किया कि मनुष्य को मृत्यु का सामना करना पड़े और मृत्यु भी ऐसी हो कि उसके समय का पता ही ना चले, कोई भी अचानक कहीं भी मर जाए। ईश्वर ने इस बात की घोषणा मनुष्य के बीच में कर दी। ईश्वर को आशा थी कि किसी भी समय मृत्यु आ जाने की बात जानने पर मनुष्य अपने जीवन के अनिश्चित समय को बर्बाद नहीं करेगा और क्षणिक लाभ के लिए आपस में झगड़ा नहीं करेगा, परंतु परिणाम उल्टा ही रहा। जब ईश्वर मनुष्यों की दशा को पता लगाने के लिए वापस लौटे तो देखा कि उनकी दशा तो इस बार भी बुरी ही थी। मनुष्यों में जो अधिक बलशाली थे उन्होंने इस मृत्यु वाले फलसफे का फायदा उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था में किसी की भी मौत कहीं भी आ सकती थी, तो ऐसे में सबल लोगों ने निर्बलों को मार डाला
1: और बहुतों को मारने की धमकी देकर प्रताड़ित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बलवान लोग और उनके परिवार वाले खुद तो कुछ करते नहीं थे, लेकिन निर्बलों को खटाते रहते थे। धनी लोग आलस्य और बेकारी के कारण दुखी थे, जबकि गरीबों को अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ता था। उन्हें न तो अपने लिए और न परिवार के लिए समय मिल पाता था। यही नहीं, दोनों पक्ष एक दूसरे से डरते और असुरक्षित भी थे। एक दूसरे से वो नफरत करने लगे। तो कुल मिलाकर मनुष्य का जीवन पहले से भी अधिक दुखी हो चुका था। यह सब देखकर ईश्वर असमंजस में पड़ गए। मनुष्यों की दशा में सुधार करने की इच्छा से उन्होंने एक आखिरी उपाय करने की ठानी। मौत जैसी व्यवस्था करने के बाद उन्होंने मनुष्यों के बीच रोग फैला दिए। हर मनुष्य को तरह तरह के रोगों का सामना करना पड़ता। ईश्वर ने सोचा, जब मनुष्य बीमार होगा, शरीर और मन से लाचार होगा, तो उसे दूसरों की तकलीफों के बारे में पता चलेगा। तब उसे समझ में आएगा कि जो लोग स्वस्थ हैं उन्हें बीमारों पर करुणा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि जब वो खुद रोग के कारण कष्ट भोग रहे हों तो दूसरे लोग उसी तरह उनकी भी मदद करें। ईश्वर इस व्यवस्था के बाद निश्चिंत थे कि इसका मनुष्य जाति को जरूर लाभ होगा। सारा प्रबंध करके वो वापस अपने लोक में चले गए। काफी समय बीतने के बाद वो एक बार फिर से पृथ्वी पर देखने के लिए लौटे कि उनका बनाया मनुष्य अपने घर, कपड़े, अनाज, रोग और मृत्यु के साथ किस तरह जीवन यापन कर रहा है। क्या वो अब सुखी है, या फिर अब भी उसके पास ढेर सारी शिकायतें हैं? कहना ना होगा कि इस बार मनुष्य की हालत देखकर तो ईश्वर भी पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने देखा कि किस तरह तरह के रोगों के हमला होने के कारण लगभग सभी मनुष्य कष्ट भोग रहे हैं और उनके जीवन का सुख चैन गायब हो चुका है। वे पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगे हैं। ईश्वर ने जिन रोगों को मनुष्य के बीच इसलिए फैलाया था ताकि उनके बीच मेलजोल, भाईचारा बढ़े, वही रोग उन्हें अलग अलग कर रहे थे। जिन मनुष्यों में दूसरों से अपना काम कराने की क्षमता थी, वे रोगी होने पर निर्बलों से अपनी सेवा करा लेते थे, लेकिन दूसरों के बीमार पड़ने पर खुद कभी भी उनकी मदद को नहीं जाते थे। यह अजीब सी व्यवस्था थी कि यहां भी निर्मल पिस रहा था। इस तरह बलशाली और निर्बल के बीच की खाई और बढ़ती जा रही थी। निर्बलों को बलवान के लिए काम करना पड़ता। इसके अलावा जब भी वे बीमार होते तो भी उन्हें धनवानों की सेवा करनी पड़ती। इन सब से इतना थक जाते कि ना तो खुद पर और ना अपने परिवार पर ही ध्यान दे पाते। उन्हें अपने ही घर के रोगियों की देखभाल या मदद करने का वक्त ही ना मिल पाता। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा दुखदायी पहलू यह था कि निर्धन रोगियों और उनके कष्ट से भरे दृश्य धनवानों के भोग विलास में बाधा न डाल सकें, इसके लिए कुछ अलग घरों की व्यवस्था कर दी गई। यहां निर्धन रोगियों को रख दिया गया, यहीं पड़े पड़े वो मर जाते थे। विडंबना यह थी कि मरते दम तक उनके प्रिय संबंधी उनके पास नहीं आ पाते थे। भाड़े पर रखे हुए कुछ लोग उनके अंतिम समय में उनके पास रहते, जिन्हें उनके सुख दुख या पीड़ा के बजाय अपने वेतन की परवाह होती। वे बिना किसी सहानुभूति के मरीजों की सेवा करते, साथ ही उनसे घृणा भी करते। इसके अलावा

बहुत से रोगों को संक्रामक समझकर लोग न सिर्फ उन रोगियों से बल्कि उनकी सेवा करने वालों से भी दूर रहा करते। इस तरह की व्यवस्था ने इंसान को कई तरह से बांट दिया और वो बेहद दुखी हो गया। तब ईश्वर ने सोचा कि जब मेरे इतने उपायों के बाद भी मनुष्य एकता का महत्व नहीं समझ पाया है, वह नहीं देख पाया है कि उसे वास्तविक आनंद कैसे मिल सकता है, तो फिर उसे उसकी हाल पर ही छोड़ देना ठीक है। शायद बहुत दुख सहने के बाद उसे थोड़ी अक्ल आ जाए। अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था और मनुष्य से आहत होकर ईश्वर इस बार यूं ही वापस चले गए। कहते हैं कि इस तरह मनुष्य हमेशा के लिए अकेला और बेसहारा हो गया। बहुत समय तक ऐसे ही रहने के बाद उसे समझ में आया कि उसे सुखी होना चाहिए और वो सुखी रह सकता है। उसे समझ आने लगा कि उनके सुख का दायित्व उन्हीं पर है, उन्हें बचाने वाला अब कोई नहीं है। अभी थोड़े ही दिन हुए जब कुछ मनुष्यों ने काम की अहमियत को जाना। उन्होंने समझा कि काम के आधार पर मनुष्य को कमतर या उच्चतर नहीं समझना चाहिए। काम से हर मनुष्य को सुख मिलना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य के बीच एकजुटता का भाव बना रहे। अब वो समझ गए हैं कि जीवन क्षणभंगुर है और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जीवन का जितना भी समय हमारे हाथ में है, उसका प्रत्येक साल, महीना, दिन, घंटा और मिनट हमें प्यार और सौहार्द के साथ बिताना चाहिए। वे समझने लगे हैं कि रोग हमें एकता की ताकत समझाने के लिए आते हैं, इसलिए दूसरे की दुख, बीमारी और कष्ट में उनकी मदद करना हर इंसान का कर्तव्य है।

भजन सुनने से, गाने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि भजन प्रतिरक्षा को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। मतलब हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं भजन। चिंताएं दूर होती हैं, भजन भक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है, आसपास के अशुद्ध वातावरण का नाश हो जाता है। तो लीजिए सुनते हैं ये भजन। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready. Dil ready. मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। जब भगवान के दरबार में एक छोटी सी भक्ति पहुंची। आपने कभी सोचा है भगवान के सामने भक्ति की कीमत होती क्या है? क्या बड़े बड़े फूल चढ़ाने से भक्ति बड़ी हो जाती है, या महंगी पूजा की सामग्री से भगवान ज्यादा खुश हो जाते हैं, या फिर भक्ति बस भक्ति होती है? आज की कहानी एक ऐसी ही लोक कथा है, वृंदावन के एक पुराने मंदिर की लोक कथा। एक छोटी सी लोमड़ी की, एक पुजारी की, एक सांप की और एक मोर पंख की। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, भक्ति करने वाला कौन है? शायद भगवान के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जाता है कि वृंदावन के एक प्राचीन मंदिर में मुख्य पुजारी हर रात ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से चंदन घिसा करते थे। सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुलते तो कुछ अजीब सा नजर आता। भगवान के चरणों के पास रखा हुआ चंदन इधर उधर बिखरा हुआ होता था, और साथ में एक बहुत छोटे से जानवर के पंजों के निशान होते थे। पुजारी ने सोचा, अरे कोई चूहा मंदिर में घुसा रहा है, और उन्हें लगा कि वो पवित्र चंदन खराब कर रहा है। अब सच जानने के लिए एक रात पुजारी ने हाथ में डंडा लिया और मंदिर के एक कोने में छुपकर बैठ गए। रात गहरी हो चुकी थी, वृंदावन सो रहा था, मंदिर में सन्नाटा था, बस कहीं दूर से हवा की हल्की सी आवाज, और मंदिर के अंदर ठाकुर जी के सामने जलता हुआ एक दिया। तभी खिड़की से एक छोटी सी लोमड़ी अंदर आती है। पुजारी ने जैसे ही उसे देखा, डंडा उठाने वाले ही थे, लेकिन उनके हाथ वहीं रुक गए। और क्यों? क्योंकि लोमड़ी चंदन को बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी, वो धीरे से आई, अपने मुंह में एक छोटा सा तुलसी का पत्ता दबाया, उस पत्ते को चंदन में लगाया, और फिर अपने छोटे छोटे पंजों से भगवान कृष्ण के चरणों में उसे रख दिया। पुजारी बस देखते ही रह गए, जिसे वो अब तक शरारत समझ रहे थे, वो तो पूजा थी। सोचिए जरा, ना उस लोमड़ी को मंत्र आता था, ना उसे पुजारी की विधि पता थी, ना उसके पास फूलों की कोई टोकरी थी, ना कोई बड़ी पूजा की थाली थी, बस एक तुलसी का पत्ता, थोड़ा सा चंदन और शायद बहुत सारा प्रेम। और कभी कभी ना, भक्ति में हमें शायद इतना ही काफी होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक मंदिर के एक कोने से काला जहरीला सांप बाहर निकला। उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ी, लोमड़ी ने भी सांप को देख लिया। पुजारी डर के मारे जैसे जम गए वहीं, और लोमड़ी वो सीधा ठाकुर जी की मूर्ति से चिपक गई।
जैसे कह रही हो। अब तो आप ही बचा सकते हैं प्रभु। और फिर इस लोक कथा के मुताबिक एक अद्भुत घटना हुई। ठाकुर जी के मुकुट में लगा हुआ मोर पंख अचानक नीचे गिरा और ऐसे गिरा कि सांप और लोमड़ी के बीच एक दीवार की तरह आ गया। कहा जाता है कि उस मोर पंख से एक दिव्य प्रकाश निकला। सांप पीछे हटा और मंदिर से बाहर चला गया और उसी पल मंदिर में एक बहुत बहुत मधुर बांसुरी की गूंज उठी। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। वो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें जैसे एक बात समझ आ गई उस दिन। भगवान के लिए भक्ति का आकार नहीं होता, बस भक्त होता है। भक्त बड़ा हो या छोटा, इंसान हो या कोई छोटा सा जीव, प्रेम और भाव वही काफी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप उस पुजारी की जगह होते और रात के सन्नाटे में एक लोमड़ी को मंदिर में आके पूजा करते हुए देखते तो आप क्या करते? डंडा लेकर भगा देते या चुपचाप खड़े होकर उसकी सारी प्रक्रिया देखते? और अगर आपको वो मोर पंख गिरते हुए दिख जाता तो क्या आप भी उसे संयोग समझते या ईश्वर का एक इशारा? इस कहानी को हम आस्था की नजर से देखें या एक लोक कथा की तरह सुने, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा और सुंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बड़ी बड़ी पूजा, बड़े बड़े चढ़ावे, बड़े बड़े मंत्र, लेकिन शायद सच्ची भक्ति का मतलब बहुत कुछ कर देना नहीं, सच्चे मन से याद करना है। एक तुलसी का पत्ता ही काफी हो सकता है अगर उसमें प्रेम हो और भाव हो। एक छोटी सी प्रार्थना भी काफी हो सकती है अगर उसमें विश्वास हो, और कभी कभी बिना कुछ कहे भी दिल की बात भगवान तक पहुंच जाती है। और शायद इसीलिए वृंदावन की गलियों में भक्ति को समझने के लिए बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी किसी मंदिर की घंटी सुन लीजिए, कभी यमुना के किनारे बैठ जाइए, कभी बांसुरी की धुन में खो जाइए और खुद से पूछिए, मेरी भक्ति में कितना दिखावा है और कितना प्रेम। भगवान को हम क्या दे रहे हैं? शायद उससे बहुत ज्यादा मायने ये रखता है कि हम किस भाव से दे रहे हैं। तो आज की बातें इधर की उधर की ये छोटी सी कहानी, इस छोटी सी बात ने अपने साथ ले जाइए। भक्ति को बड़ा बनाने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल सच्चा होना चाहिए। और हाँ, आपके लिए भगवान से जुड़ी ऐसी कोई छोटी सी कहानी, कोई याद या आस्था का किस्सा है तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, मैं कहती हूँ हमेशा वो महसूस की जाती हैं अंदर तक। मैं हूँ आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, जहाँ कभी एक छोटी सी कहानी में एक छोटी सी बात हमारे दिल में एक बहुत बड़ी सी जगह बना लेती है, बनाती है ना। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सिंटू जो था चुनाव में खड़ा हुआ, उसे सिर्फ 3 वोट मिले। सिंटू ने पुलिस से जेड प्लस की सिक्योरिटी मांगी। पुलिस ने बोला, अबे तुम्हें सिक्योरिटी क्यों चाहिए? सिंटू बोला, जिस शहर में इतने लोग मेरे खिलाफ हैं, वहां तो मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए ना।

0: और अब बात इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: देश सेवा से कृषि सेवा तक। दोस्तों, कभी मेरी सुबह आसमान की तरफ देखते हुए शुरू होती थी, आज मेरी सुबह जमीन को देखते हुए शुरू होती है। कभी आंख खुलते ही दूर से आती जेट विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, कभी किसी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस एक्टिविटी की आवाज, टेक्निकल चेक्स की हलचल, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की आवाजें और अचानक बजता हुआ सायरन। इन दिनों जब मैं अपने खेत पर होता हूँ, सुबह होती है तो सबसे पहले सुनाई देती है गाय और बैलों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट, हवा में पत्तों की सरसराहट और कभी कभी खेत में चल रहे ट्रैक्टर की आवाज। अजीब लगता है, हाँ थोड़ा तो लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी के 35 साल भारतीय वायुसेना में बिताए हैं और अब मैंने खेती को अपना दूसरा करियर चुना है। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है जैसे मैंने दो बिल्कुल अलग जिंदगियां जी हैं। एक जिंदगी मशीनों और आसमान की थी, दूसरी जिंदगी जमीन और मिट्टी की है। पहली जिंदगी में मैं भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर था। मेरी दुनिया एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम्स और रडार्स के मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस की दुनिया थी। मैं उन लोगों में था जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो भी एयरक्राफ्ट और सिस्टम्स हमारे पास हैं, जब जरूरत पड़े तब वह ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह से तैयार मिले। वायुसेना में मशीन केवल मशीन नहीं होती, उसके पीछे एक मिशन होता है और उस मिशन के पीछे आपकी जिम्मेदारी। एक छोटी सी टेक्निकल कमी को भी नज़रअंदाज करने की गुंजाइश नहीं होती। हर इंस्पेक्शन, हर चेक, हर रिपेयर का अपना महत्व होता है और शायद इसी ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई है, काम कोई भी हो उसे पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। मेरे करियर का सबसे यादगार और चुनौतीपूर्ण दौर था कारगिल युद्ध, ऑपरेशन सफ़ेद सागर और बाद में ऑप विजय। उस समय हम केवल अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे थे, हम एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा थे जहां हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हमारा काम था अपने एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स को ऑपरेशनली रेडी रखना। उन दिनों मशीन्स की एक एक आवाज़ का अपना ही अर्थ था। जीपीयू और जेनसेट्स के इंजन की गड़गड़ाहट सुनकर पता चलता था कि कोई एयरक्राफ्ट या मशीन तैयार हो रही है। टेक्निकल टीम्स अपना काम करती थी, मेंटेनेंस चेक्स होते थे और फिर वही एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम अपने मिशन के लिए तैयार किए जाते थे। मुझे यह एहसास पूरी तरह से था कि मेरी मेज पर किया गया एक टेक्निकल डिसीजन कहीं बहुत दूर किसी मिशन का हिस्सा बन सकता है। और फिर 35 साल बाद अपने रिटायरमेंट के दिन मैंने अपनी यूनिफॉर्म हमेशा के लिए दीवार पर टांग दी। सच कहूँ तो वर्दी उतारना आसान था, लेकिन वर्दी वाली जिंदगी से बाहर आना बहुत मुश्किल था। अगले दिन अचानक सुबह की ब्रीफिंग नहीं थी, टेक्निकल इंस्पेक्शंस नहीं थे, एयरक्राफ्ट रेडीनेस की चिंता नहीं थी, मिसाइल सिस्टम्स के चेक्स नहीं थे। एक ऐसी दिनचर्या जिसमें 35 साल बीत गए थे अचानक बदल गई थी। कुछ समय के लिए लगा जैसे जीवन की आवाज़ धीमी हो गई है, लेकिन शायद जीवन खत्म नहीं हुआ था, बस उसकी आवाज़ बदल गई थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में आई अपनी पुश्तैनी खेती। शुरुआत में यह केवल एक नया काम था, धीरे धीरे यह एक नई जिम्मेदारी बन गया और फिर एक नया जुनून। आज मेरी दुनिया में रनवे नहीं है, मेरे सामने खेत है, एयरक्राफ्ट हैंगर नहीं है, मेरे सामने पशुओं का बाड़ा है, टेक्निकल मैनुअल्स नहीं है, मेरे हाथ में मिट्टी है और अब मेरी सबसे बड़ी मशीन शायद मेरा अपना ट्रैक्टर है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना मैंने खेती को समझना शुरू किया, उतना ही महसूस हुआ कि वायुसेना और खेती एक दूसरे से उतनी अलग भी नहीं है जितनी पहली नज़र में लगती थी। वहाँ भी तैयारी चाहिए थी, यहाँ भी तैयारी चाहिए। वहाँ हर सिस्टम को समय पर सर्विस करना पड़ता था, यहाँ खेतों की समय पर जुताई, खाद, पानी और देखभाल चाहिए। वहाँ इक्विपमेंट की छोटी छोटी कमी बड़ी समस्या बन सकती थी। यहाँ मिट्टी, बीज, खाद, पानी या दवाई की छोटी सी कमी पूरी फसल को प्रभावित कर सकती है। वहाँ मेंटेनेंस शेड्यूल होता था, यहाँ मौसम अपना शेड्यूल खुद बनाता है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही है, प्रकृति को आदेश नहीं दिया जा सकता, हमें उसके साथ काम करना पड़ता है और काम करने के लिए चाहिए एक प्रभावी टीम। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि एयरफोर्स में मेरे साथ हमेशा एक बहुत ही प्रोफेशनल, प्रभावी और कर्मठ टीम थी और यहाँ भी मेरे साथ बहुत ही अनुभवी, मेहनती और कुशल टीम है जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कृषि कार्य की उन्नति के लिए पूर्णतः समर्पित है। वहाँ मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ब्रिलियंट सीनियर ऑफिसर्स का गाइडेंस प्राप्त था और यहाँ मुझे अपने बहुत ही अनुभवी और उन्नत कृषि कार्य में सफल चाचा जी, बड़े भाई, कजिन्स और गांव के बुजुर्ग कृषकों का मार्गदर्शन प्राप्त है। खेती ने मुझे मिट्टी को पढ़ना सिखाया है, कब जमीन तैयार करनी है, कहाँ क्या उग सकता है, कब बीज डालना है, कब इंतज़ार करना है और सबसे महत्वपूर्ण, कब कुछ न करके सिर्फ प्रकृति को अपना काम करने देना है। कभी सुबह खेत में जाकर मिट्टी हाथ में लेता हूँ, उसकी नमी महसूस करता हूँ, पौधों को देखता हूँ, कहीं नई कोपल निकली या नहीं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं, कहीं खाद या पानी की कमी तो नहीं, कहीं ज़मीन को और पोषण की ज़रूरत तो नहीं। अब मेरा काम केवल फसल उगाना नहीं है, अब मैं अपने फार्म लैंड को विकसित कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसे और बेहतर बना रहा हूँ, ज़मीन को समझ रहा हूँ, उसकी क्षमता को पहचान रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ, पानी और मिट्टी के बेहतर उपयोग के बारे में सोच रहा हूँ, पशुओं की देखभाल कर रहा हूँ और एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ खेती सिर्फ उत्पादन ना हो बल्कि एक जीवंत इकोसिस्टम हो। शायद यही इस दूसरी बड़ी पारी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ मैं केवल चीज़ों को मेंटेन नहीं कर रहा, मैं कुछ नया उगा रहा हूँ। वायुसेना में मेरा लक्ष्य था ऑपरेशनल रेडीनेस, यहाँ मेरा लक्ष्य है इंक्लूसिव ग्रोथ। कभी सुबह मुझे जेट विमानों की गड़गड़ाहट जगाती थी, आज सुबह पशुओं की घंटियाँ जगाती है। कभी मशीनों की आवाज़ मेरे दिन की पहचान थी, आज पक्षियों की चहचहाहट है। और सच कहूँ, आसमान की आवाज़ बहुत शानदार थी लेकिन ज़मीन की यह खामोशी बहुत सुकून देती है। शायद यह रिटायरमेंट नहीं है, यह मेरी दूसरी पारी है। पहले एक पारी देश सेवा की थी, अब एक पारी कृषि सेवा की है। पहली पारी में राष्ट्र की रक्षा, दूसरी पारी में धरती और कृषि की सेवा। दोस्तों, मेरा सफ़र अभी बाकी है और अपनी अंतिम सांस तक मैं यही कहकर इसे जारी रखूंगा, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: देखो भैया, जो गिरने से डरते हैं ना, वो उठने का मजा कभी नहीं ले पाते।

सर पे

इतनी ऊंचाई कभी मत देना। अटल बिहारी वाजपेयी और इंसानियत की एक खूबसूरत बात। जिंदगी में हम सब ऊंचाई चाहते हैं ना, हमारा नाम हो, कामयाबी हो, लोग पहचाने, हमारा एक स्तर हो। लेकिन एक बार सोचिए, अगर बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर हम जमीन से ही जुड़ना भूल जाएं, तो क्या होगा? अगर पद बड़ा हो जाए लेकिन दिल छोटा हो जाए, अगर हमारे पास पावर आ जाए लेकिन किसी आम इंसान को गले लगा लेने की जगह ही नहीं बचे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत खूबसूरत कविता की पंक्ति कहती है, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ही ना लगा सकूं। यानी प्रभु मुझे इतना बड़ा मत बना देना कि मैं दूसरों को अपनाना ही भूल जाऊं। कितनी अजीब बात है ना, हम भगवान से अक्सर कहते हैं मुझे ऊंचाई दे, मुझे तरक्की दे, मुझे ये स्तर दे, वो स्तर दे, ये पोजीशन दे। और यहाँ एक आदमी कह रहा है ऊंचाई देना लेकिन इतनी नहीं कि इंसानियत छूट जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी के कुछ प्रसंग इस बात को समझने का पूरा मौका देते हैं, उनका एक प्रमाण है। 1957 में जब वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, तब वो जवाहरलाल नेहरू के विरोधी पक्ष के एक युवा सांसद थे। उनकी भाषण कला और संसद में उनकी उपस्थिति ने नेहरू का ध्यान खींच लिया। एक बार नेहरू ने उनका परिचय एक विदेशी मेहमान से करवाते हुए कहा, ये युवा आदमी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सोचिए, राजनीति में मतभेद थे, विचारधाराएं अलग थीं, लेकिन एक नेता ने दूसरे नेता की प्रतिभा को पहचाना, और शायद यही होती थी लोकतंत्र की असली खूबसूरती। विचार अलग होते थे लेकिन सम्मान जरूरी है और अलग कभी नहीं हो सकता। फिर 1977 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने। साउथ ब्लॉक के दफ्तर में एक दिन उन्होंने दीवार पर एक खाली जगह देखी। उन्होंने पूछा, यहां पंडित जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी ना, वो कहां गई? कहा जाता है कि उन्होंने उसे वापस लगवाने को कहा और जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट फिर से वहीं लगा दिया गया। अब जरा गौर कीजिए, आप किसी से राजनीतिक रूप से सहमत नहीं हैं, आपने उसकी नीतियों की आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी आप उसके सम्मान की जगह बनाकर रखते हैं। यही होता है मतभेद और मन भेद के बीच का फर्क। आप बताइए, आज के समय में अगर आप किसी से बिल्कुल सहमत ना हो तो क्या आप फिर भी उसके अच्छे काम की तारीफ कर सकते हैं? सिर्फ एक बार बिना लेकिन लगाए हुए, वो अच्छा था, लेकिन वो लेकिन हमेशा हमारे साथ रहता है जब हमें अंदर से पता है कि हम सामने वाले की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। हम सबके पास ये लेकिन बहुत जल्दी आ जाता है। शायद असली बड़ेपन की पहचान यही है कि हम ये कह पाएं, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। 1984 के दिनों में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख समुदाय के खिलाफ बहुत हिंसा हुई। वाजपेयी जी के रायसेना रोड स्थित घर के पास सिख टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाने वाली भीड़ के सामने उनके हस्तक्षेप के प्रसंग कई वर्णों में किए जाते हैं। मिंट ने भी इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने उस समय की हुई हिंसा के बारे में खुलकर बात की। ये बात आसान नहीं थी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी भीड़ के साथ खड़े होना बहुत आसान होता है, लेकिन भीड़ के खिलाफ खड़े होकर सही बात कहना बहुत मुश्किल।
और यही सवाल हम सबके लिए भी है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी छोटी बड़ी भीड़ें होती हैं, कहीं ऑफिस की भीड़, कहीं परिवार की भीड़, दोस्तों की भीड़, सोशल मीडिया की भीड़, सब एक तरफ जा रहे हैं और हम बिना सोचे समझे उधर ही चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी दिल पूछता है, रुको रुको, कि क्या ये सच में सही है? खुद से पूछो, उस पल अपनी सोच के साथ खड़े रहना, शायद वही असली हिम्मत है। 2003 में इराक को लेकर अमेरिका चाहता था कि भारत अपने सैनिक भेजे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी बाद में कहा था कि वो इंडियन ट्रूप्स चाहते थे, लेकिन भारत ने अपनी सहमति नहीं दी और भारत ने इराक में सैनिक भेजने का फैसला नहीं किया। यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है, बड़े पद पर होने का मतलब ये नहीं है कि हर बड़े देश की बात मान ली जाए। कभी कभी अपना फैसला खुद लेना भी जरूरी होता है, आखिर हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। और 2004 के बाद एक और दिलचस्प प्रसंग सामने आता है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वाजपेयी जी से कश्मीर शांति की प्रक्रिया में एक स्पेशल ऑनवॉय की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। वाजपेयी जी ने वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये बात अपने आप में मायने रखती है कि एक नए प्रधानमंत्री ने अपने पुराने राजनीतिक विद्रोही की सलाह और भूमिका को महत्व दिया। और यहां एक और बहुत खूबसूरत बात निकल कर आती है।

लेकिन शायद हर डिसएग्रीमेंट को दुश्मनी बनाना जरूरी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 93 साल जिए, कवि रहे, सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी वो एक पंक्ति सबसे अलग खड़ी नजर आती है। मुझे उतनी ऊंचाई मत देना कभी कि गैरों को गले ही ना लगा सकूं, क्योंकि ऊंचाई का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता, ऊंचाई का मतलब है ऊपर जाकर भी नीचे खड़े इंसान को देख पाना, उसके लिए एक नजर रखना, एक नजरिया रखना, एक स्पेस रखना। तो आज का छोटा सा सवाल आपके लिए बहुत जरूरी सवाल है, आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई चाहते हैं? जितनी मिले मिलती रहे, लेकिन साथ में एक और चीज भी मेरे कहने से मांग लीजिए, दिल में इतनी जगह बनी रहे कि हम अपनों को भी गले लगा सकें और गैरों को भी इंसान समझ सकें, क्योंकि आखिर में पद चला जाता है, तालियां रुक जाती हैं, नाम भी एक दिन सिर्फ किताबों में रह जाता है। लेकिन आपने किसी के साथ कैसा बर्ताव किया, ये बात किसी ना किसी के दिल में हमेशा रह जाती है। मैं हूं आरजे तनुषा, आप सबके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, कि आज की ये बहुत ही जरूरी कहानी। आज की बात इतनी सी थी, ऊंचाई जरूर मांगिए, बस इतनी नहीं कि इंसानियत नीचे छूट जाए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: आजकल के बच्चों से तो मच्छर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है भैया, शाम होते ही घर तो आ जाते हैं।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
2: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
4: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: कुछ बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैंने वक्त को दे रखी है।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिनका देश प्रेम किस तरह से परवान चढ़ा और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक मिसाल बन गया। उस दिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो नौजवान एक किताब को लफ्ज दर लफ्ज पढ़े जा रहा था और कभी आसमान की ओर तो कभी जमीन की ओर मुंह किए आंसू बहा रहा था। लिखने वाले इतालवी विचारक ग्यूसेप मैजनी ने क्या खूब लिखा था, हर लफ्ज धारदार। आपका देश आपका मंदिर होना चाहिए, शिखर पर ईश्वर और आधार में एक समान लोग। पर आपका देश तो गुलामी से लहू लुहान है, हम अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें तो एक कदम रखते हुए भी देश का आभार मानना चाहिए, पर क्या हम ऐसा मानते हैं? वो युवा सोच सोच कर बिलख रहा था कि कोई इतने साफ तरीके से राष्ट्र व राष्ट्र प्रेम के बारे में कैसे बता रहा है। मैजनी मनुष्य के कर्तव्य बता रहे थे कि आपका देश क्या है, देश आपसे क्या चाहता है। क्या केवल आप ही देश से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और देश आपके प्यार के लिए हर पल तरसता रहता है? देश के बिना आपके पास न तो कोई नाम है, न निशान है, न आवाज है, न ही कोई हक। पर ऐसे देश को आपने कितना प्यार दिया। मैजनी यहां तक लिख देते हैं कि ईश्वर ने आपको मानवता की सेवा के लिए एक देश दिया है। अपने देश में किसी भी तरह की गुलामी और असमानता से मुकाबले के लिए आपका जन्म हुआ है। उस नौजवान की रुलाई रोके नहीं रुक रही थी। मैजनी बताए चले जा रहे थे कि वोट, शिक्षा, कर्म, ये सब किसी देश के मुख्य स्तंभ हैं। जब तक आपके हाथ इन्हें मजबूती से खड़ा ना कर लें, आराम मत कीजिए। पर तब अपना देश भारत तो गुलाम था, वोट का सवाल पैदा नहीं होता और शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। नौजवान ने मैजनी के लिखे हुए को बार बार पढ़ा और हर बार देश और मानवता के लिए आंखें बहती रहीं। उन्होंने दूर देश में हुए और समय के साथ बीत गए विचारक मैजनी को ही अपना गुरु मान लिया। फैसला कर लिया कि अपना तन मन धन देश की सेवा के लिए समर्पित कर देना है। धिक्कार है अभी तक जो जीवन बीता वो अपने देश के काम ही नहीं आया। तब वो 3 रुपए की छात्रवृत्ति और शिक्षक पिता द्वारा भेजे गए 8 रुपए से ही काम चलाते थे। अक्सर भूखे रह जाते थे पर देश और समाज सेवा के बारे में लगातार सोचते रहते थे। सबसे पहले दुनिया को थामना होगा, उससे पहले देश को संभालना होगा और उसके लिए अपने समाज की चिंता करनी पड़ेगी और उससे भी पहले अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। संयोग से उन्हीं दिनों वो आर्य समाज से जुड़ गए और उससे अपने राष्ट्रवाद का मेल बैठाया। अंधविश्वास से दूर, वैज्ञानिकता और ज्ञान से भरपूर उनके राष्ट्रवाद ने उन्हें एक प्रभावी वक्ता बना दिया और लोग उन्हें लाजपत राय के नाम से जानने लगे। उनके सामने घर में ही चुनौतियां कम नहीं थीं। दादा जैन थे, पिता एक ऐसे हिंदू जो किसी भी मुसलमान से कम नहीं थे और मां सिख विधि विधान में जी रही थीं। पिता तो तभी मुस्लिम हो जाते जब लाजपत राय 2 साल के थे। तब ऐन मस्जिद की सीढ़ियों पर मां ने पिता को घेर लिया था कि ऊपर वाले की मर्जी समझो, उसने जिस धर्म में पैदा किया उसी में रहो, बच्चों की सोचो, मैं तो धर्म ना बदलूंगी। पिता तब भी दृढ़ थे पर शिशु लाजपत राय इतनी जोर से रोए कि तमाशा खड़ा हो गया। पिता नजरें झुकाए अपना परिवार लिए सीढ़ियां उतर आए। बहरहाल आर्य समाज ने लाजपत राय को मजबूत किया और उन्होंने पिता को भी समझाया कि कौन कहता है कि मूर्ति पूजा कीजिए, सगुण न सही निर्गुण रूप में भी ईश्वर को मानिए और वेद और सनातन को समझिए, उसके आडंबरों के अंदर मूल तत्व को जानिए। पिता को समझ आई कि बेटे की राह सही है, महत्व धर्म का उतना नहीं जितना देश और उसकी आजादी का है। देश सुखी और मजबूत होगा तो उससे धर्म की ही शोभा बढ़ेगी ना। अनेक समाज सेवा संस्थान, डीएवी शिक्षा संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, जाने कितने ही अनेक संस्थानों की रचना लाला लाजपत राय ने की। 28 जनवरी को जन्मे लाला लाजपत राय कोरे राजनेता नहीं थे, वो जमीनी काम करने वाले आदर्श समाजवादी थे। स्वभाव से निडर, खूब मेहनती और दिखावे से कोसों दूर। लाजपत राय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल रहे जिन्होंने स्वराज को पहले समझा, कांग्रेस को बाद में समझ में आया और स्वतंत्रता आंदोलन के तेवर तीखे होते चले गए।
उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते लाठियां भी खाईं और इसी वजह से उनकी शहादत हुई। ये शहादत भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निर्णायक पल साबित हुआ। उसके बाद गरम दल के नेता हों या नरम दल के, आजादी के रणबांकुरों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसे थे लाला लाजपत राय।

दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: इस दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, अगर आके कोई बता दे कि आगे पुलिस वाला चालान काट रहा है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। विलुप्त होते बेजुबानों की सुध कौन ले रहा है? अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर हुआ करते थे। मोहम्मद अलवी का ये शेर लेख के अंत में समझ में आएगा कि यहां क्यों इस्तेमाल किया गया है। भारत देश इन दिनों हिंदू मुस्लिम की नापाक जंग के एक लंबे दौर से गुजर रहा है। CAA NRC पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश दो हिस्सों में बट गया है, एक इसके पक्ष में और एक इसके खिलाफ। टीवी डिबेट से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और शाहीन बाग ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन इस देशव्यापी गर्मा गर्मी के बीच भारत में रहने वाले पक्षियों को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिस और कम ही न्यूज प्लेटफॉर्म्स और राजनेताओं का ध्यान गया है। कुछ रोज पहले गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आयोजित 13वें COP सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि भारत में पक्षियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति की दयनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाटों पर साल 2000 से पक्षियों की संख्या में 75% तक की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गिद्ध, छोटे पंजों वाले स्नेक ईगल, बड़ी कोयल, सामान्य ग्रीन शैंक जैसे पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है। अब जब रिपोर्ट में कई प्रजातियों के विलुप्त होने की बात कही गई है, तो सवाल उठना भी लाजमी है, और ये सवाल किसी एक पर नहीं बल्कि हम सभी पर उठता है। हम सभी मतलब जीव वैज्ञानिकों से लेकर सरकारी तंत्रों और आम इंसानों तक, जिनकी सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती है। गर्मियां शुरू होने को हैं और आसमान में उड़ते परिंदों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। पेट में भूख और कंठ में प्यास लेकर शहरों की छत के चक्कर लगाने वाले पक्षी हों या नदी नालों और जंगलों में बसर करने वाले बेजुबान, इन दिनों अपनी ही अनुकूल जगह पर घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो निजी तौर पर पक्षियों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 13 में खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विषय को संबोधित किया था, इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि इस बात की जानकारी जिम्मेदार नेताओं या सरकारी तंत्रों को नहीं है। फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद भी हम भारत में सालों से रह रहे और प्रवासी पक्षियों को लेकर

नहीं तो पहली पंक्ति में इस्तेमाल किया गया मोहम्मद अलवी का शेर हमारी आने वाली पीढ़ियों को कड़वा सच बनकर सताएगा और इसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: matter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: अ से अर्जुन,
6: आ से आशा।
5: जी
7: टाइम हो रहा है, भैया ने बुलाए,
8: चलते हैं। सही कह रहे हो,
7: चलो चलते हैं फटाफट, इससे पहले टाइम वेस्ट हो जाए। मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा। चलो,
9: कल कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे,
7: कहीं काम से।
10: लगता है बच्चे आ गए, बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे, अरे, अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ, शाबाश।
11: नमस्ते भैया।
10: नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आ जाओ शाबाश, बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपने अपने नाम बताएंगे, ठीक है ना?
12: नमन,
10: लवीश,
12: अर्णव,
10: अभय,
12: दक्षा,
10: कुशाग्र, निशांत। भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चे को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा
13: मुझे।
10: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूंगा।
13: कहानी
14: अपनी बहन को,
15: महमूद भी आए।
10: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानते हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
13: हाथी,
10: गिलहरी, बिल्ली। बिल्कुल ठीक। भाई मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
16: ये क्या बात हुई?
10: ये कौन आ रहा है?
16: नमस्ते भैया।
10: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ।
16: तो आज नई कमीज पहनी है।
10: क्या?
16: आज नई कमीज पहनी है।
10: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है। अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
16: ये मामा जी ने दी
10: है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
16: अमर।
10: आमर।
16: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
10: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद। तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
16: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
10: हाँ आजब, शाबाश। बजाओ सी बातों, जोरदार तालियां बजाओ, तालियां शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह अ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो।
16: आरती।
10: वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में अ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
16: अकेला।
10: अकेला। तो इसी बात में बच्चों, हो जाए अक्षर की कहानी। तो अ से अक्षर, अ से
16: अक्षर।
15: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
10: अच्छा, और बड़े अ से?
15: बड़े अ से आम।
10: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं, छोटा आ बड़ा आ। और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे अ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ। तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ, थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? शाबाश। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा।
16: आ
10: आगे समझ में? अ से
13: अर्जुन
10: और आ से
13: आशा।
10: शाबाश बच्चों, दोनों भाई बहन थे। अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते। इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ?
6: क्या हुआ भैया?
10: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
16: वो रस्सी पे चलता है भैया।
10: हाँ सही कहा तुमने,
16: जादू भी करता है।
10: जादू भी करता है हाँ।
16: भैया और वो नए नए खेल दिखाता है।
10: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है। तो बच्चों दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
16: भैया आ से अचानक।
10: हाँ आ से अचानक।
6: भैया आ से आया।
10: आ से आया और आ से आई।
16: भैया आ से आता।
10: आ से आता, शाबाश। आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन, जल्दी आओ जल्दी, अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ तो बच्चों आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और आ से
16: अर्जुन,
10: आ से अर्जुन,
16: आ से अमरूद,
10: आ से अमरूद,
16: आ से अगली,
10: आ से अगली,
16: आ से अजगर,
10: आ से अजगर,
6: अंदर,
10: आ से अंदर,
16: अम्मा
10: और आ से अम्मा, शाबाश। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
16: भैया आ से आटा।
10: आ से आटा, शाबाश।
6: आ से आग।
10: आ से आग।
16: भैया आ से अरहर की दाल।
10: आ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
13: अरबी की सब्जी।
16: भैया आ से अरबी।
10: हाँ शाबाश।
13: आ से अम्मा।
10: हाँ आ से अम्मा।
16: आ से अगर।
6: आ से अगरबत्ती।
10: आ से अगरबत्ती। आ से अगर। अ से अजगर। अ से असलम और अ से अम्मा। अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार।
16: भैया क्या बनाई?
10: अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
6: भैया मुझे आलू पसंद है।
10: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
16: भैया मुझे अनार पसंद है।
10: अनार पसंद है। आ से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर,
16: अ से अपनी,
10: अ से अपनी और आ से आंखें, अपनी आंखें।
6: भैया आ से आम का अचार।
10: आ से आम और आ से अचार। तो आम का अचार, वाह क्या बात है, बजाओ ताली जोरदार। तो बच्चों आगे सुनो, अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा,
0: अरे बच्चों, अरे भाई अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो। हाँ
6: से अपने।
10: आ से अपने।
16: भैया आ से आप।
10: आ से आप, शाबाश।
16: अपने
10: आप, वाह क्या बात है, अपने आप। तो बच्चों अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना
16: भैया।
10: अच्छा बच्चों ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा हो?
6: बहुत अच्छा लगा।
10: शाबाश। आ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा मजा आ गया, आहा अम्मा ने कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, आहा मैंने तो खूब खाया।
16: भैया आ से आहा।
10: बहुत बढ़िया, आ से आहा। हाँ, तो इस तरह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने अम्मा का धन्यवाद दिया। आ, आ,

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझमें तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वो ही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो,
3: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
4: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
5: रॉलेट एक्ट
6: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
6: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
6: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट
6: वापस लो,
5: रॉलेट एक्ट।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला। महात्मा गांधी की

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरजन बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। Yes. Hey, you, come up.
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: महात्मा गांधी की
1: जय।
0: महात्मा गांधी की
1: जय। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की।
3: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, चौथा इन्हें गोलियों से भून डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
4: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का

0: आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
1: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
2: हमारी मांगे
3: पूरी करो।
1: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
3: रोलेट एक्ट
4: वापस लो।
1: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
2: मारो
1: सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
2: डॉक्टर किचलू को
3: रिहा करो।
2: सत्यपाल को
3: रिहा करो।
0: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टाइम।

0: मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।
1: मासी, मासी मेरी लत सीधी कर दे, मासी, मासी, मासी मेरी लत सीधी
2: कर दिया, कर दिया, अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय ग्री पुत्र है तो लव ही लव है।
3: पानी, पानी,
2: पानी, तू तो लवलुआन होया बे, आया है, ऐसे पानी कितने, ऐसे तो लव ही लव है, ऐसे पानी कितने।
1: मासी ना जाइए तेरे, मासी ना जाइए तेरे।
0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
4: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
5: जनरल डार।
6: यस सर।
5: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
6: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
6: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या वार्निंग नहीं दी?
6: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
5: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
6: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
4: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
3: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
7: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
8: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
9: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय बोर्ड से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
7: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
3: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: पहली उड़ान में

0: आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ।
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा। जोसेफ
2: जी,
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ माँ माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
2: मुझे मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
3: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
3: धुआं?
2: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
3: हाँ?
2: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
3: क्या
2: उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ हाँ? भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
1: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है।
3: चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाते क्या करेंगे,
6: रहने दीजिए भला, कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा
7: लगता है कुछ हो गया है।
6: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
5: भाई साहब हट जाइए।

0: आ गए यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
1: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
0: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
1: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
0: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
1: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, हाँ स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
0: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
1: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
0: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
1: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
1: अरे अरे दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
0: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
1: अरे देखो, अरे हाँ हाँ देखो, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
3: नमस्कार किसान भाइयों, एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं से तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नू यू खेतीबाड़ी कार्यक्रम आपड़ हंगड़ा किसान भाइयों हरू खेतीबाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों, तमु भली बाती वाकिफ है कि आपड़ जावानो जो किसान है वो मुख्यतः जिनी आय नो जो स्रोत है वो कृषि ही है। तो आपड़ खेती ने खेती में अधिक थी अधिक मुनाफो आपू की कम ली सकें, क्योंकि आपू जानी है आपड़ी जगह जो है उबड़ खाबड़ है, पथरीली है अने इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं मळे है। तो इन्हीं जगह में आपू कई नी फसल करी सकी ली सकी तीन थी अधिक थी अधिक आपू मुनाफो मिली सके तीना बारा में आपू चर्चा करूँ जाणू इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज नो जो खेतीवाड़ी कार्यक्रम नो हमारो जो विषय है तो बेहद अलग ही विषय है, क्योंकि आज आपू जाणू कि जो हमारा किसान है किसान विक्रय मूल्य जिन्हें आपू की है MSP तिनके है, तो तिनी MSP ने किकम जाणवो तिनो डिसीजन किकम था है, किकम तिनो निर्णय ले है, कौन निर्णय ले है, अने जो अपन किसान भाइयों नी क्या हूँ हूँ समस्या है तिना बारा में भी आपू विस्तृत जानकारी आज ना इना कार्यक्रम ना माध्यम थी हमणू। तो किसान भाइयों, आशा करूँ है कि यू कार्यक्रम आप सबू हरू लाभकारी था है। अने आज ना इना कार्यक्रम में વધુથી વધુ ચર્ચા થવાની હે કે હું સહી હૈ હું ગલત હૈ એની પર આપણું ચર્ચા કરું આજના એના વિષય પર. તો કિસાન ભાઈઓ આપણ આજના હર વાત આપણ રેડિયો ટાંડિયા ભીલનો એનો ખેતીવાડી કાર્યક્રમથી કંઈ ને કંઈ સીજે આપણ હંમેશા શીખવા મળે હૈ. તો કિસાન ભાઈઓ આશા કરીએ હૈ કે એના કાર્યક્રમને આપણું આખરી તક દેખું અને જાણકારી લઉં શીખવું આપું એના કાર્યક્રમથી. તે તમારો વધુ સમય નહીં લેતે હોય આજના એના કાર્યક્રમની આપણું આથી શરૂઆત કરીએ છે.
4: आज जो हमारा विषय है वो एमएसपी से जुड़ा है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से. आपको पता ही है कुछ दिन पहले खरीफ के जो है एमएसपी घोषित किए गए हैं, तो वो एमएसपी कैसे पता लगते हैं, कैसे तय होते हैं, कितना किसानों को फायदा होता है, कितने किसान उससे जुड़े हैं, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे. इसलिए आज का हमारा विषय है एमएसपी क्या मिला किसानों को. देखिए इस विषय को और अच्छी तरह हम समझेंगे और ये सबके लिए जरूरी है. सिर्फ ये नहीं कि किसान ही इससे जुड़े हैं. बहुत से लोग समझते हैं कि एमएसपी जो है वो किसान के लिए आता, लेकिन इससे सब कुछ प्रभावित होता है. पूरे जीवन पे सच कहें तो किसानों के जीवन पे इसका असर पड़ता है, उनकी आमदनी पे इसका असर पड़ता है. इसलिए थोड़ा एमएसपी को और समझते हैं और ये जानने के लिए देखते हैं ये लघु फिल्म.
5: इस बार केंद्र सरकार की बड़ी पहल रही है कि दलहन के एमएसपी को बढ़ाने के साथ इसमें 200 रुपए का बोनस देना, जो पहली बार हुआ है. देश में दालों की आवश्यकता करीब 23 से 23.5 करोड़ टन की है, लेकिन देश में दालों का उत्पादन करीब 17.3 करोड़ टन होता है और हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन दालों का आयात होता है. देश में अधिकतर दलहन उत्पादक किसान छोटे व सीमांत हैं. सरकार के इस फैसले ने इन किसानों के चेहरों पर खुशियां जरूर ला दी होंगी. सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे. एक तो किसान दलहन की खेती की ओर मुड़ेंगे, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में इजाफा होगा और साथ ही विदेशों से आयात की जाने वाली दालों की मात्रा में वक्त के साथ साथ कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचेगी. कृषि उपज के दाम तय करने की शुरुआत तब हुई जब खाद्यान्न उपलब्धता में कमी होने लगी और सूखा व बाढ़ के साथ अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में उतार चढ़ाव देखा जाने लगा. सरकार को लगा कि किसानों को कृषि उपज के उचित दाम मिलने चाहिए और उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए. किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित साधने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1965 में एपीसी यानी कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जो कृषि उपज का मूल्य तय करने पर सिफारिश देता था और फिर 1985 में जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए सरकार ने एपीसी का नाम सीएसीपी यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया. कृषि उत्पादों के मूल्य तय करने में बस तभी से सीएसीपी की सिफारिशों पर सरकार गौर करती रही है. सरकार का मानना है कि सही और उचित मूल्य से ही कृषि पैदावार और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है. आज सीएसीपी करीब 24 कृषि उपजों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है. एमएसपी तय करने के लिए सीएसीपी मोटे तौर पर उत्पादन की लागत, निवेशी मूल्यों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्यों में फर्क, बाजार भाव में ट्रेंड, अंतः फसलीय मूल्यों में फर्क, मांग व आपूर्ति हालात, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य कीमतों के स्तर पर प्रभाव, जीवन शैली पर प्रभाव, राष्ट्रीय विपणन मूल्य स्थिति, किसानों द्वारा चुकाई गई और प्राप्त की गई कीमतों में फर्क आदि पैमानों पर गौर करती है. किसी फसल को तैयार करने में कितनी लागत आ रही है, इसे C2 में कहा जाता है और फिर इस C2 में अतिरिक्त 10% जोड़कर C3 तैयार किया जाता है और ये C3 ही रबी या खरीफ की फसलों के MSP की सिफारिश होती है. लेकिन MSP से कई किसान कम ही संतुष्ट हैं और कई बार तो सरकार व किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि सीएसीपी द्वारा तय किया गया एमएसपी उस फसल की उपज लागत से भी कम था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एमएसपी तय करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है? क्या किसानों की बढ़ती लागत, जिसमें खाद, बीज, डीजल के दामों से लेकर श्रमिकों पर बढ़ रहे खर्च के सही आकलन में सीएसीपी से चूक हो रही है? क्या एक ही एमएसपी अलग अलग राज्यों के लिए मान्य हो सकता है? क्या राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस या राज्य परामर्शी मूल्य को खत्म किया जाना सही है? सवाल कई हैं, लेकिन एक ओर जहां एमएसपी ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने में महती भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर कई फसलों का एमएसपी के दायरे से बाहर होना भी परेशानी का सबब है। एमएसपी कैसे देश के 86% छोटे व सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दे सकता है और उपभोक्ताओं का हित भी कैसे सुरक्षित रहे, इस पर विचार विमर्श आवश्यक है।
4: तो आपने देखा कि एमएसपी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये जो है किसानों की आमदनी तो तय करने में मदद करता ही है, पर साथ ही कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदते हैं, खाद्य वस्तु, तो उसके दाम क्या होंगे। वैसे तो कपड़ा वगैरह जो है, कपास, वो भी इसमें आता है, तो उसमें भी बहुत कुछ एमएसपी की भूमिका रहती है। इसी को थोड़ा समझते हैं और एमएसपी के दाम कैसे तय होते हैं, कैसे ये तय किया जाता है कि किसान की इतनी लागत है, उसको इतना मिलना चाहिए पैसा, और उसमें बहुत सी शिकायतें रह जाती हैं, वो शिकायतें भी क्या हैं, उसको भी थोड़ा समझते हैं, और सही तरीका क्या होना चाहिए एमएसपी तय करने का, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कई विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पर बताएंगे। आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर टी हक साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं पूर्व अध्यक्ष हैं सीएसीपी के, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो एमएसपी तय करता है। आपसे प्रोफेसर साहब हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये तय होता है एमएसपी, और बहुत सी शिकायतें किसानों की रह जाती हैं। खरीफ पे भी चर्चा करेंगे और पूरा एमएसपी को भी समझेंगे। साथ में हैं प्रभाकर किलकर जी, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, किसानों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और एमएसपी इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभाकर जी। हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी भी हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एमएसपी से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान। आपसे इसी विषय पर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे तिवतिया जी हैं, सुंदरपाल सिंह तिवतिया जी, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हैं, खुद किसान हैं, किसानों के मुद्दों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। एमएसपी से कितना लाभ उन्हें पहुंचता और कितना नहीं, इस पर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष सिंह जी हैं फतेहपुर यूपी से, किसान नेता हैं, खुद किसान हैं, खेती किसानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और एमएसपी ये जो नया आया है इसमें और पुराने में क्या फर्क रहा, कैसे किसानों की मदद करता है एमएसपी, इस पे आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जो है डॉक्टर हक आपसे मैं करना चाहूँगा, थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये तय कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है?
6: जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो तय करने का पद्धति है या तरीका है, उसमें एक तो है कि कृषि में लागत, उस फसल का लागत क्या है, वो लागत देखा जाता है। दूसरी बात है कि मार्केट में उस फसल का क्या दाम है, देश के बाजार में या विदेश के बाजार में, वो भी देखा जाता है। उस फसल का आज के दिन में देश को कितनी ज़रूरत है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, किसकी कमी है या ज़्यादा है, वो देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को अगर इनपुट खरीदना है या दूसरी और चीज़ खरीदना है इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से, तो उनका दाम और फसलों का दामों में एक तालमेल हो, कि बहुत ज़्यादा कम बेसी होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, तो वो भी ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना होता है कि फसल का दाम इतना हो कि रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज का है, जैसे केन का है, शुगर मिल्स का है, कॉटन का, कॉटन मिल्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, तो भी देखा जाए कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए उनका रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी एक रीजनेबल हो। ये भी देखा जाता है कि जो आपका इनपुट प्राइसेस में, खास करके ओवर टाइम, इस साल अगर फसल का दाम तय करते हैं तो पिछले साल क्या लागत था और अभी कितना चेंजेस हुआ, वो देखना होता है। फिर इन्फ्लेशन में क्या असर होगा, ये सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी
4: इतनी सारी चीजें
6: सारी चीजें उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन है, उसमें कितना किसको वेट देते हैं वो डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर या मेंबर्स के ऊपर या बाकी किस तरह का एटमोसफियर है उसके ऊपर।
4: लेकिन साहब आप क्योंकि सीएसीपी से जुड़े रहे हैं, एक चीज जो अभी दो दिन पहले खरीफ के मूल्यों की घोषणा हुई है उसको आप किसान की तरह से अगर देखें तो किसान को उसमें क्या फायदा होगा? जैसे कुछ अगर हम मान लीजिए चावल की धान की बात करें तो धान में उस हिसाब से 50 रुपए का इजाफा किया गया है
6: जी,
4: तो आपको क्या लगता है सरकार एक सोच समझ के एक कदम उठा रही है क्योंकि धान का हमारे पास स्टॉक भी बहुत है और धान जो है उस चक्र से भी हम निकलना चाहें तो ये आपको कुछ एक रणनीति उसमें एक दिखती है?
6: बिल्कुल है, क्योंकि कई सालों से ये चर्चा में है कि धान की खेती से खास करके पंजाब हरियाणा के इस सिचुएशन में देखें तो वाटर टेबल जो है ग्राउंड वाटर का काफी नीचे चली गई है
4: जी।
6: वो लगता है कि फसल आगे अगला कोई फसल
4: गेहूं धान के चक्र से किसान निकल नहीं रहा
6: से निकल नहीं रहा है, तो कई सालों से चल रहा है कि चावल गेहूं का अभी स्टॉक भी अच्छा है, अभी जैसा कहा गया ना कि स्थिति अभी देखना है, तो उसके बाद अगर उसको डायरेक्शन बदलना है जैसे पल्सेस में हमारी कमी है देश में
4: जी,
6: ऑयल सीड्स की कमी है देश में, खासकर केडेबुल ऑयल हम 10 मिलियन टन इंपोर्ट करते
4: जी,
6: हैं, पल्सेस भी 3 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन देना है आपको पल्सेस के लिए भी और ऑयल सीड्स के लिए भी, तो लेकिन हो नहीं रहा है कई कारणों से कि अभी भी इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी जिसको हम कहते हैं कि असंतुलन बना हुआ है और जब तक दूसरे फसलों का दाम ठीक ना हो, रिटर्न्स ठीक से ना मिले किसानों को, और दूसरी बात है कि अगर फसल का दाम आपने तय कर भी दिया और आपने खरीदा नहीं और खरीद के कुछ आगे डिस्पोज ऑफ करने का मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया तो
4: भी, तो भी बिल्कुल वो
6: संकट अब तक
4: हक साहब अभी हम और इस पे चर्चा करेंगे। प्रभाकर जी अभी
6: एक सेकंड, 65 से जब से ये हुआ है
4: जी,
6: हम शुरुआत किया है इसको
4: जी,
6: तो उसके बाद से ही एक और इसमें दिक्कत एक क्या आई है किसानों के लिए, चूंकि जानना जरूरी है, बाद में फिर
4: जी, जी,
6: कहीं मैं ही भूल जाऊँ
4: इसको बिल्कुल बताएं,
6: जानना जरूरी है। एक सारे देश से आंकड़े इकट्ठे करके एक औसत रूप में जो लागत होता है उसको लिया जाता है। मान लीजिए किसी स्टेट में 700 रुपये पर क्विंटल पैडी का दाम है खर्चा आता है, किसी स्टेट में 900 आता है, किसी में 1200, किसी में 1300, किसी में 1400 आता है, आपने उसके बेसिस पे अगर 900 फिक्स कर दिया तो जो
4: जहां 1400 वाला वो तो
6: मरेगा मर गए। इसीलिए आज के दिन में ज्यादातर किसान इस देश में किसानी व्यवस्था को लाभकारी नहीं समझते हैं और परेशान है, और इसीलिए जब तक काफी परिवर्तन नहीं लिया जाएगा इस जो हम जिस
4: तरह प्रक्रिया,
6: प्रक्रिया में और जब तक ठीक से आकलन नहीं होगा और मेथड्स को हम बदलेंगे नहीं तब तक मेजोरिटी फार्मर्स को प्रॉब्लम रहेगा, तो असली बात यह है।
4: प्रभाकर जी अभी जो दो दिन पहले खरीफ के दाम आए हैं, आप किसानों के लेके अगर हम बात करें तो आप कैसा सोचते हैं, क्या उनके लिए अच्छे दाम आए हैं, उनको लाभ होगा इससे?
7: देखिए किसान को अच्छे दाम तो तभी माने जाएंगे जब उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा
4: जी।
7: आज लागत इतनी अधिक बढ़ गई है जिसके आधार पर उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वो तो सरकार अभी उससे कोसों दूर है, और इसलिए 50 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 25 रुपए बढ़ा देना ये एक सरकार को अपनी तुष्टिकरण का बात लगती होगी हमने किसानों के लिए कुछ किया, पर किसानों को लगना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया।
4: क्योंकि प्रभाकर जी ये बात भी आ रही थी कि लागत बहुत है, जैसे अभी हक साहब ने भी बोला कुछ क्षेत्र हैं जो भले ही वहां बारिश ना हो पर ट्यूबवेल वगैरह बिजली वगैरह से डीजल का पंप चला के वो अपना सिंचाई कर लेते हैं, उससे लागत जो है बहुत बढ़ जाती है, तो ये जो औसत है अगर उस हिसाब से लेंगे तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा।
7: उस हिसाब से भी नुकसान होगा, और आज भी कटु सत्य यह है कि जहां अभी बोला गया कि 86% छोटा किसान है
4: जी,
7: वो उसको सीएसईपी से कोई मतलब नहीं है, उसका खरीदारी कुछ नहीं हो पाती है। आज हमारे देश के अंदर मुश्किल से 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां खरीदारी की कुछ थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं कह सकते उसको, और इसलिए जब तक खरीदारी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी सीएसईपी घोषित करना अपने लिए समाधान मानना है कि हमने किसानों के लिए कुछ किया, किसान तक वो बात पहुंचती नहीं है
4: जी।
7: पंचायत स्तर तक जब तक खरीदी अच्छी नहीं होगी तब तक वो एमएसपी का पूरा लाभ भी किसान को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित करें, साथ में खरीदारी की भी चाक चौबंद
4: किसानों को उस दायरे में तो लाएं, किसान उसमें हो तो सही। ये बात जो प्रभाकर जी ने किया, रामलाल जी मैं आपसे क्योंकि आप तो इस विषय पे बहुत लिखते रहे कैसे लाभकारी मूल्य दिलवाया जाए, आपको क्या लगता है कि एमएसपी से किसान का भला होता है कुछ?
8: प्रोफेसर हक साहब
4: जी,
8: जिन मापदंडों की चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले अन्यायकारी वो मापदंड ही है
9: जी,
8: जिनके कारण से किसान को एमएसपी मिल ही, एमएसपी से लाभ मिल ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूं, दुनिया का हर उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य तय करता है लागत पर लाभांश जोड़कर, यही फार्मूला है।
9: बिल्कुल सही।
8: और किसानों के लिए जो फार्मूला दिया, उपभोक्ता पर क्या फर्क पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा?
9: उपभोक्ता खुद किसान है,
8: उपभोक्ता है ही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा, महंगा पे क्या फर्क पड़ेगा, कच्चे जो कच्चा माल मिलता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? सभी ठेकेदारी हमारी है क्या? और यदि ये फार्मूला लागू करना है तो हम तैयार हैं, यही फार्मूला उद्योग जगत के लिए लागू कर दो। ये नहीं हो सकता, औद्योगिक जगत को तो कॉस्ट और प्रॉफिट के आधार पर आप फार्मूला देंगे, और हमारे लिए 10 तरह के बाध्यकारी मापदंड अपनाएंगे। ये जो अन्यायकारी मापदंड है, सबसे पहले बदलने की जरूरत है इन अन्यायकारी मापदंडों को। इसलिए मापदंड होना चाहिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितनी लागत आई उस पर लाभांश जोड़ो और कीमत तय करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हो नहीं सकता। ये अब तक छलावा सिद्ध हुआ है, आगे भी ये छलावा सिद्ध होगा। और हर सरकार किसी भी पार्टी का ही हो, वो किसानों के लिए उनका उपजों का लाभकारी मूल्य मिले इसके प्रति गंभीर ही नहीं है।
9: सही।
8: इसलिए मैं एक कॉट करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, हम किसानों के लिए ऐसा आयोग बनाएंगे जैसा चुनाव आयोग है, उसके लिए संविधान में संशोधन करेंगे, वो ही पूरा नहीं कर सके। तो यहां तो घोषणा तो हो जाती है, उनका जो क्रियान्वित आते आते तो वो जो किसान आयोग निकला वो तो कुछ नहीं था। तो जिस किसान आयोग ने कल्पना की थी वो किसान आयोग नहीं बन पाया। और अभी जो भी एमएसपी तय हुए इस वर्ष भी
9: जी,
8: और जिसका प्रचार किया जा रहा है, धान पर 50 रुपए की बढ़ोतरी, अरे भाई किसमें तुमने बढ़ोतरी की, हमको तो समझाओ। देश में एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है 17%। इसका आधार पर 2014 में कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया गया।
9: बिल्कुल सही।
8: हम भी तो भाई इसी देश के नागरिक हैं, हमें क्यों छोड़ते हो, हमें भी 17% लाभांश दो ना। अभी सारी एमएसपी की सूची देख लो, अभी जो घोषित की है कृषि में भी बढ़ोतरी 9% ज्यादा नहीं है, केवल जो दलहन है उस पर 9% 9.5%। और ये जिसका अभी प्रचार किया जा रहा है 200 रुपए बोनस दे दिया, अरे 500 तो 9010 में दिया था, नई बात क्या किया आपने? और ये तो 1965 जब से न्यूनतम समर्थन हुए तब से दिया जाता रहा अलग अलग फसलों अलग अलग। तो आप दलहन की बात करते हो, प्रतिवर्ष आया जो दलहन का और तिलहन का दोनों मिलकर 73,834 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, विदेश में भेज देते हैं। और हमारा देश का किसान है जिसको मूंग लागत से कम बेचना पड़े, उड़द लागत से कम बेचना पड़े, अरहर लागत से कम बेचनी पड़े,
9: पर उपभोक्ता के लिए तो दाम बहुत ज्यादा है।
8: हाँ निश्चित, हम ये कहना चाहेंगे, हम हमसे दाल खरीद मूंग खरीदा जाता है 40 रुपए किलो, पिछले वर्ष जो लागत उसका एमएसपी था 40 रुपए किलो हमसे खरीदा गया, और उपभोक्ता को मिली 120 रुपए किलो दाल। अरे भाई मूंग को दाल बनाने में करना क्या पड़ता है, एक मूंग के दो टुकड़े करो वो दाल हो गई, कितनी लागत आएगी, 1 किलो पे 1 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, तो आप 40 का 50 वसूल कर लो। तो जहां उपभोक्ता लुट रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसका हम ध्यान हटाने के लिए सारा दोषारोपण कर देते किसानों पर, और कहते हैं किसानों का एमएसपी बढ़ गया इस कारण से गरीब उपभोक्ता मारे जा रहे हैं। अरे गरीब उपभोक्ता को तो वो बिचौलिए मार रहे हैं जो 40 रुपए में मूंग खरीद कर 5 रुपए भी खर्च नहीं करते और
9: 120 रुपए
8: 80 रुपए का फायदा लेते हैं। अभी हमारे टिंडा की कहानी बताऊं आपको
9: जी,
8: टिंडा जिसने उत्पादन किया उसको मिला 4 रुपए, जो उपभोक्ता खरीद रहा है 20 रुपए से 40 रुपए तक, यानी जिसने टिंडा पैदा किया खेत उसका, पैसा उसका, जमीन उसकी, मेहनत उसकी, दिमाग उसका और पूरा वर्ष उसका, उसको तो मिले 4 रुपए, लागत भी नहीं। और जिसने टिंडा इधर खरीदा इधर रखा 1 किलो पे 16 रुपए का लाभ,
9: टिंडा वगैरह तो, लेकिन उसका तो एमएसपी तय भी नहीं होता।
8: हम तो मांग कर रहे हैं ना कि हर फसल का 109 फसलें हिंदुस्तान में, 109 फसलों का तय हो एमएसपी
9: जी।
8: तो जब तक सब, और ये जो बात करते हैं कि भाई ये आपस में कोई फसल गेहूं का चावल बढ़ गई, अरे बढ़ तो इसलिए गई, तुम इनका सबका एमएसपी घोषित करो ना। आप 109 फसलों का घोषित करो तो अपना आप फसलों में अपना संतुलन हो जाएगा, अपना सामता हो जाएगी, आप वो तो करना नहीं चाहते। और फिर एक जो पक्ष और है अनुराग जी,
4: रामपाल जी इस पे आएंगे क्योंकि पक्ष बहुत हैं और अभी सारे उठाने हैं, आपने कई मुद्दे बताए। ये जो चर्चा हमारी रामपाल जी से हो रही थी, आपने सुना कि वो तो एमएसपी पे ही पूरा सवाल उठाते हैं, जो क्राइटेरिया हमें डॉक्टर हक साहब ने भी बताया, उस पर और चर्चा करेंगे। थोड़ा और समझना पड़ेगा कि ये फसल का जो हम मूल्य तय करते हैं, इसके क्यों तय करते हैं, पहली बात तो क्यों उसको हम बाजार की ताकतों पे नहीं छोड़ सकते, उसका नुकसान किसान को होगा या फायदा होगा, इसको भी समझेंगे कि इससे किसानों को क्या लाभ।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: बात इसमें जो निकल के भी आ रही है कि बहुत कम किसान हैं जो एमएसपी का लाभ ले भी पाते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो इसमें बहुत सी चर्चाएं हैं। अभी जैसे ये भी पता लगा रहा है कि बहुत सी फसलें तो एमएसपी में आती नहीं हैं, उनके दाम किसान को कम मिलते हैं, उपभोक्ता को ज्यादा मिलते हैं। जो आती भी हैं वो भी किसानों से कम दाम पे ली जाती है, उपभोक्ता को उसके कई गुना ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये पूरा एक गड़बड़ी सी है जो पूरी प्रणाली में बनी हुई है। इस पे चर्चा जो है हम अपनी जारी रख रहे हैं और कई और मुद्दे हैं जो आते जाएंगे इसमें। तेवतिया जी, जैसे रामपाल जी ने बताया कि एमएसपी तो किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उनको उसका कुछ भी लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है, आप क्या सोचते हैं इसमें?
10: रामपाल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा, ध्यान आकर्षित किया है। एमएसपी एक भ्रामक शब्द लगता है मुझे। कोई भी व्यापार करता है, दुकान करता है, वो लाभ के लिए करता है।
4: बिल्कुल सही।
10: अगर उसको किसी काम में लाभ ही नहीं है वो क्यों करेगा?
4: बिल्कुल सही है। बहुत से किसान इसलिए, अब तो नया आंकड़ा बता रहा है कि 40 से भी ऊपर फीसदी लोग हैं जो खेती से अलग होना चाहते हैं।
10: किसान के पीछे भी एक परिवार है, खेती करना ही काम नहीं है। आपने लागत मूल्य लगा दिया, उसको उसका प्राइस दे दिया, बाकी परिवार को कहां भेजे वो? उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, परिवार को पढ़ाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, उसी खेती में से। तो अगर लाभ नहीं है तो खेती का मतलब क्या रह गया? इसलिए किसान पीछे, इसलिए किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता।
4: बिल्कुल सही।
10: इसलिए पूरे देश का कोई भी आदमी अपना काम छोड़कर के खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि लाभ का काम है ही नहीं। खेती 50 रुपए बढ़ाए हैं, वो तर्क क्या है? 55 क्यों नहीं बढ़ाए, 45 क्यों नहीं बढ़ाए? 50 रुपए जो बढ़ाए हैं उसके पीछे तर्क क्या बढ़ाने का? कौन सा गणित है?
4: किसान की लागत जो है तेवतिया जी, क्या इस 1410 रुपए, 1450 रुपए जो भी मिलेगा दाम, उसमें पूरी हो जाती है?
10: नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, आसपास भी नहीं है।
4: और अभी का जो समय है जिसमें हम, एक आशंका है कि बारिश भी हो सकता है कम हो तो लागत और बढ़ सकती है किसान की, ऐसे में क्या इतना मूल्य जो है वो?
10: अगर कुछ भी नहीं होता है, फसल को कीड़ा भी नहीं लगता है, तब भी नहीं है। अगर वो लग गया तो फिर तो बात ही अलग है, और कई गुना उसकी लागत बढ़ गई है खेती की। कम, और खेती तो सरकार भी कराती है, उसके बड़े बड़े फॉर्म है
4: जी,
10: उनको खुद बताएगा कितना उसमें लाभ होता है, कितना पैदा होता है, उसको वो क्यों सब्सिडी देती है? जितने सरकारी फार्म है, सरकार उनको बहुत ज्यादा सब्सिडी देने के बाद में उनको जिंदा रखे हुए, वरना उनके फार्म बंद हो जाएंगे। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य,
4: ठीक है, उसका मतलब तेवतिया जी यही है कि कम से कम इतना मिलेगा, इससे ऊपर जो,
10: लेकिन मैं कहता हूं ये अधिकतम मूल्य है, किसान को इससे ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैं कहता हूं ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, इससे ज्यादा किसान को मिलेगा। कायदे में यह होता है कि इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी, अगर उसके नीचे मूल्य जाता है तो सरकार उसको खरीद लेगी, लेकिन मैं कहता हूं इससे ज्यादा कहां आज तक बिका है
4: जी,
10: इससे ज्यादा किसान को समर्थन मूल्य मिला ही नहीं। ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, अधिक न्यूनतम नहीं है, ये बड़ा भ्रम का शब्द है, इसको समझना पड़ेगा।
4: तेवतिया जी हमारे एक कॉलर हैं उड़ीसा से, वो कुछ बताना चाह रहे हैं जी। हेलो, हेलो,
11: हाँ जी
4: जी, आप कुछ हमसे बातचीत करना चाह रहे थे एमएसपी पे, बताइए आपका शुभ नाम क्या है?
11: ऋषिकेश जैना है।
4: हाँ जैना जी, आपको क्या लगता है एमएसपी कितना बढ़िया रहा?
11: बहुत बढ़िया रहा, ये किसान को लिए अच्छा दिन आ गया जो हमारे भी उड़ीसा प्रदेश में वो सारे भारत में जो किसान के लिए जो रेट बढ़ा है, असिस्टेंस बढ़ा है, इसलिए वो किसान को लिए अच्छा दिन आ गया
4: जी। अच्छा जेना जी, आपको धान की प्रमुखता से आप खेती जो है मुख्यतः तो धान की करते होंगे, चावल की खेती करते होंगे?
11: हमारे यहाँ पर ज्यादा चावल की खेती होते
4: जी। तो चावल का जो एमएसपी में जो इजाफा हुआ है उससे किसान जो है वहाँ खुश हैं?
11: बहुत खुश है, बहुत खुश है। 50 रुपया बढ़ा है
4: जी
11: चावल के लिए, इसलिए किसान को बहुत खुश भी है।
4: जना जी, जो लागत है वो आराम से लागत निकल के और लाभ भी हो जाता है इस दाम में?
11: लाभ तो इतना नहीं है, लेकिन जो पहले नहीं था वो जो असिस्टेंट मिला है ज्यादा 50 रुपया है मिला है, इसलिए तो थोड़ी सी किसान को लिए लाभ है
4: जी। बहुत बहुत धन्यवाद जना जी हमसे बात करने के लिए। संतोष जी, जो जना जी से भी बात हुई, ये तो एक खुशी की बात है कि चलिए कुछ बढ़ के मिला, लाभ कितना होता है कितना नहीं वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एमएसपी से कितना फायदा किसानों को होता है?
12: अनुराग जी, इससे कितना लाभ होगा या हो रहा है ये विषय नहीं है, विषय ये है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया
4: जी।
12: आज 50 रुपए मिले हैं, कल हो सकता 100 हो जाए, 150 हो जाए, और मैं हक जी की बात से भी सहमत हूं। और चूंकि किसानों के बीच में मैं काम करता था और मैं भी किसानों के बीच में जाता था कि भैया किसी भी तरह से अपना समर सेबिल लगा के आप धान की खेती मत करिए। तो आपने जो कहा कि हो सकता है कि सरकार की मंशा ये भी हो कि थोड़ा सा धान कहीं ना कहीं हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है और तमाम तरह के ये हमें लगता है हर जनपद में 2-4 ब्लॉक ऐसे होंगे जहां पे ड्राई जोन घोषित कर
4: दिया, डार्क जोन पे चला गया, पानी बहुत नीचे चला गया।
12: तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जरूर रही होगी कि धान पे एमएसपी ज्यादा ना बढ़ाया जाए, शायद मुझे ऐसा लगता है।
4: संतोष जी ने भी कहा ये थोड़ा समझ आता है कि गेहूं धान के चक्र से किसान को निकलना होगा, विविधीकरण अपनाने की बहुत समय से बात चल रही है कि डाइवर्सिफाई करें, और उसमें दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मिट्टी को भी जो है वो उर्वर बनाती हैं, और उसके अलावा छोटा ही किसान आमतौर पर सीमांत किसान ही थोड़ा बहुत दालें लगा लेता था, बड़े किसान भी अब उस ओर आकर्षित होंगे। उस हिसाब से जो 200 रुपए का बोनस दिया गया है वो एक लाभकारी चीज नहीं है किसानों को दलहन की ओर मोड़ने के लिए?
13: मैं इसमें दो बातें आती है, एक तो कॉस्ट के हिसाब से देखना, लागत के हिसाब से, दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन का जो नीड है वो उस हिसाब से, और तीसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा हमारे रामपाल जी ने कि अभी जैसे अपने एमएसपी फिक्स किया 4,850 रुपये मूंग का, और मार्केट में आज के दिन में अगर प्राइस देखे मूंग की दाल का तो 12,000-13,000 करके है क्विंटल, है ना? ये जो गैप है तो वो गैप क्यों है
4: जी?
13: इस गैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? किसान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना
4: जी।
13: तो किसान को अगर आप कंज्यूमर से को कहते हैं कि खरीदे 12,000-13,000 रुपये क्विंटल में, तो 10,000 रुपया क्यों नहीं दे देते किसानों को? वो फिर जाएंगे पल दालों की ओर। दूसरी बात एक और है इसमें
4: जी।
13: कि पंजाब और हरियाणा में खास करके मैं जहां तक जानता हूं, पंजाब में तो मैं काफी फार्मर से इंटरेक्ट भी करते रहा, उनके डिमांड था कि और एक्सपर्ट कमेटी के उनकी रिकमेंडेशन भी है कि एक तो दाल, अब दूसरा मेज मक्का पंजाब में काफी अच्छी तरह से हो सकता है और मगरमच्छ के दाम अच्छा किया जाता है। इसमें भी मक्का को उतना एनकरेजमेंट नहीं दिया, पहले जैसे ज्वार बाजरा मक्का ये तीनों का एक करीब करीब प्राइस होता था, और मक्का को अगर अब थोड़ा सा और एनकरेज करोगे तो उसका मक्का का डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है, हर चीज के लिए चाहिए उसको,
4: सिरप वगैरह बनता है, शुगर सिरप बनता है, सब कुछ
13: बहुत कुछ बनता है, मतलब ऐसा कुछ
4: पोल्ट्री
13: फीड में तो डिमांड है ही। तो मक्का को एनकरेज किया जा सकता था और उसके लिए थोड़ा सा 15 रुपया बढ़ोतरी नहीं करके कम से कम 50 करते, तो ज्वार में अगर 40 किया तो उसमें 50 करना चाहिए था, तो उस तरह से एक बैलेंस थोड़ा
4: सिग्नल। एक चीज जो रामपाल जी ने भी सवाल उठाया कि जब हम किसानों के लिए तय करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया, आपने बोला एक क्राइटेरिया उसमें यह भी है कि गोदामों में कितना पहले से पड़ा है।
13: बिल्कुल बिल्कुल,
4: यानी किसान अगर अधिक उपज कर देता है तो उसको दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। उसको जो किस्में दी जा रही हैं कि ये उन्नत किस्में हैं, ये आपको ज्यादा उत्पादन देंगे, वो लगा के अगर ज्यादा उत्पादन कर ले तो मरता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हम जानते हैं कि बहुत से विकसित देश हैं जो सीधी सब्सिडी देते हैं, उनका गेहूं भारतीय किसान जितना गेहूं पैदा करता है जितनी कम कीमत में, वो नहीं हो सकता, पर उनका सस्ता है।

0: उसके बावजूद हम उस बाजार को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्या ये क्राइटेरिया गलत नहीं
1: है? ये बिल्कुल गलत है, वही तो मैं बता रहा हूँ। मैं तो शुरू से इस बातों का खिलाफ रहा और मैं ये कहूंगा कि दुनिया में कहीं भी
2: नहीं, लेकिन हमारा इसमें ही कहना है कि ये क्यों आप सोच रहे, जो पैदा कर रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
2: वही को मिल नहीं रहा, वो मर रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार आजू बाजू चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कौन सी नीति?
3: ज्यादा पैदा हो रहा तो निर्यात क्यों नहीं करते?
1: अच्छा, एक तो है, दूसरी दो बातें इसमें, एक तो है जैसे आपने निर्यात की बात
0: कहा, एक मेरे को ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके इसी चर्चा को,
1: अच्छा,
0: आप ये विचार को थोड़ी देर रोक लीजिए, आप इसे शुरू करेंगे।
1: ठीक,
0: देखिए एमएसपी पे चर्चा हो रही है और बहुत से मुद्दे हैं और थोड़ा हमें भी समझना होगा कि कैसे एमएसपी दिया जा रहा है किसानों को। जैसे कई किसानों के फोन भी आए, किसान खुश भी है, कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा है उसी पे हो सकता है उसे संतुष्टि हो, लेकिन उसमें बहुत से मुद्दे हैं, उनको समझते हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: पे और इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है, इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा और समझते हैं इस मुद्दे को और देखते हैं ये लघु फिल्म।
2: कृषि उपज के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना आवश्यक है। इससे अत्यधिक उपज होने पर दामों को नीचे गिरने से रोकने में मदद मिलती है और साथ ही बिचौलियों के चंगुल में भी किसान फंसने से बच जाता है और भुगतान तो सुनिश्चित रहता ही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि NSSO का एक सर्वेक्षण कहता है कि देश के करीब 40% किसान खेती छोड़ने को तैयार है। क्यों मंडियों तक किसानों की पहुंच कम है? क्यों करीब 30-35% ही सरकारी खरीद होती है और बाकी निजी कारोबारियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है? अगर हमारी विपणन नीतियों में कुछ खामी के कारण हमारे भंडार खाद्यान्न से भरे रह जाते हैं तो इसमें किसानों का क्या दोष? क्या इस बात का बहाना लेकर हम बढ़ती महंगाई के बीच MSP में इजाफे को नकार सकते हैं? जो फसलें MSP के दायरे से बाहर हैं, जैसे अंडे, दूध, सब्जियां, फल आदि, उनके दाम MSP के दायरे में आने वाली फसलों की तुलना में कई गुना बढ़े हैं, तो फिर महंगाई का दोष MSP के सिर क्यों? जिन राज्यों में फसल खरीद में निजी कारोबारी अधिक हैं, वहां के किसानों को सरकार द्वारा तय MSP से काफी नीचे दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। MSP ने किसानों को अच्छे दाम दिलवाने में सार्थक भूमिका निभाई है, लेकिन इसका लाभ आज भी करीब 70% किसानों को नहीं मिल रहा है। MSP की अवधारणा में शायद कोई कमी न हो, लेकिन इसे तय करने के साथ खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। इस सब के बीच एक राय ये भी बन रही है कि MSP के कारण किसान उन्हीं फसलों को उगा रहे हैं जिनके दाम अच्छे और सुनिश्चित हैं, जिससे विविधीकरण न होने से कीटों का प्रकोप, अधिक संसाधनों की आवश्यकता, मिट्टी की घटती उर्वरता जैसी कई परेशानियां सामने आ रही हैं और साथ ही किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो रही है। अब इन तर्कों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई खेती को बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए या संसाधन विहीन किसान की मदद के लिए MSP का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है? खेती को अगर लाभकारी बनाना है तो MSP अहम है। जरूरत अधिक सरकारी खरीद केंद्र खोलने की है, और वो भी ग्राम या पंचायत स्तर पर, क्योंकि मंडी तक जाकर MSP का लाभ लेने की क्षमता हर किसान में नहीं है और परिवहन लागत को बचाने के लिए भी अधिकतर किसान अपने खेत में ही कृषि उपज किसी कारोबारी या निजी कंपनी को बेचने के लिए विवश हैं। और कई मामलों में अगली फसल की तैयारी में देरी के कारण भी किसान औने पौने दामों पर फसल बेच देता है और गरीबी व कर्ज के चंगुल में फंसता चला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के करीब 14 करोड़ किसानों की आवश्यकता है और सभी को इसका लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित करना होगा, किसानों के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, देश के लिए।
1: ये जो MSP पे बात हो रही है, देखिए आपने देखा कि कितने मुद्दे से जुड़े हैं। बात एक ये भी है कि जब 80% किसान इस दायरे से ही बाहर हैं तो MSP जो घोषित किया जाता है उसका लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, बहुत से आज भी देश में ऐसे किसान हैं जो MSP से काफी नीचे दामों पे अपनी उपज को बेचते हैं और ये हम जानते हैं गलत है, गैरकानूनी भी है कई जगह, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। उसके कई कारण हैं। देश में 86% किसान जो हैं छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी छोटी जो उनकी उपज है उसको ले जाके कहीं मंडी में बेचें। उसमें तो खर्चा परिवहन का ही बहुत हो जाएगा, आने जाने का ही बहुत हो जाएगा, तो वो भी अपने पास के किसी को दे देते हैं, वही आगे जाके बेच के आए। बहुत सी बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं। हमारे साथ सुभाष निगम जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निगम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो MSP है ये कितना किसानों की मदद कर पाया?
3: किसानों की ज़्यादा मदद नहीं हो पाई है और इस वर्ष भी जैसे 12 जून तक 2.46 लाख टन जो है हेक्टेयर में दलहनी फसलों को लगाया गया है। सरकार ने ज़रूर ये जो
4: 200 रुपए
3: का बोनस दिया है तो उनको उम्मीद है कि ये तीनों प्रमुख जो दलहन फसलें हैं ये उड़द मूंग अरहर का इसकी तरफ लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, किसान इसकी खेती बढ़ाएंगे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भी यह कि जो इन तीनों दलहनी फसलों की जो नई किस्में जो ज़्यादा पैदावार देती हैं उसकी तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित होगा और शायद वो ज़्यादा पैदावार करके दलहन की बढ़ा लें। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है दालों का आयात करने पे का फैसला लिया है, ये खुद ही स्पष्ट कर देता है कि दलहन फसलें जो है हमारे यहाँ मांग से बहुत
4: नहीं बढ़ेगा।
3: हाँ, एकदम बढ़ेगा भी नहीं और मांग कहीं ज़्यादा है उसके, उसको देखते हुए जो है हमारे यहाँ उत्पादन जो है उतना नहीं हो पा रहा है और ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है।
4: ये MSP की जहाँ तक बात है निगम साहब, और अन्य फसलों की भी अगर बात करें तो उन फसलों में क्या MSP का लाभ किसान ले पाते हैं जब इतने लोग ही MSP से नहीं जुड़े हैं? किसान 80% तो बिल्कुल अलग है, हो सकता है और ज्यादा हो यह आंकड़ा, तो उसका फिर कैसे हम MSP से कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है ये आकलन कैसे करें?
3: जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमारे यहाँ जो किसान है लघु और सीमांत किसान जो है उनका 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं
4: जी,
3: और उसमें भी जब परिवार बढ़ रहा है तो और टुकड़े होते चले जा रहे हैं
4: जी,
3: तो उसकी वजह से क्या है कि ना खेती और नई युवा पीढ़ी जो है वो खेती पे ज़्यादा उनका लगाव भी नहीं है, वो खुद ही खेत से पलायन कर रहे हैं, शहरों में आके नौकरियां कर रहे हैं अपने, तो उसकी वजह से है ना ये नहीं हो रहा। और फिर दूसरे किसान का भी जो बिचौलिए जो होते हैं जो उसके साथ लूट मार होती है मंडी में, उसके साथ जो धोखाधड़ी होती है ये सब, तो उससे बहुत परेशान होता है किसान, खुद ही बिजली पानी इससे परेशान है और वो जो है अपने जो ये कॉरपोरेट घराने वगैरह जैसे हैं
4: इसमें भी तो कई शिकायतें हैं। कई जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा जो पूरी तरह फेल हो गई है, वहाँ किसानों को वो पैसा नहीं मिला। और ये क्या कल को ऐसा तो नहीं कि आप एक सिस्टम से बाजार उनके हाथ में जाएगा उसके बाद मोनोपोली शुरू हो जाएगी, ये भी तो एक जो है हमेशा संदेह रहता है कॉर्पोरेट
3: बहुत बड़ा जो है ना,
4: तो उसमें एक मुद्दा यही है कि MSP से कैसे
5: नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट घराना कभी भी खेती में आएगा कोई लाभ नहीं होने वाला।
3: बिल्कुल
5: जी, आखिर हमने समर्थन मूल्य इसलिए घोषित करना शुरू किया कि व्यापारी उनकी लूट मार करते थे
4: जी।
5: हमने APMC कृषि उपज मंडियां इसलिए शुरू की कि वहां पर एक सामने सबके सामने सब कुछ स्पष्टता से हो, और आज फिर से कॉर्पोरेट घराने यदि घर पर जाकर खरीदारी कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बीच में लेकुना फिर से आ रहा।
6: उसका एक समाधान हो रहा है।
5: एक बात और केवल मैं कहना चाहता हूँ, जो MSP घोषित करता है उसने खरीदारी की भी गारंटी लेनी चाहिए,
4: ये सबसे
5: इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
6: जब सारी वस्तुओं पर
4: आप हक साहब इसमें क्या सोचते हैं, क्योंकि किसान अपनी चीज बेचे तो उसको वो केंद्र भी तो खुले होने चाहिए ना, कपास का
6: बिल्कुल सभी चीजों का।

0: आज के दिन में सभी लोग कहते भाई मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट टैक्स क्या, तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है?
1: नहीं भट्ट साहब, इसमें मेरा एक कहना है,
0: ये है कि मार्केट हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं चाहते, लेकिन मार्केट में इस तरह का लोग जब एक्सप्लॉइट करें, अभी देखिए अभी क्या हुआ, दलहन के दाम, आप मूंग का दाल जो है आप 40 रुपये किसान को देते हैं, आप बाजार में आज का दाम 1300
1: नहीं नहीं
0: 13000
1: इसका हिसाब है अनुराग जी, उसका सबसे ये है कि जैसे आपने हम कहे कॉर्पोरेट को आप खरीदारी से बाहर कर दो, क्यों कर दे,
2: एक विकल्प किसान के पास होना चाहिए,
1: नहीं सारी दुनिया खरीदे, कारपोरेट हो चाहे सामान्य हो, सबको खरीदारी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एमआरपी लिख दो, आप जब सारी चीजों पर आप अधिकतम मूल्य
2: हो, विशेष से इधर जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है एमएसपी जो है,
1: एमएसपी
2: अगर उस पर है उसका फायदा किसान को कैसे मिले,
1: एमआरपी लिख करके
3: बताता हूँ,
1: एमआरपी लिख करके
3: एमआरपी एक मिनट,
1: आप एमआरपी घोषित कर दो ना,
3: 200 रुपए की चर्चा की गई बोनस की, 500 रुपए बोनस 9-10 में दिया गया था दलहनों पर, और उसी साल मूंग 3670 था एमएसपी, बाजार में बिका 1800, और हमने अच्छा। लगातार किया आंदोलन, हम 2010 से अब तक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार खरीदने को तैयार नहीं है, तो एमएसपी घोषित कर भी देंगे तो किस काम की है जब तक खरीद नहीं हो, जबकि ये सीएसीपी ये कहते हैं ये गारंटेड मूल्य है, ये भारत सरकार की गारंटी है, यदि सरकार नहीं खरीदेगी, किसानों को कम दाम में बेचना पड़ा तो सरकार उसकी अंतरराशि देकर भरपाई करेगी, हमने क्लेम किया पिछले वर्ष ही, 3 फसलें नहीं खरीदने से राजस्थान में अकेले में 11,75,00,000,000 रुपए का घाटा हुआ किसान को, हम मांग कर रहे हैं सरकार से इसको दे, पिछले 5 सालों में 80,00,000,000,000 रुपए का घाटा हुआ अकेले राजस्थान के किसान को 7 फसल नहीं खरीदने से, किस एमएसपी की बात कर रहे हैं हम, इसलिए और ये जो कह रहे हैं हम 200 रुपए हमने दे दिए, जो सरकार प्रचार कर रही है 200 रुपए दे दिए इसलिए दलहन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तब तो खरीदोगे,
0: हाँ बिल्कुल
2: खरीदना भी जरूरी है। संतोष जी आपके क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं, किसान जो है उसके साथ समस्या ये है कि एमएसपी की घोषणा तो हो गई, उसने उपज भी ले ली, बेचने के लिए जो केंद्र है वहां पर भी तो बहुत गड़बड़ियां हैं,
4: ये
2: पूरा एक साथ मिलके ही होगा,
4: शुरुआती दौर पे ये कह चुके कि एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है खरीदारी, और चूंकि जहां से हम आते हैं वहां तो हम 2-3 वर्षों 4 वर्षों से देख रहे हैं, बल्कि पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि जिन्हें शुद्ध रूप से आप कहते बिचौलिए
0: जी वही खरीदते होंगे,
4: आप आज सूचना के अधिकार में किसी भी तरह से जानकारी कीजिए कि वहां पे कितनी खरीद हुई है, खरीदारी पूरी दिखा रहे हैं और किसान से एक बिदाना नहीं खरीदा गया, तो एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण कि हमारा गेहूं वहां खरीदा जाए, हमारा धान खरीदा जाए, हमारी फसल खरीदी जाए,
5: हमारे यहाँ कहावत है बोले सो कुंडी खोले, आपने बोला है आपको खरीदना चाहिए
0: जी, मैं ये
5: व्यवस्था
3: नहीं, ये चीज कह चुके ना कि इसके लिए प्रदेश सरकारों को कहीं ना कहीं आगे आना होगा, ऐसा प्रदेश सरकार नहीं, इसमें जो एमएसपी घोषित करता है वो खरीद के लिए
2: जिम्मेदार,
3: और जो प्रदेशों को दे रखी है वह विकेंद्र खरीद योजना एक आपने लॉन्च की हुई है, उस विकेंद्र खरीद योजना में कुछ इंसेंटिव देता है सेंटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इट्स द बाउंड ऑन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एमएसपी घोषित करेगा वो खरीदेगा, इसलिए आज एक विषय बना दिया पूरी एमएसपी ने, ये विषय बना दिया ये खरीदे वो खरीदे ये खरीदे, खरीद की जिम्मेदारी किसकी,
2: कई सारी एजेंसीज का
3: लोकल की
1: व्यवस्था
0: एक सेकंड जरा, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जब से शुरू हुआ उसका एक पर्पस यही था कि मार्केट में उससे नीचे बिकना नहीं चाहिए, जब भी मार्केट में उससे नीचे जाएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा, तो जब सरकार व्यवस्था करेगी उस तरह के खरीदने की तभी खरीदारी होगी, तो वो अभी तक एक्चुअली 2-3 फसलों को छोड़ के बाकी है ही नहीं व्यवस्था, दूसरी बात हम ये नहीं कहते प्राइवेट वाले ना खरीदे, लेकिन प्राइवेट वाले खरीदे तो कम से कम न्यूनतम मूल्य जो है उससे कम में ना खरीदे, उससे ऊपर देके खरीदे,
3: इसका तरीका है,
2: मेरा कहना है
3: अभी
2: मेरा कहना है छोटा सा एक ब्रेक ले रहा है,
3: वहां बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है
0: बिल्कुल,
3: और किसान बिचौलियों को दे रहा
2: है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं, देखिए अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और चर्चा जो है वो एमएसपी पे हो रही है, आप सब जानते हैं बहुत सी बातें हैं जो उसमें उभर के आ रही है, थोड़ा आगे ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एमएसपी का दायरा भी बढ़ाएं और किसान को उसका सही लाभ पहुंचे ये कैसे तय करें। देखिए ये बहुत अच्छी एक खबर रही लोगों के लिए कि एमएसपी में जो खरीफ के एमएसपी आए उसमें दाम बढ़े और 200 रुपए का जो दलहन के लिए बोनस दिया गया वो भी एक अच्छी पहल है, लेकिन बहुत से किसान अभी एमएसपी के दायरे से ही बाहर हैं, अगर एमएसपी का सही लाभ हमें देना है तो उन किसानों को भी उस दायरे में लाना हो।

0: होगा और उससे भी बड़ी चीज खरीद केंद्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रामपाल जी, कैसे आपको लगता है कि एमएसपी की अवधारणा से हमें कोई शिकायत नहीं है, किसान को लाभ हो यही एक कोशिश थी, कैसे वो लाभ पहुंचे इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
1: अनुराग जी, सबसे पहला काम होना चाहिए देश की मंडियों में जो नीलामी बोली शुरू होती है वो शुरू हो न्यूनतम समर्थन मूल्य से। दूसरा, खरीद केंद्र हो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति। तीसरा, जो ई उपार्जन पद्धति मध्य प्रदेश ने शुरू की
0: जी,
1: वो हो सब फसलों के लिए लागू हर स्टेट में। चौथी, यदि सरकार खरीदने में अक्षम रहे, किसी भी प्रकार से खरीद नहीं पाए, तो जितना कम दाम एमएसपी से किसानों को मिला है वह अंतर राशि घाटे की भरपाई के रूप में सरकार दे किसानों को। और एक मैं कोट करूंगा टीटी कृष्णमाचारी, 1964 का उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा सरकार केवल दो काम कर दे, किसान को लाभकारी मूल्य दे दे, उसके घर से उसकी फसल खरीद कर ले, तीसरा काम कुछ करने की सरकार को जरूरत नहीं, किसान अपना आप कर लेगा।
0: जी, बहुत बढ़िया बात कही रामपाल जी, और ये बात सही भी है कि एक तो जब बोली ही आपके एमएसपी से शुरू होगी तो उससे ऊपर ही जाएगी, तो इसका लाभ जरूर किसान को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं तेवतिया जी, किस तरीके से एमएसपी का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जाए और किसानों को लाभ हो?
2: देश का जो किसान है वो इस हालत में नहीं है कि वो सारे संकट को झेल पाए। पूरे देश की फसल एक साथ आती है और एक साथ ही वो बिकती है
0: जी।
2: बाजार उसका शोषण वहीं से शुरू हो जाता है क्योंकि फसल आ गई, उसको क्या करेगा? भंडारण की अगर व्यवस्था हो जाए, अब चूंकि भंडारण करेगा उसके पास में इतना, उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उतने जितने का उसने भंडारण किया है
0: जी,
2: बैंक से बिना ब्याज के उसको पैसा मिल जाए, उसका धन जो उसका भंडारण हुआ है उसने रख दिया है, जब उसको उचित मूल्य लगा बेचेगा।
0: तो वो तो वेयर हाउस की स्कीम है
2: वो नहीं है, किसी किसान को नहीं मिलती, वो व्यापारियों के लिए होगी बड़ी बड़ी जगह। और कहां कि सरकार के पास भी कहां सारा खेत खुले में रखा है सारा अनाज भी।
1: दो सर
2: छोटे छोटे वेयर हाउस बने,
1: एक्ट है जिसमें कोई भी अपनी फसल को
2: नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, छोटे छोटे बने
1: पूरे हिंदुस्तान,
2: बड़े बड़े नहीं है,
1: उसका इसको एग्जीक्यूशन नहीं
2: है, और बैंक उसको पैसा दे, बैंक उसको उसका सारा पैसा दे दे तो वो काम चला लेगा और समय पर उसको बेच देगा, उसका शोषण नहीं होने का है। मजबूरी क्या है? मंडी में ले जाना है उसको, मंडी में ले जाने के बाद जो भी रेट होगा उसको बेचना पड़ेगा, मंडी में शोषण होता है। मुझे पता है कि किसानों से बात करते हैं कि उसको मंडी शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन किसानों से लिया जाता है
0: जी,
2: हमारे कहने के बावजूद भी वो देते हैं 2% पैसा काट कर उसको पैसा देते हैं व्यापारी, यदि आज पैसा चाहिए तो आपको 2% काट कर भी दे देंगे हम, उसको सारी जानकारी।
0: वो हर तरीके का, सच कहें तो किसान को हर तरीके की परेशानी जो है वो सच कहें तो बुआई से लेके और बेचने तक हर स्तर पे आ रही है।
2: दूसरा, उनको जैसे हमने कच्चा दाल है बेच दी, उसको प्रोसेसिंग की क्रिया और उसको छोटे छोटे कल कारखाने दाल भी वो बनाना शुरू कर दे, अगर किसान अपने माल का
0: प्रसंस्करण जो है उससे भी किसान को जोड़ा जाए उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी।
2: हल्दी बुआ दी हमारे यहाँ, हल्दी लेने वाला कोई नहीं है, उसको उचित मंडी नहीं मिली, तो बिचौली आकर के उसको सस्ती में बेचना पड़ा, इसको मैं ले कहां जाऊंगा।
0: संतोष जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके के प्रयास होने चाहिए कि एमएसपी का लाभ वाकई में किसानों को मिल पाए?
3: पी के लाभ के लिए सबसे पहले भाई साहब जी जो कह रहे हैं नए पंचायत स्तर पे, ये सच है कि नए पंचायत स्तर पे खरीददारी की व्यवस्था होनी चाहिए और भंडारण की व्यवस्था भी हो सके तो वहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि हम खरीदते हैं, भंडारण करते हैं और फिर उसी को वितरण प्रणाली में भेजते हैं।
0: और एमएसपी का क्राइटेरिया भी बदलना चाहिए,
3: का क्राइटेरिया इसलिए बढ़ाना चाहिए कि जो हमारा भंडारण का खर्चा है, जो किसान चाहें वो जैसे मई जून में नहीं बेच रहे हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर में जब भी बेचें, तो जो भंडारण का खर्चा है गवर्नमेंट सरकार वो भंडारण का खर्चा उन किसानों को प्लस करके दे। और जो आप कह रहे हैं कि बैंक से उनके लिए ऋण की व्यवस्था कराई जाए, ये सत्य है, उनको पैसा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा तो अपना बेचेंगे। और जो सरकार के भंडारण में नुकसान हो रहा है, लाखों टन गेहूं गला
0: है। निगम जी, आपको क्या लगता है, जैसे हमने सुना क्या क्या तरीके हैं, आपको क्या लगता है कि एमएसपी में एक तो इस दायरे में और भी फसलें लानी चाहिए, सब चीजें जो है उसके दाम न्यूनतम तो सुनिश्चित होंगे, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कैसे इसका लाभ और किसानों को दिया जा सकता है और ज्यादा किसान इससे जुड़े, इसके लिए क्या करना?
4: सभी हमारे साथियों का कहना था कि खरीदारी पे ज्यादा होना चाहिए, अब नेफेड है उसको खरीदारी का, लेकिन उसके पास आते ही नहीं, वो खरीदारी जितना लक्ष्य होता है वही पूरा नहीं कर पाते,
3: नहीं खरीदारी वो करते नहीं क्योंकि हाँ, तो वो सब बिचौलिया, किसान सीधे नहीं पहुंचते। वो
4: दूसरे पंजाब में उन्होंने कुछ जिलों में ऐसा किया है,
3: बहुत बड़ी समस्या
4: कि किसानों ने अपने ही है ना बिक्री केंद्र बना दिया, खेत के पास ही बना दिए हैं और वो अपना सामान वहीं रखते हैं, वहीं बेच देते हैं, वो सरकार को ही नहीं देते, वो अपने कहने लगे कि सरकार से ना तो पैसे मिलने, आज अगर हमसे खरीद लिया तो पैसा मिलेगा 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, उसमें भी कटौती हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि 2% इसमें, तो इस तरीके से ये जो
0: वो बाजार की एक बात हो गई निगम जी की, बाजार के तो कई विकल्प देने पड़े, एक डायरेक्ट सेलिंग की भी हम बात करते हैं किसान, और उसकी कोशिश भी हो रही है कि किसान को बेचने के लिए सीधे बाजार मिले, लेकिन मुख्य बात इसमें यही है एमएसपी के दायरे में सब आ पाए,
4: इसमें और भी फसलें आनी चाहिए, है खाली यही नहीं है कि आपने जो है गिनी चुनी जो 2-4
2: सब्जियां
4: हैं वो ही अपने कर दिया, अब प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता है किसान, वो इतना परेशान हो जाता है, उसके सारी फसल चौपट हो जाती है, अब पता चला कि उसने फसल बोई भी कर्ज लेके वगैरह, अब आपने आगे एमएसपी भी घोषित कर दी, जब उसकी फसल ही नहीं है तो वो क्या बेचेगा और क्या करेगा,
0: और उसमें कृषि बीमा वगैरह ये सब बातें भी उसमें आ रही है।
4: हालांकि इन्होंने अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान में किसान जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, एसएमएस से भी प्राकृतिक उसकी मौसम की जानकारी देनी वगैरह शुरू किया, लेकिन ये कितने किसान, हमारा किसान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब आपने तो कह दिया जी कंप्यूटर पे या फलाने उस पे आ जाएगी, वो उसको पता ही नहीं, वो तो अपने पुराने परंपरागत जो तरीके हैं उन्हीं को अपना रहा, उसी से खेती कर रहा है, उसी
0: उन सबसे जोड़ने के जो प्रयास है वो चले जाए।
4: तो ये सब
0: जी आपको क्या लगता है कि एमएसपी जो है कितना प्रासंगिक है, कितना सार्थक, उसको और कैसे बनाएं और क्या तरीके होने चाहिए?
5: देखिए जो आदरणीय रामपाल जी ने कहा है और बाकी सब लोगों ने कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, और इसके अंदर मेरा जो आज बार बार चर्चा आ रही कि दलहनी फसलों की हमारे यहाँ कमी है
0: जी।
5: तो उसका जो दूसरा पक्ष है, हमारे यहाँ के यहाँ पर जो जलवायु है वो गेहूं और चावल के लिए बहुत अनुकूल है, दलहनों के लिए उसके प्रकार के जितने खोज होकर के उनको जितनी सुरक्षा चाहिए और कुल मिलाकर के किसानों को जितनी सुरक्षा चाहिए वो आज उपलब्ध नहीं है, किसान पग पग के ऊपर खतरे से खेलता रहता है, और इसलिए उन सारों को भी इसके अंदर जोड़ करके उसका आकलन जब होगा और जब तक उसको खरीदने की गारंटी नहीं रहेगी। अभी ये कहा गया कि कुछ कुल 24 फसलों की यहाँ पर एमएसपी घोषित होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि 109 फसलें ऐसे, अब मुझे समझ में नहीं आता कि हल्दी है, आलू है, प्याज है, ये तो नॉन पेरिशेबल है, कभी खराब बहुत देर में होते हैं, इनकी एमएसपी क्यों नहीं घोषित होती है?
0: और आलू किसान की तो हम यथा जानते हैं, आलू कितनी बुरी
5: किसानों की तो हम जानते हैं क्या हालत होती है
0: जी।
5: तो इसलिए एमएसपी का दायरा कई अन्य फसलों तक जाना चाहिए, कम से कम जो मुख्य फसलें हैं, चाहे वो बाग बगीचे वाले हों, चाहे सब्जी के अंतर्गत आती सब्जी वर्गी हो, या फिर मुख्य फसलें हों
0: जी,
5: और 100 से आसपास, कुल मिलाकर 100 के आसपास कृषि जिनसों का कृषि समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए
0: जी। हक साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार एमएसपी की घोषणा करे, बहुत अच्छी बात है, खरीदने का भी इंतजाम करे?
6: बिल्कुल करना चाहिए, उसके बिना तो इसका मतलब ही नहीं रह जाता। फिर
0: क्या तरीका है एमएसपी का दायरा और बढ़ाने का?
6: वो जैसे हमने पहले भी बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पहले तो आपको डिसीजन लेना होगा कि हर एक चीजों का, जब भी मार्केट से मार्केट में उनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो आपको खरीदना ही है, और खरीद के आप डिस्पोजल कैसे करेंगे उसका भी एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। राइस एंड व्हीट में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि तीन चीजें साथ साथ हुआ, तो उस समय आपको ध्यान में होगा 65-66 में सरकार ने तीन बड़ी चीज की थी, एक तो कि CACP क्रिएट करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, फिर FCI क्रिएट करके उसको खरीद के स्टोरेज करके, फिर PDS का सिस्टम क्रिएट करके उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात की, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी हो उस टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते
0: हैं,
6: राइस व्हीट आया, तो एकाएक फिर रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो ये तीनों का फल था, और अभी भी वही ऑब्जेक्टिव है कि हम कई चीजें में अभी भी हम उत्पादन कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे अभी भी लो है, तो किसानों को इंसेंटिव्स देना है, और इंसेंटिव्स के साथ साथ तभी इंसेंटिव होगा कि पल्सेस का दाम तो आपने फिक्स कर दिया, पल्सेस को प्रोक्योर नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा किसानों को, इसलिए हर एक मैं तो कहूंगा हर एक फसलों का इसी तरह से इंसेंटिव देकर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और प्रोडक्शन खाली बढ़ाने से नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ाकर आपने मार्केट प्राइसेस कम कर दिया तो फिर किसानों को नुकसान हो जाएगा, तो उनका इनकम सपोर्ट
0: जी
6: के रूप में देना है, इनकम उनका इनकम कभी भी कम ना हो, किसी का इनकम कम नहीं होता, अब सरकारी
0: नौकरों
6: का सिर्फ किसानों का ही होता है, हम तो हरदम 10%, 15%, 17% करके DA भी ले लेते हैं जब दाम बढ़ता है, लेकिन उनका जब चीजों का दाम बढ़ता है, इनपुट्स का दाम बढ़ता है, बाजार में ज्यादा दाम से खरीदना पड़ता है, तो उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण जब तक पॉलिसी बनेगी नहीं और एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वे में सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो किसानों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा और दुनिया में हर जगह इस बात को जानते हैं और होता भी है। आपके अमेरिका में भी फसल नहीं बोने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है। तो यहाँ फसल इतना मेहनत करके फसल बो के भी उसका अगर राइट प्राइस नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे नीति में, नियत में और लोगों की मतलब सोच समझ में कमी है। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करना,
0: मेरे ख्याल से कुछ समाधान भी इसमें जो है वो निकले हैं और लोग भी समझेंगे। और मुझे जो इसमें एक बात लगी कि देखिए किसान की आय बढ़ाने में किसान तो मेहनत कर ही रहा, सरकार भी एमएसपी दे रही, थोड़ा जो खेती से अलग लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हम महंगाई और उन सब का दोष देके अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। किसानों को दुनिया भर में बड़े देशों में जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया सब्सिडी दी जाती है, पैसा दिया जाता है खेती ना करने का भी, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम तो अन्नदाता मानते हैं, हम तो भगवान के तौर पर किसान को देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हमें समझनी होगी, उनके साथ जुड़ना होगा। और एमएसपी एक मुद्दा है, उससे जुड़े और भी बहुत मुद्दे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई कि आपको दाम बढ़ा के मिले, एक अच्छी शुरुआत है कि 200 रुपए का बोनस भी मिला दलहन में, और उसमें जो किसान है उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन ये फायदा और बढ़े, इसका दायरा और बढ़े एमएसपी का, ये कोशिश रहेगी। और उम्मीद करते हैं सब कोशिश में आप भी हमारे साथ हैं। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
7: तो किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम ने जेम के अमुए शुरुआत में कह दिलो के आजनो कार्यक्रम है जो थोड़ो अलग थवा वालो है, तो बिल्कुल आजना यू कार्यक्रम काफी अलग हतु बाकी कार्यक्रम होती। आजनी इना कार्यक्रम में आप ये जानियो के किकम जो आपणो मूल्य है तीनो निर्धारण किकम थाय है, अने आपू भली बात ही वाकिफ है कि आप किसान भाई कितरा दुखी है एनी बात था कि जो आपण जो मूल्य है हमारा किसान भाई इतनी मेहनत करे है खेतरों में ने तीनो मूल्य है आप फसलों मूल्य इतरो आपू नहीं मळे है, तो कहीं ना कहीं कि आप किसान भाई है हताश थी जाए है, निराश थी जाए है, तो कहीं ना कहीं ये खरी बात हती। अने आप अमल करवानी जरूरत है, आपण एम नहीं कि हार मानवानी जरूरत है, आपण अमल करवानी जरूरत है। अमल करीन यूं देखवू है कि आपणथी कहां पर भूल थई रही है, आपुन कहां पर आपुन आपणी खुदनी सुधारनी आवश्यकता है, कहां आमुन हदरवानी जरूरत है, तो इन्हीं बातों ने आप पर ध्यान रखवानी जरूरत है। किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम में बस इतनू ज, केम के समय थई गयो है तमारथी विदा लेवानो, तमारथी फेर काल मुलाकात थाय इना समय पर। एतरे बणेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ની હાથે જાવવાની આવાસ પર।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। समीर गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक और बहुत स्पेशल एपिसोड जिंदगी अनप्लग्ड में, जहां हम बात करेंगे आपकी बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड एंड ऑथर्ड बुक एकलव्य के बारे में, जो बहुत सारे प्रैक्टिकल इंसाइट्स आजकल के लोगों के साथ शेयर करती है। तो सर, आप कैसा फील कर रहे हैं अपने खुद के एक SN रेडियो के एक शो में आने की, क्या फीलिंग है आपकी? और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लाइक आई सेड, जैसे मेरा प्रीवियस इंटरव्यू भी आपके साथ बहुत ही एक्साइटिंग और इंथ्रॉलिंग था, तो ये एक्सपीरियंस भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप कैसा फील कर रहे हैं सर?
2: देखो यार, ऐसा है कि थोड़ा सा अभी मैं जो कहने वाला हूँ आपको ड्रामेटिक लगेगा। अभी जस्ट आज ही हमारे जो फेलो रेडियो फ्रेंड हैं आरती जी, शी इज मेकिंग अ प्रोग्राम ऑन गजल्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी गजल बता दीजिए एंड व्हाई एग्जैक्टली डू यू लाइक दिस गजल। तो ठीक है, मैंने उनको बताया जो मुझे अच्छी लगती है। वैसे बहुत ज्यादा मैं गजलों में नहीं घुसा हुआ हूँ, तो खैर वो शुजात खान साहब की गजल है, तो उसमें जो एक अल्फाज आते हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसी के लिए मैं बोलना मतलब बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि कैसा महसूस हो रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे आने पर,
1: आपकी बेबी पे, यस, आपकी बेबी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, यस, लेट्स रीफ्रेज इट अ लिटिल, यस।
2: ओके, तो होता क्या है कि मैंने उसमें ये चीज बताई कि सभी लोगों से बातचीत करना, देखो ये बड़ा मदरहुड स्टेटमेंट लगेगा कि जब कभी भी मैं किसी से बात करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, वो अगला व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब उसके लिए किसी भी तरीके का पैसा वैसा भी मेरे लिए मायने नहीं रखता, ध्यान ही नहीं आता, तो बहुत ज्यादा खुशी होती। जबकि इस चीज पर मेरे को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार थोड़ा सा ख्याल रखा करो कि भाई अपना भी, यू शुड बी स्लाइटली सेल्फिश, है ना?
1: करेक्ट।
2: तो उस गजल में उन्होंने ऐसा कहा है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। सो
1: क्या बात है,
2: मतलब पॉइंट ये है कि सब लोगों से बात करते करते वही चीज मैंने आरती जी को भी कही, उन्होंने पूछा कि क्यों पसंद है, तो मैंने कहा भाई सब लोगों से बात करते करते करते मैं भूल ही गया हूं कि मुझे बुक्स लिखनी पसंद है, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, बड़ी सारी चीजें पसंद हैं जो शायद थोड़ा सा बैक स्टेज ले रही हैं। तो लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में देखें तो मुझे आजकल लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका एप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि अपने ही प्लेटफॉर्म पर आकर जाहिर सी बात है, आई एम अमेज्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूं मैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
1: जी, और आपके बारे में भी कोई जानना चाहता है, जिस तरह से आप लोगों को जानना चाहते हैं, आपसे भी लोग पूछना चाहते हैं, जैसे कि मैं उनमें से एक हूँ, कि आपको क्या पसंद है, जैसे आपको बुक्स लिखना पसंद है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? एंड जैसे आपने कहा कि लोगों को आपसे बात करके यू नो एक स्माइल आ जाती है, वो बहुत सच बात है, क्योंकि आपकी आवाज में वो जादू है, मतलब there's some magic in your voice, जो सुनते ही एक स्माइल आ जाती है, and it just doesn't cease throughout the conversation. तो yeah, congratulations on that, sir.
2: Thank you so much.
1: जी, चलिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डीप डाइव करते हैं आज हम एकलव्य की जर्नी पे। एक सवाल तो मेरा वही है, बहुत ही क्लीशे सवाल, कि एकलव्य की जर्नी शुरू कैसे हुई, किस तरह से आपने पेन पेपर ड्राफ्ट करना शुरू किया इस पूरी बुक को, और कैसे ये थॉट आपके दिमाग में सीड डला कि मुझे इस तरह की एक बुक लिखनी है जो इतनी प्रैक्टिकल है, इतनी रियलिस्टिक है, येट इतनी प्रिंसिपल्ड है, तो ये कैसे हुआ? और दूसरा, लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरह से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा से डिफरेंट है?
2: आपने पढ़ी है बुक?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जर्नी के थ्रू, मैं बॉम्बे जा रही थी तो ट्रेन जर्नी में मैंने पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत बुक है सर।
2: ओके, अब बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा इस चीज को। आई वाज इन जयपुर अराउंड 7-8 साल पहले मैं वहां पर था, तो एक मौका मिला टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब ज्वाइन करने का। हमारे सुनने वालों में से बहुत लोग जानते भी होंगे इसको, और अगर नहीं जानते हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल करो टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल क्लब। तो इसको ज्वाइन किया, फिर उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, तो बेसिकली ये क्लब होता है कि जहां पर आपको बोलने का मौका मिलता है, दूसरे लोगों को सुनने का भी मौका मिलता है, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आ जाता है, और उसमें मॉड्यूल्स होते हैं इंटरनेशनली। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे याद नहीं अभी। वहां से बकायदा आपके पास एक 2 या 3 बुक्स आती हैं जिसमें मॉड्यूल्स लिखे होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। कंप्लीट करने मतलब होता है कि आपको एक टॉपिक चुनना है और 5 मिनट के लिए आपको टाइम मिलेगा। यू नीड टू ब्लॉक और बुक योर स्लॉट कि अगली मीटिंग में साहब मैं करूंगा। उस तरह से बुकिंग डलती है, कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, नथिंग। और आपको अपना स्पीच प्रिपेयर करनी है और वहां पर डिलीवर करना है 5 मिनट। और वहां पर जजेस हो रहते हैं, हमारी टीम के ही होते हैं लोग, वो जज करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें एक मॉड्यूल आया, प्रिसाइसली क्या मॉड्यूल था वो मुझे याद नहीं पड़ रहा है, तो सोचता रहा, मैंने बुक तो कर दिया फौरन, क्योंकि बुक करने के लिए भीड़ लगती है। उसके बाद आई कैप्टन, एक हफ्ते का वक्त होता है, आई कैप्टन थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, और फिर मुझे लगा कि एक किसी कैरेक्टर के ऊपर बात करने की बात थी, तो मुझे अचानक से पता नहीं कहां से एकलव्य स्ट्राइक किया। थोड़ा सा पढ़ा, और जितना भी बचपन से जानते थे महाभारत को और सुना समझा था, फिल्मों में देखा था मम्मी पापा से, तो देखा और लगा कि यार एकलव्य

0: के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होती नहीं है, ना तो कोई लिटरेचर है, ना कोई बहुत लंबी चौड़ी बुक्स हैं, कहीं वेद पुराणों में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या चक्कर है। तो थोड़ा सा डीप जाकर देखने की कोशिश की तो बड़ा बेचारा सा, मतलब बहुत ही पुअर बेचारा सा एक कैरेक्टर दिखाई दिया, जिसके साथ यूं देखा जाए तो हर समय बेइंसाफी ही हुई।
1: बिल्कुल।
0: तो मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया उस चीज को लेके कि यार ये क्या नाटक है। फिर अगर इतनी ही बेइंसाफी दिखानी थी तो फिर उसका जिक्र ही क्यों किया गया, जिक्र ही ना करते। तो फिर मुझे थोड़ा सा, देखो ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं सभी लोगों से माफी चाहूंगा ये बात कहने के लिए, हो सकता है उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अर्जुन के ऊपर और द्रोणाचार्य के ऊपर गुस्सा आ गया।
1: करेक्ट।
0: कि क्या मतलब अपनी
1: अनफेयर,
0: हाँ अपने वो टीचर थे तो अपने ईगो को, इतना बड़ा ईगो को दिखलाने के लिए, और अर्जुन क्योंकि एक आर्चर था और उसको ये साबित करने के लिए ही इज द बेस्ट, मतलब उन्होंने जानबूझ के एक एकलव्य जैसे एक चरित्र का निर्माण किया, जबरदस्ती उसका निर्माण किया गया, शो किया गया कि वी आर द बेस्ट और ये देखो। बाकी और कहीं पर उनकी महानता के जिक्र नहीं आते हैं, मतलब जानबूझकर एकलव्य को बनाया गया कि साहब उनकी महानता दिखा दी जाए। इस चक्कर में मुझे थोड़ा और गुस्सा आ गया, मैंने यार ये क्या नाटक हो रहा है। तो मैं एकलव्य की तरफ थोड़ा और झुक गया, इमोशनली अटैच हो गया उससे। फिर थॉट प्रोसेस चलता रहा, फिर इसके बाद स्पीच बनाई और दे दी, ओके जो भी स्पीच थी मेरी। बट वो स्पीच अटक गई दिमाग में और चलती ही रही, कई साल गुजर गए और उस स्पीच ने और एकलव्य के चरित्र ने मुझे छोड़ा नहीं। बार बार मुझे ये लगता रहा कि फिर जैसे जैसे सोचते गए तो नीचे उतरते चले गए। फिर इसके बाद ब्रायन ट्रेसी की एक मेरे को बुक ब्रोक मिली। ब्रायन ट्रेसी इज अ वेरी फेमस राइटर जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लिखा है ना, ईट दैट फ्रॉग, उनकी जो सबसे अच्छी फेमस बुक है वो है ईट दैट फ्रॉग। बट वेल समहाउ मैं ब्रायन ट्रेसी से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूं, आई डोंट लाइक हिम, जो भी है ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन उनकी एक बुक मेरे को मिली जो यूनिवर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखा था
1: जी।
0: तो मतलब मेरे ख्याल से 24-25 प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है, तो पढ़ा अच्छा लगा। तब मेरे को अचानक से एक स्ट्राइक हुआ कि एकलव्य इन प्रिंसिपल्स में कहां पर फिट होता है। तो देखा कि वो तो कहीं भी फिट नहीं होता है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब अगर नेचर ने उस चरित्र को बनाया था तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ना।
1: करेक्ट।
0: तब ये प्रिंसिपल मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि एकलव्य जो था वो एलिजिबल था, पात्र था, मतलब वो शिक्षा पाने के लिए अधिकारी था। उसको न तो उसकी माँ ने बनाया था अधिकारी, ना बाप ने बनाया था, ना इस दुनिया ने बनाया था, ना उस टीचर ने बनाया था, ना अर्जुन ने बनाया था, ना उस समय ने बनाया था। लेकिन उसकी जो मतलब उसकी जो क्या बोला जज़ील थी सीखने की वो इतनी ज्यादा थी कि वो एलिजिबल बन गया। तो ये लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी इस तरीके से एग्जिस्ट में आया, फिर दिमाग चलता रहा और तब फिर मुझे लगा नहीं यार आई नीड टू राइट अ बुक ऑन दिस। बस उसके बाद शुरू हो गया। फिर मेरा एक फ्रेंड जयपुर में है साबिर, उन्होंने मेरे को वो भी कहा कि यार तुम इतना बोलते रहते हो तो फिर इसके बारे में लिख क्यों नहीं डालते हो। फिर मैंने साबिर को एकलव्य के कैरेक्टर में रखकर देखने की कोशिश की तो लगा कि ये तो सारा का सारा उस पर फिट बैठ रहा है, तो और मजा आ गया। बस उसको डेडिकेट करते हुए ये बुक आ गई एग्जिस्टेंस में।
1: How beautiful, sir. किस तरह से एक थॉट के ऊपर ग्रो होते होते और उसका एक एग्जिस्टेंस का रीजन जानने के लिए कि क्यों वो उस ग्रंथ में मेंशन्ड है, वो कैरेक्टर किस तरह से वो हमें इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उसको इतना डीप में जाके आपने सोचा और उस पर डिवेलप किया पूरी स्टोरी, विच इज कमेंडेबल। तो लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी इटसेल्फ क्या है सर? अगर ऑफकोर्स जो रीडर्स हैं वो पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा, बट अगर हम इस पॉडकास्ट के थ्रू बात करें लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी के बारे में तो वो क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा से कैसे डिफरेंट है?
0: ओके, सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं कहूं, जो कि मैंने इस बुक में भी लिखा है और आपने अभी अभी कहा कि लोग पढ़ेंगे तो जान भी जाएंगे, कि जिस वक्त आप बहुत शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, देखो वो शाहरुख खान की मूवी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको गिटार सीखना है, आपको कविता लिखनी है, आपको पेंटिंग, आपको स्विमिंग सीखनी है, आपको दौड़ना है, एनीथिंग, उसको सोचते सोचते आप पागल हो जाओ। मतलब हर समय आपको वही चीज दिखलाई दे, हमेशा आप उसी में गुम रहो कि मुझे ये सीखना है करके। तो क्या होता है कि इस प्रिंसिपल के तहत आप एलिजिबल बन जाते हो, मतलब कि आप उस शिक्षा को पाने के पात्र बन जाते हो, कैंडिडेट बन जाते हो। और जिस वक्त आप कैंडिडेट बनते हो, फिर ऑटोमेटिकली ये नेचर, ये प्रकृति टीचर आपके पास भेजती है कि लो इस बच्चे को जाओ, इस कैंडिडेट को जाओ सिखाओ। So, आपको नहीं ढूंढना है टीचर, आपको अध्यापक, आपको अपना गुरु नहीं ढूंढना है। ये बहुत अजीब सी बात लगेगी, लोग बाग गुरु ढूंढते रहते हैं,
1: पूरा जीवन
0: गुरु ढूंढते हैं कि जी मेरे वो गुरु जी है, वो माता जी मेरी गुरु है, हम उनके पास जा रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ वो बात समझ में कभी आती नहीं है। लेकिन माय पॉइंट इज कि इफ एट ऑल यू बिकम एलिजिबल टू गेट दैट नॉलेज,
1: जी,
0: वो गुरु आपके पास खुद चल के आएगा और वो कहेगा बेटा तुम पात्र हो, तुम्हें भगवान ने भेजा है मेरे से शिक्षा लेने के लिए, तो आई एम ओब्लाइज्ड। गुरु एक्चुअली ओब्लाइज्ड होना चाहिए शिक्षा, उसको शिक्षा देने के लिए। सो दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। अब इसका डिफरेंस अगर हम बात कर लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो सिंपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई आप किसी भी चीज को, अब उसमें कोई विद्या भी हो सकती है, ओके, पाने की बहुत बहुत बहुत ज्यादा इच्छा होती है और आप विजुलाइज करते हैं, और उसमें जो सबसे बढ़िया तड़का लगता है वो होता है फीलिंग्स। आप फील करना शुरू करते हैं कि आप वो चीज या वो विद्या या व्हाटएवर आप पा चुके हैं, इन प्रेजेंट यू हैव अचीव्ड इट। कोई घर, गाड़ी, जीवन साथी, कोई बुक, कोई पेंटिंग, हेल्थ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप उसे पा चुके हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं। और उसे आप फील करते हैं, इफ एट ऑल आप बीमार हैं, आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं और आप महसूस करते हैं, विजुलाइज करते हैं दैट आई एम परफेक्टली ओके हेल्दी, तो कायनात आपकी तरफ वो देने लग जाता है। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
1: बिल्कुल।
0: और लॉ ऑफ कर्म, अगर आगे बढ़े, है ना, तो जैसा गीता में हमारे बॉस कह गए
1: जी,
0: करो करो, चिंता मत करो वगैरह वगैरह,
1: फल की इच्छा नहीं करो।
0: मैं तो फल की इच्छा बहुत करता हूँ, मुझे तो फल की इच्छा बहुत होती है। तो खैर एनीवेज, जैसे वो कह गए करते चलो
1: जी,
0: है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये बोलता है कि आपको ऐसे विजुलाइज करके बैठे रहना नहीं है, फिर कोई लड्डू की तरह सामने प्रकट नहीं हो जाएगा लेके, आप काम करते रहो अपना।
1: बिल्कुल, लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ो, सो एवरीथिंग एल्स विल वर्क।
0: सो ये लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी है और ये डिफरेंस है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई थिंक सबसे इसमें से प्रैक्टिकल और अचीवेबल जो मुझे लगा तीनों में से, वो लॉज में से आई थिंक विच दैट इज लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हो तो आप खुद को इतना निखारना शुरू कर देते हो कि अपने आप चीजें आपके लिए वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि आपने कहा कि गुरु आपके सामने अपने आप प्रकट होगा, प्रकृति खुद आपको भेजेगी कि अब आप पात्र हो, आप सुपात्र हो और आपको अब सिखाने की जरूरत है और अब आप रेडी हो अपनी जर्नी को एम्बार्क करने के लिए। तो आई थिंक द मोस्ट प्रैक्टिकल वे फॉरवर्ड इन टुडेज जनरेशन एंड इन एनी जनरेशन आई थिंक इज लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया, आप पहले इस चीज का आंसर दे चुके हैं, बट फिर भी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक है कि आज का जो जनरेशन है, जहां हम अगर एक लव्य वर्सेस अर्जुन की बात करें, इस चॉइस की बात करें, तो सभी एक तरह से अर्जुन ही हैं मोस्टली, क्योंकि सबके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट यू नो टीचर्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं, बेस्ट फैसिलिटीज हैं। तो ऐसे में जो एक लव्य मॉडल है, उसमें क्या आपको लगता है कि रिसोर्सेस की कमी और रिजेक्शन और ये जो अंडरडॉग क्वालिटी है, यही फ्यूल करती है लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी को और एक लव्य बनने में किसी को हेल्प करती है? किस तरह से आप इसको देखते हैं सर?
0: सच कहूं तो देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, भाई कोई कैंडिडेट है उसको, उसके पास अच्छा स्कूल नहीं है, मे बी उसके पास बुक्स नहीं है, मे बी उसके पास वो फैसिलिटीज, मे बी खाना नहीं है, भूख लगी हुई है लेकिन उसे पढ़ना है. वो कौन सी मूवी आई थी ना, वो एक आनंद जी वाली जो जिसमें
1: ट्वेल्थ फेल
0: ऋतिक रोशन ने काम किया. हाँ
1: जी जी जी जी, एक ट्वेल्थ फेल भी वैसी ही थी. ऋतिक रोशन वाली का नाम मैं भूल रही हूँ, बट यस आई गेट इट. हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल.
0: तो उसमें ऋतिक रोशन भी बोलता है कि एक लड़का आता है उसे कहता है कि सर मुझे भी आप ट्यूशन दे दो ना. तो ऋतिक रोशन उससे कहता है कि तुमने खाना खाया है? कहता हाँ सर खाया है. कहता वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाता हूँ उन्होंने खाना नहीं खाया है. ओके वो भूखे हैं लेकिन वो पढ़ रहे हैं. सो एनीवेज इस तरह से इमोशनल होने की जरूरत नहीं है. माय पॉइंट इज कि रिसोर्सेज नहीं है, बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, अच्छा कॉर्पोरेट स्कूल नहीं है, वगैरह वगैरह. ये चीजें, इन चीजों के ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते. और सो ये हुआ दूसरा पहलू सिक्के का. अगर पहलू सिक्के पहले फेस पर आए सिक्के के, तो वो ये है कि बिना फैसिलिटीज के भी अगर लोग एलिजिबल बनना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता. कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा स्कूल होगा, सारी फैसिलिटीज होंगी, तभी आप पढ़ पाओगे और आप जीनियस बन पाओगे. ऐसा है ही नहीं, शुरू से ऐसा नहीं है. I mean, I just had been reading this book, जिसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि स्केयरसिटी ऑलवेज प्रमोट्स क्रिएटिविटी. नाउ ये बड़ी अजीब सी बात लगती है. तो जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर एसी क्लासरूम्स हैं, एसी लैब्स हैं वगैरह वगैरह, वहां पर क्रिएटिविटी कैसे बढ़िया हो जाती है? और जिसके पास एक छोटा सा कंप्यूटर भी ना हो वो भी क्रिएटिव हो जाता है. तो मेरे हिसाब से जब स्केयरसिटी होती है ना, तो ज्यादा अच्छी तरीके से कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल बनता है.
1: बिल्कुल.
0: छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. वो प्यूपा होता है ना, कुकून, कुकून कह लो, वो कितनी भयंकर स्ट्रगल करने के बाद उस कुकून को तोड़कर बाहर निकलता है, तब वो तितली बनता है.
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत. यस.
0: तो अगर आप उसे उसका उसकी स्ट्रगल देख के कोकून को काट दो और उसको बाहर निकाल दो, तो वो भी दैट ब्यूटीफुल अ तितली.
1: नेवर नेवर, दैट जर्नी इज इटसेल्फ द जो लाइक यू नो.
0: तो स्ट्रगल तो होगा यार,
1: दैट्स द पार्ट. यस यस यस.
0: नहीं और चलो ठीक है, एक सेकंड, एक छोटा सा रेशियो भी देख ले. एक 10% एलिजिबिलिटी का भी एक प्रिंसिपल है विच आई एम डेवलपिंग ऑन, कि आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में जो भी अच्छी तरीके से लोग निकलते हैं वो 10% ही हैं. आप किसी भी टीचर से पूछ के देख लो, उनके क्लासरूम में सिर्फ 10% बच्चे ही होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे. पूरे स्कूल में देख लो, 10% बच्चे ही होंगे जो बहुत बढ़िया होंगे. तो किसी भी कॉर्पोरेट स्कूल में, फिर चाहे कोई भी ले लो आप, DPS या आई डोंट वांट टू नेम एनी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसमें से क्या ज्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं? उसमें से क्या ज्यादा IAS ऑफिसर्स या आर्मी पर्सनल्स या जो भी टॉप नॉच होते हैं उसमें से ज्यादा निकलते हैं क्या? और जो गरीब बच्चे हैं उनमें से नहीं निकलते हैं? तो 10% का फॉर्मूला उधर भी है, उधर भी है, हर जगह है. तो मेरे हिसाब से डजंट मैटर कि बंदा बहुत सारी प्रोविजंस के साथ है या स्केयरसिटी में जी रहा है.
1: But ultimately it is that वही scarcity है जो कहीं ना कहीं आपको fuel कर सकती है और उस extra जाने के लिए inspire कर सकती है. क्योंकि I think कई बार आपकी लड़ाई खुद से ज्यादा आपके समाज से हो जाती है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो कैलिबर है और मैं करके दिखाऊंगा. तो वो जो क्वालिटी है वो कभी कम्फर्ट के साथ आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऑफकोर्स
0: आपको स्लॉग करना पड़ेगा. एंड दैट इज द ओनली रीजन. आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका मैं वन लाइनर आंसर दे देता हूँ कि इसी वजह से मुझे एकलव्य पसंद है.
1: बिल्कुल.
0: अर्जुन तो पैम्पर्ड है.
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. उनको पूरी थ्रू आउट हिज जर्नी उनको कैरी किया गया है हाथों में. एंड खैर, ये एक और डिस्कशन है फॉर सम अदर डे, मे बी व्हेन वी आर मोर इन इनफॉर्मल सेटअप. बट यस, आई डू अग्री एंड आई ऑलवेज टेक मी, मतलब मेरा भी एक ये ही पर्सपेक्टिव रहता है लाइफ में कि आई ऑलवेज यू नो आई ऑलवेज गो एंड स्टैंड ऑन द साइड जो अंडरडॉग्स का होता है, जो यू नो जो जो परसेंटेज कम होता है वही मेरे को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज आई थिंक देयर स्ट्रगल्स आर मोर अट्रैक्टिव एंड उनके साथ खड़ा रहना मुझे ज्यादा पसंद है. ये इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी, सो आई शेयर योर थॉट, आई एको योर थॉट इन एवरी विच वे सर. सो आगे चलते हैं और इसी यू नो इन्हीं बातों के बीच अगर कोई गाना हम गाने का ब्रेक लें तो वो कौन सा गाना होगा जो इस मोड पे इस टॉपिक्स के बीच आप सुनना चाहेंगे?
0: ये तो डिफिकल्ट है यार, मतलब
1: तो पहला गाना मैं अपनी मर्जी से चलाती हूँ, फिर आप जब तक सोच लीजिए सेकंड सॉन्ग.
0: राइट, ओके, गो अहेड.
1: तो आई थिंक शिद्दत की बात हो रही है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो लक्ष्य फिल्म का गाना आ रहा है, हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है. तो सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत लक्ष्य फिल्म से, हाँ यही रास्ता है तेरा.

0: है, मतलब और पूजा के जगह ही बनाते हैं और उसमें भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं, मतलब बैठाते हैं, है ना। एक तरीके से देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये भगवान का घर है, घर है,
1: राइट,
0: है ना,
1: राइट।
0: तुम्हारी औकात कब से हो गई इतनी कि तुम भगवान को घर देने निकल पड़े? उसने तो पूरा संसार बना के तुम्हें दे दिया, तुम उसको घर देने चले हो
1: जी।
0: इतने बड़े हो गए तुम
1: जी,
0: इतनी
1: जी।
0: तो इतनी औकात हो गई तुम्हारी,
1: बिल्कुल।
0: सो कुदरत, भगवान, ये वही है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। क्या कोई किसी एक बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले हो सकता है? क्या 3 महीने में करा के दिखाओ? तो ये फालतू की बात है। तो 15 साल से 20 साल लगने हैं तो लगेंगे, तुमको 2 मिनट नूडल खाना है तो खा लो। लेकिन कोई भी अगर आपको स्किल डेवलप करनी है ना, एक्सपर्ट बनना है, लेजेंड बनना है, एंजॉय करना है उस स्किल को, तो 15 साल तो लगेंगे। नहीं लगाना चाहते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तो जो करना है करो। कुछ लोग अभी भी हैं, आगे भी होंगे और पीछे भी थे, जो 15 साल के रूल को अप्लाई करेंगे। अब आप सोच लीजिए, आप उस 15 साल में हैं या नहीं,
1: उस एक्सीलेंस के लिए ट्राइव करते हैं कि नहीं जी।
0: अरे बाबा जी, और चलो थियोरेटिकल बातें छोड़ो यार, प्रैक्टिकल कर लेते हैं ना। यू नेम वन पर्सन किसी भी फील्ड का, उठा के एक व्यक्ति बोल दो, नाम ले दो, जो लेजेंड हो अपने फील्ड का, साइंस, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट्स, बुक्स, एनीथिंग यार, कुछ भी, डॉक्टर्स, कोई भी, किसी भी फील्ड का एक लेजेंड उठा के नाम रख दो और उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल, लाइफ हिस्ट्री देख लो। उसे 15 साल से ज्यादा ही लगे हैं उस जगह पे पहुंचने में। तो आज की जनरेशन में क्या कुछ ज्यादा ही पर लगे हैं कि वो 2 महीने में बन जाएगी? 15 साल तो लगेंगे बट्टा बेटा, लगेंगे। अब तुम पत्थर से कितना भी सर फोड़ लो, 15 तो लगेंगे। सो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सो वी कैन नॉट डिनाई नेचर। भोशन की इस बात से मुझे बिल्कुल परफेक्ट, मतलब आई एग्री विद दैट एंड आई एम ऑन माय जर्नी। मैं जिस भी उम्र पर हूं, मेरे को 6 साल हो गए हैं काम करते हुए। आई फुल्ली एग्री कि अभी 14 साल मुझे और काम करना है। Then I'll become a legend. I'm sure about that. तो मैं लगा हूं। अब कोई कहेगा भाई यार तब तक तुम जिंदा भी रहोगे क्या? आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे उसकी परवाह नहीं है।
1: राइट,
0: मैं अपने
1: as long as, जी, मैं सफर में हूँ,
0: मैं चल रहा हूँ, कर रहा हूँ। इस वजह से बोइशन की बात मैंने वहां पर मेंशन की, एंड नई जनरेशन को इस बात को समझना चाहिए।
1: जी, एक और बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा और मैं इसको बिल्कुल 100% मानती हूँ और मैं बहुत अपने आप को यू नो आउट ऑफ द प्लेस फील करती हूँ ये व्यू रखने के लिए, क्योंकि कोई इससे मुखातिब नहीं होता, कोई इत्तेफाक नहीं रखता, बट आई अग्री, बट बिकॉज हमारे लिसनर्स हैं और बिकॉज हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं सर, तो जो किलिंग इम्पैक्ट ऑफ कमर्शियल एंगल है जिसके बारे में बुक में लिखा गया है, जो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के साथ आप कैसे खड़े होते हैं कि किसी भी चीज में अगर कमर्शियल एंगल जोड़ देते हैं तो एलिजिबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है? इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं आपके विजन में, आपके थॉट प्रोसेस में? ये किस तरह से पैशन को, उसकी प्योरिटी को, उसकी एलिजिबिलिटी को किल कर देता है कमर्शियल एंगल, ये बताएं।
0: ओके, वन एग्जांपल दूंगा मैं, जो कि मेरी जो पहली वाली बुक, मतलब वैसे तो देखा जाए एकलव्य मेरी पहली बुक है, माय डियर एमआर तो उसके बाद आई थी, लेकिन माय डियर एमआर में मैंने इस बात का, इस क्वेश्चन का जवाब दिया है। धनुषा, बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने, जिस वक्त मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा था और उस जर्नी में था, मैंने देखे थे जब उनका इंटरव्यूज होते थे और बात होती थी, तो उनका फोकस हमेशा रहता था कमर्शियल एंगल। आपने कमर्शियल वाली बात की ना, तो इसीलिए मैं कोई नंबर नहीं चूज करूंगा, कुछ उसको दूसरा टर्म नहीं बोलूंगा, कमर्शियल एंगल पर उनका फोकस होता था
1: सिर्फ।
0: हाँ, सिर्फ कि साहब पूरे इंटरव्यू के दौरान अच्छा कैंडिडेट होता था, सच में उसने अच्छा काम किया होता था, और इंटरव्यू के आखिरी में आते आते वो इस बात पर आ जाते थे मैथमेटिक्स को लेकर कि साहब मेरे को इतना पैकेज इस प्रेजेंट कंपनी में मिलता है,

0: और मुझे 35%, 40%, 45% मतलब बहुत ज्यादा एग्जाजरेट करके वो बोल देते थे 35%, 45% की ग्रोथ चाहिए मेरे पैकेज में। एंड देन उनके अंदर इतनी ऑडेसिटी भी होती थी बोलने के लिए कि देन ओनली आई विल ज्वाइन अदरवाइज आई वोंट। और मेरे को उसी वक्त लगता था हाय राम ये इतना अच्छा कैंडिडेट है बट ही इज किल्ड इज फिनिश्ड। तो जैसे ही मतलब मैंने मन मना लिया था, मेरे बगल में बैठा हुआ एचआर मैनेजर ने भी मन मना लिया था कि इस प्रैक्टिकल इस बंदे को हम ले लेंगे, अच्छा पैकेज देंगे, इसकी ग्रोथ होगी, विल मेक अ मैनेजर आउट ऑफ हिम, सब करेंगे। लेकिन उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, अपने पैर कुल्हाड़ी पे मारे। उसने कमर्शियल एंगल लाकर अपनी एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका ये पहला आंसर है। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। और फिर पूरे 35 साल के जर्नी में मैंने देखा बहुत बहुत सारे बच्चों ने ये काम किए और वो मजेदार वाली बात है 4-5 साल के बाद दे आर नोवेयर, वो सचमुच खत्म हो गए। वो किसी छोटी छोटी कंपनियों में मतलब सैलवेजिंग कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से जिंदगी कट जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्मार्ट बनकर कमर्शियल एंगल को लाए। जिन्होंने कमर्शियल एंगल को नहीं लिया वो मेहनत करना चाहते थे, वो ग्रो करना चाहते थे, बड़े बनना चाहते थे, तो वो चुपचाप लगे रहे, जो मिला कोई बात नहीं। एंड दे रीच्ड द लेवल्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर और क्या क्या शानदार पोजीशंस पर हैं वो आज। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल तो भला मैं और क्या देखूं।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: कमर्शियल एंगल का दूसरी बात बताता हूं आपको। बहुत बहुत सारे यहीं पर हमारे मतलब इसी जॉब में जहां पर मैं अभी हूं, जो मैं कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए। ऑफ कोर्स कहने की जरूरत ही नहीं है कि मैं किसी का नाम तो ले ही नहीं सकता। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए जिनको जिनके प्रोग्राम बने और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे प्रोग्राम के दौरान ये बताया कि कभी तो बिल्कुल क्लियर बता दिया, कभी तो छुपा के बता दिया दैट आई एम बिग, मैं बहुत बड़ा हूं और बहुत बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स तो मुझे पैसा देते हैं परफॉर्म करने के लिए और मुझे इनवाइट करते हैं और मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया। जबकि हमेशा मैं बोलता रहा कि एक कलाकार, और बहुत सीरियसली मैं मानता हूं कि एक कलाकार को अम्बल होना बहुत जरूरी है, बहुत सॉफ्ट होना जरूरी है, मतलब सर झुका के चलने की जरूरत बहुत ज्यादा। लेकिन वो बहुत ज्यादा सर उठा के चल रहे थे। ठीक है, हमने भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, वंस इन अ वाइल मून ऐसा हो जाता, प्रोग्राम बना हो गया। फिर इसके बाद पूरी की पूरी जो भी हमारे ऑडियंस है उनमें से कभी कोई आवाज नहीं आई कि उनको हम वापस सुनना चाहते हैं, मतलब फिनिश्ड खत्म। बाकी बहुत बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जो लगातार राइज करते ही जा रहे हैं एंड दे आर यू नो सो लवेबल, आपस में मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और जिन्होंने जरा सी भी ऐसी कोई बात की दे आर गॉन, कोई कोई सोचता भी नहीं कैसा था। सो दिस इज येट अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमर्शलाइजिंग और एटलीस्ट ट्राइंग टू टेल कि जी मेरे को तो लोग बुलाते हैं और पैसा देते हैं, खत्म हो जाता है। सो इस वजह से मैंने लिखा। और फिर हाँ वो थ्री इडियट्स वाली मूवी थी ना जिसमें आमिर खान ने कहा कि चेज द एक्सेलेंस है ना,
1: कामयाबी झक मार के आएगी, काबिल बनो,
0: पहले काबिल बनो यार, पहले एलिजिबल बनो, पहले एकलव्य बनो, पैसा तो पीछे पीछे इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे।
1: एग्जैक्टली।
0: सो आई एम ऑन दैट जर्नी और आई सिंसियरली बिलीव इन दैट।
1: बहुत ही खूबसूरत सर। आगे चलते हैं, ग्रैंडपा एलिजिबल के बारे में भी आपने बात किया है जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल है इस बुक का, जहाँ पे लाइफ बिगिंस एट 60। आपने कर्नल सैंडर्स जो है KFC के ओनर एंड फौजा सिंह जैसे लोगों के एग्जाम्पल्स दिए हैं और हमारी सोसाइटी में जहाँ पे हम 60 पर आते आते, अब तो नहीं बट आज से कुछ समय पहले भी 60 तक आते आते हम बिल्कुल अपने आप को ऐसे सल्किंग मोड में ले आते थे, तो इस स्पेस में आपने लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एल्डर्स फॉर ग्रैंडपा जनरेशन की बात की है, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है सर, अगर उसके बारे में बताएं, और वो किस तरह से जान फूंक सकता है किसी somebody who's aged, who's reached 60 और फिर भी उनकी जर्नी वहां से शुरू हो।
0: देखो तनिषा, बहुत सिंपल सी बात है यार, मेरा काफी समय से ये मानना है कि हमारे दिल का एक कोना हमेशा बच्चा रहता है, उस वो मरता कभी नहीं है, वो सो जाता है बस। तो उसको जगाइए, उसके साथ खेलिए, उसको खेलने दीजिए। और बच्चे की एक इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है कि उसको सीखना होता है, वो हर समय सीखने के मोड में रहता है। एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं बच्चे सबसे बड़े,
1: है ना?
0: आग में भी हाथ डाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में भी हाथ डाल दें, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो भैया उस बच्चे को क्यों सुला दिया? आप इतने बड़े कब से हो गए कि आपने इस दुनिया की सारी चीजें सीख ली? देन साइंस बोलती है, और मैं इस बात को रिपीट करता रहता हूं कि जब तक कोई भी व्यक्ति सीखता है तब तक वो बूढ़ा नहीं होता।
1: Absolutely.
0: चाहे आप लैंग्वेज सीखे, साइंस बोल रही है यार, मतलब ये तो बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं कि आप म्यूजिक सीखे, लैंग्वेज सीखे, तो आपके ब्रेन सेल्स की जो इलास्टिसिटी है वो
1: न्यूरोप्लास्टिसिटी
0: वो मेंटेन रहती है।
1: Absolutely.
0: है ना, आपके मोटर कंट्रोल्स हुए, वो सब कुछ अच्छे रहते हैं जो बुढ़ापे में गड़बड़ होने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे तो ऐसा लगता है, और फिर बोलते हैं ना ये पुराने जमाने से बोला जा रहा है कि बच्चा बूढ़ा एक समान।
1: यस यस।
0: तो भाई सिर्फ बोलने में ही है या इसको प्रैक्टिकल भी लेकर आए? अगर बूढ़े हो गए हैं तो दोबारा बच्चे बन जाइए ना, दोबारा से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है, कौन आपको आके टोकने वाला? क्या बुढ़ाऊ अब पढ़ने चला है तू, दिमाग खराब है, मरने के दिन हो गए, कब्र में लटके हुए टांग, ये इनबोर्न। अरे
1: जी,
0: यार मतलब आई एम नो वे वाइज टू एग्जैजरेट ऑन दिस एंड आई एम नॉट गेटिंग मैग्नानिमस हियर, लेकिन इस उम्र में आके, 58 साल की उम्र में आके मैंने मास्टर्स किया ना, एंड नाउ आई एम डूइंग माय PhD। तो मेरे क्लासमेट्स BHU वाले जो है वो कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बड़ा मरने वाला है और अभी तू PhD करेगा, फायदा क्या? क्या फायदा हो जाएगा जब तक तू PhD करके खत्म करेगा तो कहीं पढ़ाने पुढ़ने की एलिजिबिलिटी तेरी खत्म ही हो चुकी होगी। मैंने कहा मैं पढ़ाने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ,
1: मैं
0: सिर्फ अपने आप को जवान रखना है मुझे।
1: जी,
0: I'm 58 जी, and I'm going to live yet another 58 years. So, मैं तो अभी बच्चा हो गया हूँ, I'm a kid.
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो
1: इसलिए और फिर से वही बात, हाँ? जी, commercial angle आते ही उसका जो purity है, जो उसकी जो journey है वो खत्म हो जाती है। जी,
0: अब
1: जी, जी.
0: आगे बढ़ते हुए हमारे ही ग्रुप में देखिए ना, लोग हैं, लोग हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूं तो आई एम सो प्राउड ऑफ आलोक जी, आई एम सो प्राउड ऑफ आरती, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ।
1: एब्सोल्युटली।
0: कि हम इस उम्र में आकर एक नया वेंचर, अरे यार कितना मजा आ रहा है। आलोक जी प्रोग्राम बनाते बनाते रात के 2 बज जाते हैं उनको,
1: बताएं
0: कितनी मेहनत कर रहे हैं वो।
1: यस,
0: तो कम ऑन एट दिस एज। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो लाइव एग्जाम्पल्स है एकलव्य के।
1: बिल्कुल,
0: इससे ज्यादा अच्छा और क्या?
1: टीम में इतने सारे लोग हैं। जी जी,
0: तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सीरियसली एकलव्य लिखना मेरे लिए वर्थ हो गया,
1: मतलब जीवंत हो गए कैरेक्टर।
0: हाँ, जीवंत हो गए, सामने है मेरे, जो चैप्टर मैंने लिखा ग्रैंडपा वाला वो सामने है।
1: जी जी जी, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करा उसमें, लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी के साथ साथ।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: ब्यूटीफुल सर। चलिए सुनते हैं इन्हीं प्यारी बातों के बीच एक और खूबसूरत सा गीत आपकी फरमाइश पे सब।

0: अब हम डिकोडिंग द ईगो राइट के बारे में अगर बात करें सर, इस बुक में आपने लिखा है कि कई बार ईगो राइट पे होते हैं हम, जब हम लाइफ में कुछ चुनते हैं, कोई स्किल चुनते हैं, कोई रास्ता चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ईगो से ड्रिवन हो जाते हैं, या तो पीयर प्रेशर होता है या वो हमारा खुद का इनर ईगो होता है। तो एक आम इंसान ये बात कैसे पहचाने कि उसकी उसका रियल पैशन क्या है, मतलब उसकी रियल जर्नी क्या है, सही समय पे पहचाने और सिर्फ ईगो ट्रिप पे ना रहे, क्योंकि ये पूरा आगे का रास्ता मैप गलत हो जाता है, पूरा आपका जीपीएस एकदम हिल सकता है एक ईगो ट्रिप पे गलत राइड ले लेने से। तो वो कैसे डील करे कोई?
1: बाप रे, ये जो चैप्टर है ना, ये सचमुच सबसे डिफिकल्ट था, है। और ये जो मेथड है या इस चीज को रियलाइज करना कि हम ईगो ट्रिप पर ना रहे, या इस बात को भी रिकॉग्नाइज करना कि हम ईगो ट्रिप पर हैं, आइडेंटिफाई करना,
0: ये रिकॉग्नाइज करना
1: कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है। ईगो है ना, ईगो ईगो जो है वो हम लोगों को बोलती है कि मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, आई नो द बेस्ट अबाउट यू, और जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वही तुम्हारे लिए अच्छा है, किसी और की बात मत सुनना। तो हम उसको अपना अच्छा दोस्त, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम है, लेकिन फिर भी मेरी इस बात को सुनकर या मेरी किताब को पढ़कर आपको ये बात परेशान करती है कि व्हाट इज ईगो ट्रिप और ईगो ट्रिप से हम कैसे दूर हो जाएं, कैसे आइडेंटिफाई करें वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कर लिया तो फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपसे ज्यादा अच्छा लेजेंड आपके फील्ड में कोई होगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल काम है अपनी ईगो को पहचानना। सो होता क्या है कि मैं पीछे एक एग्जांपल हुआ था, आज से 2 साल पहले, एक भद्र महिला थी, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि मुझे गाना गाना है। ओके, तो कभी हमने एक दूसरे से मिलने का तो मतलब ही नहीं होता। गाने आए उनके ऑडिशन के लिए और बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट करने लायक नहीं थे। वो बिल्कुल भी म्यूजिक के साथ नहीं चल रहे थे, बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ था।
0: जी।
1: तो मैंने उनको बहुत ज्यादा पोलाइटली कहा, मैंने कहा मैम ऐसा है कि आप एक बार और रिकॉर्ड करके भेजिए।
0: जी,
1: ये 2 सॉन्ग जो हैं वो डायरेक्टर्स जो हैं वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। हो गया,
0: एब्सोल्युटली।
1: उन्होंने दोबारा किए, दोबारा भी वही सेम मिस्टेक। तो मैंने उनसे कहा मैम आई मोस्ट अर्नेस्टली एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट यू कि जब आप गाने रिकॉर्ड कर लेते हैं तो क्या आप नहीं सुनते हैं उनको? आप तो सिंगर हैं, कलाकार है, तो कला
0: करेक्ट,
1: इस कला की जो बारीकियां हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो तो आपको पता होंगे ही ना,
0: राइट?
1: क्योंकि जब आप गा रहे हैं तो आप गाने सुनते भी होंगे।
0: हुँ.
1: और कई सालों से सुन रहे होंगे, बहुत लाखों करोड़ सुन चुके होंगे। तो क्या आपके गायन में आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। देखो अब समझो, यहां पर आ गया ईगो राइडिंग,
0: लाइव एग्जांपल। यस,
1: लाइव। तो मैंने बहुत बहुत बहुत ज्यादा पोलाइटली, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैं किसी को प्रमोट नहीं कर सकता तो किसी को रिजेक्ट करने का भी हक मुझ में नहीं है।
0: तो
1: मैंने बहुत ज्यादा पोलाइटली कहा कि मैम एक्चुअली आप ऐसा करो, 2 गाने और रिकॉर्ड करो, है ना, और एक काम करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सब लोगों को एक बार सुनाओ कि मैं ये ऑडिशन के लिए भेज रही हूं, क्या ये गाने ठीक हैं? और मुझे सच बताना प्लीज, ये मत सोचना कि मेरा दिल टूटेगा। तो नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। फिर तो साहब वो बहुत नाराज हो गई और उन्होंने कहा मैं आगे कभी गाना ही नहीं गाऊंगी, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया और ऐसा है गया वैसा हो गया। मैं क्या कहता उनको, लेकिन ये ईगो राइडिंग का एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जांपल था कि उनके फ्रेंड्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी उन्हें नहीं बताया कि आप सही नहीं गा रही हो, और वो अपने ईगो के घोड़े पर चढ़ती तोड़ती रही।
0: डिजास्ट्रस।
1: तो ईगो राइड की बात मैं वहां कह रहा हूं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा, प्लीज अगर आप एक अच्छे कलाकार बनना चाहते हो तो मृदुल बनिए, अपनी ईगो को किनारे रख दीजिए, जमीन पर बैठिए और अपने को पहचानिए। देखिए हो सकता है आप एक अच्छे गायक ना हो, हो सकता है आप एक अच्छे लेखक हो, हो सकता है एक आप अच्छे म्यूजिशियन हो। अब दोस्तों मैं यहां ओपन बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, बिना डरे बोल रहा हूं कि मैं समीर गोयल एक गायक नहीं है, नहीं है तो नहीं है, आई एम नॉट स्केयर्ड,
0: राइट,
1: बट मुझे पता है दैट कि मुझे ये चीज मालूम है कि मैं एक अच्छा रेडियो दोस्त हूं। मैं उस स्किल को बढ़ा रहा हूं, मैं उस स्किल सीख रहा हूं और आप सब लोगों की मदद से मैं आगे बढ़ रहा हूं, बट आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, आई एम नॉट अ सिंगर, सो लेट मी एक्सेप्ट दिस।
0: राइट, ब्यूटिफुली आंसर्ड सर, एंड वेरी प्रैक्टिकली आंसर्ड। बहुत मजा आया ये जवाब सुन के और बहुत सारे अंदर ऐसे रिलेटेबल चीजें चल रही थी, तो कभी और डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, एक और मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपसे। आपने जिस तरह से, क्योंकि हमने हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में भी ये बहुत सारा डिस्कशन किया था कि कैसे आपने 30 years एक बहुत इलस्ट्रियस कॉर्पोरेट करियर आपका रहा, उसके बाद आप इस जर्नी में आए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, रेडियो पर्सन एंड एवरीथिंग, तो ये जो रास्ता आपने चुना, क्या आपने अपनी लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी इस रास्ते में, इस जर्नी में टेस्ट करी, और क्या आपको भी वो डिसएडवांटेजेस फील हुए जो एक लव्य ने शायद कभी महसूस किए होंगे आप अपनी इस जर्नी में, बिकॉज नेचुरली इट वाज अ शिफ्ट, तो वो किस तरह से अनफोल्ड हुई आपके लिए?
1: जिस वक्त मैं कॉर्पोरेट में चल रहा था तो मुझे इस रास्ते पर आना चाहिए के लिए बहुत सारे हिंट मिलते रहते थे, लेकिन मैंने उन पर कभी गौर नहीं किया, बहुत ज्यादा फोकस करके उनके बारे में सोचा नहीं कि ये शायद मेरे लिए एक स्किल हो सकती है जिसको मैं डेवलप करूं। हिंट बोल दे तो मीटिंग्स के दौरान सबऑर्डिनेट्स या कभी बॉसेस या कभी ट्रेनिंग मैनेजर या कभी डॉक्टर्स, या मतलब बहुत सारे लोग बोलते रहते थे कि ओके ओके, है ना, कम्युनिकेशन इज गुड, यू स्पीक गुड, एंड आपने ये बात समझाई तो हमें समझ में आ गई समथिंग समथिंग, और ठीक है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और वक्त गुजरता गया, कुछ और बुक्स आ गई, बुक्स पढ़ता रहा, तो धीरे धीरे वो एक बीज जो गिर गया था दिमाग में वो बड़ा होने लगा कि ये जो कॉर्पोरेट करियर वाला मामला है ये हो गया, बहुत हो गया, नाउ आई शुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन माई स्किल्स एंड दैट इज वॉइस ओवर, है ना, उसके ऊपर जाना चाहिए। और फिर बस अचानक से क्या हुआ कि ये वॉइस ओवर का जो फील्ड था इसके बारे में कुछ नहीं पता था, नथिंग, ऑफ कोर्स एग्जिस्ट तो किसी जमाने से करता था,
0: कर रहा है, राइट,
1: लेकिन कभी गौर ही नहीं किया था। वो अचानक से सामने आ गया तो लगा कि यार चलो फिर इसको डेवलप करके देखें, रिकॉर्डिंग करके देखें, रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, बहुत ही ज्यादा रॉ फोन के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, करते गए आगे बढ़ते गए। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब मैं खुद एकलव्य बन गया कि यार मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूं लेकिन ना तो कोई सुन रहा है और ना कोई बोल रहा है, ना कोई कमेंट कर रहा है, जाहिर से बात है यूट्यूब, मतलब यही समझ में आया कि यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दो। मुझे अच्छी तरह से याद है 100 लोगों का सब्सक्राइब करवाने के लिए ऐसी इतनी जान लगानी पड़ी मुझे, लोगों का फोन छीन छीन कर मैं उसके ऊपर सब्सक्राइब करता था कि अबे 100 हो जाए किसी तरीके से।
0: बिल्कुल
1: फिर ये लगा कि नहीं ये तरीका तो गलत है, मैं उनका फोन छीन कर
0: क्यों करना पड़ रहा है।
1: हाँ, मैंने सब्सक्राइब कर भी दिया आपका फोन छीन के, और आपने सिर्फ मेरी इज्जत रखने के लिए, अरे यार इसे बुरा लगेगा बुढ़े को, कर लो यार, लेकिन सुनोगे कभी नहीं आप मुझे, सुनोगे कभी नहीं, तो फिर फायदा क्या।
0: जी
1: तो आई ट्राई टू गेट इन टच विद फ्यू वॉइस ओवर आर्टिस्ट,
0: राइट,
1: तो मतलब मैं कुछ द्रोणाचार्य ढूंढने निकला, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या चीज है, क्या है क्या है, थोड़ा आप मुझे समझाएंगे क्या, थोड़ा बताएंगे क्या, है ना, और उन्होंने बिल्कुल ठीक द्रोणाचार्य की तरह मुझे रिजेक्ट किया।
0: ओ
1: बिल्कुल, अरे यार पता नहीं, ये रियलाइजेशन है कि ये इस संसार में ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते लोग,
0: नहीं करते सर, नहीं करते, और वो बढ़ता जा रहा है दुख ये। हाँ। है कि वो एक चीज बढ़ती जा रही है। जी जी,
1: एक दूसरे को सपोर्ट करने में उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी चीज छीन के ले जाएगा।
0: हाँ।
1: तो मतलब बहुत ही, जैसे उन्होंने कहा कि अरे साहब ऐसा है, आवाज तो आपकी ठीक ही है लेकिन उर्दू सीख लीजिए आप, वक्त लगता है इसमें, उर्दू सीखिए आप। ठीक है जी। मैंने कहा कैसे करते हैं सर, क्या होता है, मैं क्या इंस्ट्रूमेंट्स कैसे लूं? कहता अरे यार बहुत महंगे महंगे होते हैं, मतलब दे ट्राई टू डिस्करेज मी, है ना, कि माइक लोगे, ये करोगे, वो करोगे, 50,000 लाख रुपए का खर्चा है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत ज्यादा डिस्करेज हुआ, डिस्करेजमेंट हुआ। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। फिर इसके बाद दिमाग में खटका बैठ गया कि ऐसी कम तैसी अब तो करना है, चाहे फोन से ही करना है, फोन पे ही रिकॉर्डिंग करूंगा। फिर यूट्यूब पर देख देख के कि कैसे इसको क्लीन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6-7 years इस मुकाम तक आया।
0: जी जी, बताइए।
1: बात ये एलिजिबिलिटी की हो रही है, एकलव्य की हो रही है। सो तब मुझे लगा कि यार मैंने अगर एकलव्य लिखी है तो अगर कोई सीखना
0: चाहिए या जी,
1: कोई सीखना चाहे तो मैं सिखाऊंगा उसे, जरूर सिखाऊंगा। जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ कोर्स
0: आप द्रोणाचार्य नहीं बने, आपने एकलव्य की जर्नी से ये सीखा कि द्रोणाचार्य नहीं बनना है,
1: बस द्रोणाचार्य नहीं बनना है। जो भी सीखना चाहे तो मैं उसको जरूर सिखाऊंगा।
0: बिल्कुल, और मुझे जिस तरह से आपने अपने अम्ब्रेला में लिया तो मैं तो बिल्कुल एकलव्य ही फील करती हूँ, और थैंक गॉड कि आप द्रोणाचार्य नहीं थे और आपने कितनी खूबसूरती से इस कैरेक्टर को जिया। और मेरे लिए इसीलिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन था कि एक्चुअली आपकी भी जर्नी में, चाहे एकलव्य कोई भी हो, किसी भी जनरेशन में हो, डिसएडवांटेजेस तो आज भी वही हैं। अगर आप निकलते हैं कुछ अपना प्योरिटी ऑफ टैलेंट लेके तो इसी तरह की जर्नी होती है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आप उस तरह से नहीं है, और आपने मेरी एकलव्य की जर्नी, जो मैं एज एन एकलव्य निकली थी, उसको बहुत आसान कर दिया। तो बहुत बहुत बहुत शुक्रिया सर।
1: नो, डोंट वरी अबाउट दैट। मोरओवर आई शुड बी थैंकफुल टू यू, क्योंकि देखो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कभी भी किसी भी टीचर को ना घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट उससे आकर सीख रहा है ना, तो एक्चुअली टीचर शुड बी ओब्लाइज्ड उसको अपना अपने ज्ञान को आगे परकुलेट डाउन करने का उसे मौका मिल रहा है। नहीं तो रहो अपने कुकून में, बने रहो टीचर, कौन मतलब हु द हेल आर यू देन। तो अगर मैंने तुम्हें कुछ भी सिखाया ना, तो ऐसा देखा जाए, अगर मैं इसको दूसरे एंगल से कहूँ ना, मेरी लीगेसी आगे बढ़ी है। नाउ आई कैन 20-25 साल बाद, या मे बी 10 साल बाद, या मे बी 5 साल बाद, आई कैन एक्चुअली सी। Now listen to this. Listen to this very, very carefully. I can see myself in you.
0: This is so. Oh God.
1: It's okay. It's okay. 10 साल के बाद मैं अपने आप की प्रतिबिंब, अपने की छाया, अपने अपने आप को तुम्हारे अंदर देख पाऊंगा कि all right, हाँ, कहीं तुम्हारी आवाज गूंजती सुनाई देगी, तुम्हें लगेगा okay, yes.
0: जो आपने कहा वो मेरे शायद जहन में हमेशा रहेगा, एंड इट रियली विल फ्यूल मी कि आई हैव टू गेट बेटर एंड आई हैव टू बिकम अ प्रतिबिंब जिस पे आपको गर्व हो और जिस पे आप दुनिया को बता सके कि हाँ ये मेरे अंडर थी कभी, इसको मैंने ट्रेन किया है। जी जी, चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत इसी प्यारी बात के बीच में, रूबरू रोशनी फ्रॉम द फिल्म रंग दे बसंती।

0: Beautiful song, beautiful song.
1: Beautiful song indeed, and a beautiful film. इस फिल्म में भी खैर यूटोपियन सोसाइटी की बात कहीं ना कहीं हुई है, बट वो पाना, उस तक पहुंचना अब तो बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम हो गया सर. आपने बुक में भी एक यूटोपियन सोसाइटी की बात की है, जहां पे जो विजन है वो क्लियर है, जलन नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उनकी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए. तो क्या आपको लगता है कि लॉ ऑफ एलिजिबिलिटी के जरिए हम एक ऐसी टेंशन फ्री दुनिया बना सकते हैं, या ये सिर्फ एक बहुत डिस्टेंट ड्रीम है जो सिर्फ हमारे ख्वाहिशों में है और कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाएगा?
0: परमेश्वर, सच ये है कि है तो ये डिस्टेंट ड्रीम, दैट इज द फैक्ट. लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आएगा, इसका मुझे भरोसा है, क्योंकि उसके आने के इशारे दिख रहे हैं मुझे. शायद लोगों को ना दिख पा रहे हो. पहली बात तो यूटोपियन सोसाइटी है क्या लोग

0: को ये समझ में आने में ही परेशानी हो जाएगी, लेकिन उसके इशारे आ रहे हैं ये भी जानने में उनको बहुत कि यार ये पागल है आदमी, क्या ये कैसी कैसी बातें करता है, तो
1: ये विजन कैसे देख
0: सकता है, मतलब ये क्या यूट्यूबियन सोसाइटी है ना, उसके इशारे और डिस्टेंट विजन और ये इनबोर्न। बट द पॉइंट इज, देखो इसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल पर बोलूंगा दोस्तों, आप लोग सब लोग इस बात, आप लोग सब लोग तनुषा को जानते हो, आप लोग सब लोग मुझे जानते हो, ओके। नाउ तनुषा इज डेवलपिंग हर ओन स्किल्स, उसका अपना पोटेंशियल है, उसका अपना क्लिशे है, उसका अपना निशमार मतलब क्लाइंटेल है, द वे शी टॉक्स, द वे शी सेलेक्ट्स पीपल एंड वगैरह वगैरह, मेरा अपना है ना, तो मेरा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। जिस वक्त मैं तनुषा के साथ कॉम्पीट करना बंद कर दूंगा, SN रेडियो विल बिकम अ यूटोपियन सोसाइटी। क्योंकि देखिए समझिए इस बात को, बातें इधर की उधर की पहले मैं बनाता था, मैंने तनुषा को दे दिया कि लो तनुषा तुम बनाओ, क्योंकि तनुषा को अपनी स्किल डेवलप करनी है, तो वो कब करेगी, जब उसको मौका मिलेगा तभी तो। अगर मैं उसे मौका ही ना दूं, नहीं नहीं नहीं, बातें इधर की तो मेरा प्रोग्राम है, आज के कलाकार मेरा है, प्रेरणादायक गीते मेरा है, दिव्य दर्शन मेरा है, सब कुछ मेरा ही है, जिंदगी के रंग गीतों का रंग मेरा है, अरे सब कुछ मेरा ही है, तो तनुषा डेवलप कब करेगी। तो अगर तनुषा डेवलप होगी तो उसमें मेरा क्या नुकसान है दोस्तों, मेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं ना, रेडियो ऐसे नहीं डेवलप हो रहा है,
1: डेवलप हो रहा है, राइट।
0: And Tanusha is not my competitor. We got to understand this. Tanusha can never be my competitor.
1: Correct.
0: Anna, she is my partner. She is my associate. She is my, you know, brother in arms, jo kehte hain. Wo bhala mujhe kaise kahun? So, jis din hum sab ne aapas mein ek dusre se compete karna band kiya, ye society is utopian ho jayegi. To, jab maine kaha na, ishaare dikh rahe hain.
1: जी,
0: तो यही इशारे दिख रहे हैं, कुछ चोजन वंस, आलोक, आरती, तनुषा, नितिन, इंद्राणी, पासु, यही लोग हैं जो आपस में कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट कॉम्पीटिंग,
1: राइट, दे आर ग्रोइंग टुगेदर, यस, एंड हेल्पिंग ईच अदर ग्रो, यस,
0: ये यूट्यूबियन सोसाइटी ही तो बन रही है, और क्या हो रहा है,
1: ब्यूटिफुल सर, यस यस, एंड आई एम सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट, यस,
0: ग्रेट,
1: बहुत ही सुंदर। आई होप हम वो सोसाइटी डेवलप कर सकें, सिर्फ SN रेडियो पर नहीं और बहुत सारी जगह,
0: क्योंकि
1: हमें बहुत जरूरत है जी जी इस डिस्टोपिया से निकलने की। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके, और बहुत बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने मुझे अपना समय दिया और आपने जी मुझे मौका दिया कि मैं आपको इंटरव्यू और पॉडकास्ट कर सकूं आपके साथ।
0: थैंक यू सो मच, आई हैव बीन वेटिंग for some eklavya to come and talk to me.
1: Yeah, I'm so glad. I think divine intervention tha ye.
0: Yo.
1: Ji ji.
0: Chalo.
1: Thank you.
0: Thank you so much. Thank you so much for your time.
1: Thank you, sir. Thank you.

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: कुछ बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैंने वक्त को दे रखी है।

बस यही दो मसले जिंदगी भर न हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

आइए दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसी एक शख्सियत के बारे में जिनका देश प्रेम किस तरह से परवान चढ़ा और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर एक मिसाल बन गया। उस दिन आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो नौजवान एक किताब को लफ्ज दर लफ्ज पढ़े जा रहा था और कभी आसमान की ओर तो कभी जमीन की ओर मुंह किए आंसू बहा रहा था। लिखने वाले इतालवी विचारक ग्यूसेप मैजनी ने क्या खूब लिखा था, हर लफ्ज धारदार। आपका देश आपका मंदिर होना चाहिए, शिखर पर ईश्वर और आधार में एक समान लोग। पर आपका देश तो गुलामी से लहू लुहान है, हम अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें तो एक कदम रखते हुए भी देश का आभार मानना चाहिए, पर क्या हम ऐसा मानते हैं? वो युवा सोच सोच कर बिलख रहा था कि कोई इतने साफ तरीके से राष्ट्र व राष्ट्र प्रेम के बारे में कैसे बता रहा है। मैजनी मनुष्य के कर्तव्य बता रहे थे कि आपका देश क्या है, देश आपसे क्या चाहता है। क्या केवल आप ही देश से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हैं और देश आपके प्यार के लिए हर पल तरसता रहता है? देश के बिना आपके पास न तो कोई नाम है, न निशान है, न आवाज है, न ही कोई हक। पर ऐसे देश को आपने कितना प्यार दिया। मैजनी यहां तक लिख देते हैं कि ईश्वर ने आपको मानवता की सेवा के लिए एक देश दिया है। अपने देश में किसी भी तरह की गुलामी और असमानता से मुकाबले के लिए आपका जन्म हुआ है। उस नौजवान की रुलाई रोके नहीं रुक रही थी। मैजनी बताए चले जा रहे थे कि वोट, शिक्षा, कर्म, ये सब किसी देश के मुख्य स्तंभ हैं। जब तक आपके हाथ इन्हें मजबूती से खड़ा ना कर लें, आराम मत कीजिए। पर तब अपना देश भारत तो गुलाम था, वोट का सवाल पैदा नहीं होता और शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। नौजवान ने मैजनी के लिखे हुए को बार बार पढ़ा और हर बार देश और मानवता के लिए आंखें बहती रहीं। उन्होंने दूर देश में हुए और समय के साथ बीत गए विचारक मैजनी को ही अपना गुरु मान लिया। फैसला कर लिया कि अपना तन मन धन देश की सेवा के लिए समर्पित कर देना है। धिक्कार है अभी तक जो जीवन बीता वो अपने देश के काम ही नहीं आया। तब वो 3 रुपए की छात्रवृत्ति और शिक्षक पिता द्वारा भेजे गए 8 रुपए से काम चलाते थे। अक्सर भूखे रह जाते थे पर देश और समाज सेवा के बारे में लगातार सोचते रहते थे। सबसे पहले दुनिया को थामना होगा, उससे पहले देश को संभालना होगा और उसके लिए अपने समाज की चिंता करनी पड़ेगी और उससे भी पहले अपने परिवार की रक्षा करनी होगी। संयोग से उन्हीं दिनों वो आर्य समाज से जुड़ गए और उससे अपने राष्ट्रवाद का मेल बैठाया। अंधविश्वास से दूर, वैज्ञानिकता और ज्ञान से भरपूर उनके राष्ट्रवाद ने उन्हें एक प्रभावी वक्ता बना दिया और लोग उन्हें लाजपत राय के नाम से जानने लगे। उनके सामने घर में ही चुनौतियां कम नहीं थी। दादा जैन थे, पिता एक ऐसे हिंदू जो किसी भी मुसलमान से कम नहीं थे और मां सिख विधि विधान में जी रही थीं। पिता तो तभी मुस्लिम हो जाते जब लाजपत राय 2 साल के थे। तब ऐन मस्जिद की सीढ़ियों पर मां ने पिता को घेर लिया था कि ऊपर वाले की मर्जी समझो, उसने जिस धर्म में पैदा किया उसी में रहो, बच्चों की सोचो, मैं तो धर्म ना बदलूंगी। पिता तब भी दृढ़ थे पर शिशु लाजपत राय इतनी जोर से रोए कि तमाशा खड़ा हो गया। पिता नजरें झुकाए अपना परिवार लिए सीढ़ियां उतर आए। बहरहाल आर्य समाज ने लाजपत राय को मजबूत किया और उन्होंने पिता को भी समझाया कि कौन कहता है कि मूर्ति पूजा कीजिए, सगुण न सही निर्गुण रूप में भी ईश्वर को मानिए और वेद और सनातन को समझिए, उसके आडंबरों के अंदर मूल तत्व को जानिए। पिता को समझ आई कि बेटे की राह सही है, महत्व धर्म का उतना नहीं जितना देश और उसकी आजादी का है। देश सुखी और मजबूत होगा तो उससे धर्म की ही शोभा बढ़ेगी ना। अनेक समाज सेवा संस्थान, डीएवी शिक्षा संस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, जाने कितने ही अनेक संस्थानों की रचना लाला लाजपत राय ने की। 28 जनवरी को जन्मे लाला लाजपत राय कोरे राजनेता नहीं थे, वो जमीनी काम करने वाले आदर्श समाजवादी थे। स्वभाव से निडर, खूब मेहनती और दिखावे से कोसों दूर। लाजपत राय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल रहे जिन्होंने स्वराज को पहले समझा, कांग्रेस को बाद में समझ में आया और स्वतंत्रता आंदोलन के तेवर तीखे होते चले गए।
उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते लाठियां भी खाई और इसी वजह से उनकी शहादत हुई। ये शहादत भारत की आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निर्णायक पल साबित हुआ। उसके बाद गरम दल के नेता हो या नरम दल के, आजादी के रणबांकुरों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। ऐसे थे लाला लाजपत राय।

दोस्तों मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुहारा।
1: इस दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं, अगर आके कोई बता दे कि आगे पुलिस वाला चालान काट रहा है।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। विलुप्त होते बेजुबानों की सुध कौन ले रहा है? अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर हुआ करते थे। मोहम्मद अलवी का ये शेर लेख के अंत में समझ में आएगा कि यहां क्यों इस्तेमाल किया गया है। भारत देश इन दिनों हिंदू मुस्लिम की नापाक जंग के एक लंबे दौर से गुजर रहा है। CAA NRC पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश दो हिस्सों में बट गया है, एक इसके पक्ष में और एक इसके खिलाफ। टीवी डिबेट से लेकर चाय की टपरी तक हर जगह हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और शाहीन बाग ट्रेंड में बना हुआ है। लेकिन इस देशव्यापी गर्मा गर्मी के बीच भारत में रहने वाले पक्षियों को लेकर एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिस और कम ही न्यूज प्लेटफॉर्म्स और राजनेताओं का ध्यान गया है। कुछ रोज पहले गांधीनगर में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर आयोजित 13वें COP सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि भारत में पक्षियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति की दयनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी घाटों पर साल 2000 से पक्षियों की संख्या में 75% तक की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गिद्ध, छोटे पंजों वाले स्नेक ईगल, बड़ी कोयल, सामान्य ग्रीन शैंक जैसे पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं भारत में 79% पक्षियों की संख्या घटी है। अब जब रिपोर्ट में कई प्रजातियों के विलुप्त होने की बात कही गई है, तो सवाल उठना भी लाजमी है, और ये सवाल किसी एक पर नहीं बल्कि हम सभी पर उठता है। हम सभी मतलब जीव वैज्ञानिकों से लेकर सरकारी तंत्रों और आम इंसानों तक, जिनकी सुबह चिड़ियों की चहचहाट से होती है। गर्मियां शुरू होने को हैं और आसमान में उड़ते परिंदों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। पेट में भूख और कंठ में प्यास लेकर शहरों की छत के चक्कर लगाने वाले पक्षी हों या नदी नालों और जंगलों में बसर करने वाले बेजुबान, इन दिनों अपनी ही अनुकूल जगह पर घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन 137 करोड़ की आबादी में सिर्फ कुछ फीसदी लोग ही ऐसे हैं जो निजी तौर पर पक्षियों के संरक्षण में योगदान दे रहे हैं, और ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 13 में खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विषय को संबोधित किया था, इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि इस बात की जानकारी जिम्मेदार नेताओं या सरकारी तंत्रों को नहीं है। फिर ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद भी हम भारत में सालों से रह रहे और प्रवासी पक्षियों को लेकर कितने गंभीर हैं, इस पर भी विचार किया जाना जरूरी है। लगातार घटती पक्षियों की संख्या से जीवन वैज्ञानिक चिंतित तो हैं, लेकिन इसकी मुख्य वजह और उसे रोकने के प्रभावी तरीके शायद ही किसी के पास हों। साथ ही पक्षियों की इस दयनीय स्थिति को लेकर सरकारी महकमा कितना गंभीर है, यह भी एक शोध का ही विषय है। अंत में इतना कहा जा सकता है कि शायद हमें आजादी से चली आ रही हिंदू मुस्लिम लड़ाई को अब पीछे छोड़ देना चाहिए और बेजुबानों की घटती संख्या पर गंभीरता अपनानी चाहिए, नहीं तो पहली पंक्ति में इस्तेमाल किया गया मोहम्मद अलवी का शेर हमारी आने वाली पीढ़ियों को कड़वा सच बनकर सताएगा, और इसके लिए इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी विल मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: matter. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।
2: देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

लगा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा चांस से दोनों प्लीज सुनो, कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है?
2: हाँ।
3: ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: शायद तू ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहां जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है।
2: सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: डार्लिंग, तुम हर वीक गाड़ी चेंज करता, क्या गाड़ी के साथ साथ लड़की भी बदलता?
1: ऐसा न कहो मेरे

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंता ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो, अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: तस्वीरें तो शादाब हैं, तस्वीरें तो शादाब हैं, सुकून से भर देती हैं। आईने बद अखलाक हैं, हकीकत बता देते हैं। नमस्कार, आदाब, और दिल की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो SN के साथ। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। अल्फाज से एहसास तक के इस मंच पर रोज हम ऐसी हस्तियों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी बहुआयामी और प्रेरणादायक होती है, यानी बहुत इंस्पायरिंग होती है। आज हमारी महफिल में एक ऐसे ही इंसान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनुशासन, टेक्नोलॉजी, समाज सेवा और सुरों का बहुत खूबसूरत तालमेल बिठाया है। आज हमारे खास मेहमान हैं ग्रुप कैप्टन हेमंत नासरे जी, जिन्हें हम सब यानी मैं प्यार से हेमंता कहती हूँ। हेमंता ने भारतीय वायुसेना में इंडियन एयरफोर्स में बतौर इंजीनियर देश की शानदार सेवा की है। मिसाइल टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट रहने के बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का रुख समाज की तरफ मोड़ा। आज वो एक सफल कैरियर काउंसलर के रूप में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनवायरमेंट केयर और इको फ्रेंडली लिविंग से जुड़कर जमीन की महक फैला रहे हैं। वायुसेना के एयरफोर्स के सख्त अनुशासन से लेकर जमीन की मिट्टी और सुरों की महफिल तक हेमंत नासरे जी का सफर हर किसी के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। तो आइए बिना किसी देर के स्वागत करते हैं अपने खास मेहमान का। हेमंत दा, अल्फाज से एहसास तक की इस महफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम है, आइए तशरीफ लाइए।
1: नमस्कार आरती जी।
0: नमस्कार।
1: मेरा आपको तथा अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।
0: सबका आपको
1: मेरी तरफ से यानी कैप्टन हेमंत नासेरी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार हेमंत, आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो हम ज्यादा देर न करते हुए आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हेमंत, ये बताइए कि आप इंडियन एयरफोर्स में मिसाइल टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस जैसे बहुत संजीदा डिपार्टमेंट्स में देश की सेवा करने का आपको अनुभव है, ये आपका अनुभव कैसा रहा? और इसी बात से जोड़कर आप हमें ये भी बताइएगा कि फौज की इतने डिसिप्लिन लाइफ से बाहर निकलकर करियर काउंसलिंग के जरिए युवाओं को दिशा देने का ये सफर कैसा शुरू हुआ?
1: जी आरती जी, तो जैसा कि मैंने 1988 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था, मेरी बीटीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से कंप्लीट करने के तुरंत बाद, जहाँ मेरा प्री फाइनल में ही इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था और फाइनल ईयर पास आउट करने के बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया एज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। और मेरा टोटल करियर इंडियन एयरफोर्स में 35 ईयर्स से ज्यादा का रहा है। इसके दौरान मैंने IL-76 एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर काम किया और सरफेस टू एयर मिसाइल चौरा इसके मेंटेनेंस इंजीनियर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रू के तौर पर मैंने काम किया। बहुत ही अच्छा सफर था, देश सेवा करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला और पूरी तन मन धन के साथ हमने देश की सेवा की और इस पूरे अनुभव को हमने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया
0: जी।
1: बहुत अच्छी तरह
0: बहुत बहुत बहुत बहुत बढ़िया। कितना अच्छी आपकी आपने बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है एक्चुअली। तो देश की रक्षा के बाद और अब आपने कैरियर काउंसलिंग का काम शुरू कर दिया, तो इससे आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ कर रहे हैं। बहुत खूब बहुत खूब। हिमंता ये बताइए कि आज के युवा अपने कैरियर को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो एक अनुभवी काउंसलर के रूप में आप उन्हें सही राह चुनने के लिए क्या सलाह देते हैं? और इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि युवाओं से बातचीत यानी यंगस्टर से बातचीत करते समय आपको खुद में क्या नया सीखने को मिलता है?
1: तो जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, खुद इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग एज ए स्टूडेंट रहने का और उसके बाद में IIT खड़गपुर से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया, तो वो मेरा अनुभव रहा है जिस और वो मैंने उस समय किया है वन ईयर फुल टाइम कोर्स, जब वो मेरी एज लगभग 40 ईयर्स प्लस थी
0: जी।
1: तो पर उसके उस समय जो हमारे साथ जो क्लासमेट थे वो सब 20 to 25 ईयर्स के यंग इंजीनियर्स थे जो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके IIT खड़गपुर में हमारे साथ MBA करने के लिए। तो ये दोनों ही एक्सपीरियंसेस के साथ मुझे आज के युवाओं की मानसिकता का बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसको पहचानने का मौका मिला, उसकी क्या जरूरतें हैं उसका मौका मिला। तो अब जब मैं उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में मैंने करियर काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स किया और अब मैं जो स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका करियर काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करता हूँ। उसमें मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि उस बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, उसकी एस्पिरेशन क्या है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए आगे चल के क्या क्या एवेन्यूज है, क्योंकि आजकल इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहले तो हमारे समय सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर लॉयर्स या CA बस लिमिटेड फील्ड थे, पर इतने थे तो उस बच्चे के लिए उसके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के हिसाब से ये क्या सूटेबल रहेगा वो मैं पहचानने की कोशिश करता हूँ और उस तरह से उनको मैं करियर गाइडेंस दे।
0: बहुत सुंदर और इसमें वाकई ये कोई आसान काम नहीं है, हर एक बंदे का आपको IQ एक किस्म से जज करना और फिर कैसे उसको मोल्ड करना है कि कौन सी चीज किस चीज किस बंदे के लिए किस कैंडिडेट के लिए क्या ठीक रहेगी, ये सब कुछ एनालिसिस करके बताना, दिस इज नॉट एन इजी जॉब है मंदा। आप तो बहुत बहुत महान काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं हमारे हेमंता की पसंद पर गाई हुई उनकी पहली गजल, बहुत संजीदा गजल है सुरेश वाडेकर जी की, ये अमर रचना है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो आइए सुनते हैं।

0: वाह हेमंता, बहुत खूबसूरत आपने ये गजल गाई, बहुत खूबसूरत।
1: शुक्रिया
0: और
1: आरती
0: गजल
1: जी।
0: के जो भाव थे सीधे दिल को छू गए। आइए अब
1: बहुत
0: इसी बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं और आपसे अगला सवाल पूछते हैं। वो ये है कि रिटायरमेंट के बाद आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग और इको फ्रेंडली लिविंग को अपनाया, ठीक है हेमंता? तो मिट्टी से जुड़ने का ये विचार आपके मन में कैसे आया? और इसी जमीनी जुड़ाव के साथ साथ ये भी बताइए कि जब आप अपनी उगाई हुई साफ और शुद्ध फसल देखते हैं तो दिल को कैसी सेटिस्फेक्शन, कैसी संतुष्टि मिलती है, ये बताइए जरा।
1: जी आरती जी, तो एक्चुअली जो कृषि का व्यवसाय है ये हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, यानी जनरेशन से ये हमारा मुख्य व्यवसाय रहा है। मैं अगर अपने एक टेन जनरेशन की बात करूँ तो हमारे जो पूर्वज थे वो अपने 5 गांवों के वो मालगुजार थे, मालगुजार यानी जिसको हम जमींदार कह सकते हैं। तो उनके पास हमारे पास में सैकड़ों एकड़ जमीनें थी उस जमाने में, और वही पुश्तैनी जो हमारी जमीन वो कंटिन्यू करती रही। और अभी भी मैं, मेरे बड़े ब्रदर, हमारे अंकल, हमारे कजिन, ये सभी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन खेती का व्यवसाय कर रहे हैं। मेरी और मेरे बड़े ब्रदर की 2 गांव में, सावरे और अकलेवा में हमारी जमीने हैं, फार्म है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं, रहते हैं और खेती करते हैं। जो हमारा मुख्य जो हमारा आय का जो ऑक्यूपेशन है
0: ठीक है। पुश्तैनी
1: उसके अलावा ये हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन।
0: काम आपका यही है ना, खेती बाड़ी और जमींदारी? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और जमीन की मिट्टी में काम करना और कुदरत की भी आप हिफाजत कर रहे हैं, और ये सुकून तो वैसे भी रूह को बहुत तस्कीन देता है। बहुत खूब हेमंत।
1: और जब हम अपने अपने जो मेहनत से हम लोगों ने वो फसल उगाई हुई है, तो अब जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है, उसको देखकर हमें इतना इतना आनंद आता है, इतना सुकून आता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम एक अपना जो छोटा सा रोल अन्नदाता का निभा रहे
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल,
1: अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ हम लोग कर रहे हैं।
0: क्या
1: बहुत
0: बात
1: अच्छा।
0: है, क्या बात है। आपका मतलब आत्मा तो आपकी, रूह तो आपकी वहीं पर है, वो अलग बात है कि आपने इसके अलावा देश की भलाई के लिए फौज में जाकर जो काम किया, मतलब आप जय जवान भी हैं और जय किसान भी हैं मेरे हिसाब से तो। बहुत खूब। अच्छा हेमंत दा, आप ये बताइए कि आप समाज सेवा, सोशल वर्क और एनजीओ एक्टिविटीज से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, इस तरह दूसरों की मदद करने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? और इसके साथ साथ आप हमें ये भी बताइए कि एक फौजी अफसर का अनुशासन समाज सेवा के कामों में कितना मददगार साबित होता है?
1: जी आंटी जी, तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि यह देश, यह समाज हमें बहुत कुछ देता है। हमें ये नहीं देखना है कि देश ने या समाज ने हमें क्या नहीं दिया, हमें यह देखना है कि देश और समाज ने हमें क्या दिया, हमारे लिए क्या किया। तो जब हम अपनी एक्टिव लाइफ में होते हैं, यानी से अप टू बिफोर रिटायरमेंट, तब हमें अपनी पूरी लगन के साथ अपना कार्य करना है। और जब हम रिटायर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, उस समय वो समय है जब हमारे पास इतना अनुभव, इतना एक्सपीरियंस और इतना एक्सपर्टीज, इतना ज्ञान होता है कि वो हम अपने समाज को वापस दे सकें, दे सकें। जैसे
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपर्टीज है, तो जो बच्चों जो मैं समाज को वापस दे सकता हूँ, करियर काउंसलिंग के तौर पर, कृषि व्यवसाय के तौर पर, जो रोजगार हम प्रदान करते हैं अपने गाँव में लोगों को, और रिलेशनशिप कोचिंग का मैं जो एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया है उसके थ्रू हम जो एंड जो जनरेशन है उनको गाइड
0: गाइड करते हैं।
1: ये अब हमारा समाज को वापस देने का समय आ गया है।
0: बिल्कुल,
1: और वही कर रहे
0: बहुत खूब। मतलब ये भावना हर किसी में नहीं होती है, और आपके कितने कितने जहीन आपका दिमाग है, दिलो दिमाग है, और कितने अच्छे तरीके से आप सोचते हैं। मैं बहुत मुतासिर हुई आपके इन ख्यालों से हेमंदा, बहुत वाकई आप बहुत जहीन हैं। तो इसी नोट पर दोस्तों आइए हम हेमंदा की गाई हुई दूसरी एक गजल सुनते हैं, उस्ताद गुलाम अली साहब की। ये है सबको मालूम है मैं शराब, नहीं ये गुलाम अली साहब की है ना,
1: पंकज
0: उदास, सॉरी ये पंकज उदास की है। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। आइए दोस्तों, हेमंत दास ने बहुत खूबसूरती से इसको गाया है, सुनते हैं आप सब मिलके।

0: वाह हेमंता, कितनी खूबसूरती से आपने पंकज उदास जी की ये गजल गाई, वाकई कोई जवाब
1: शुक्रिया।
0: नहीं। हेमंता, तकनीकी और फौजी दुनिया के बीच संगीत आपके जीवन का कितना अहम हिस्सा रहा है, इस बारे में आइए अब बात करते हैं। तो ये बताइए हेमंता, मिसाइल और एरोस्पेस की सख्त दुनिया के बीच संगीत और गजल गायकी आपके लिए कितना बड़ा सहारा रही है? और इसी सुहाने मोर्चे से जोड़कर ये भी बताइए कि क्या फौज में ड्यूटी के दौरान भी आपको रियाज या गाने गुनगुनाने का समय मिल पाता था?
1: जी आती है। एक्चुअली म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है, बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट रहा है, पर मुझे संगीत सीखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ बचपन में। तो इसलिए मैं उस समय भी सिंगिंग करता था, जब स्कूल में था, कॉलेज में था, या अपने शरीर में था, पर नॉट एज अ ट्रेन सिंगर। और उस समय मैं मोस्टली फिल्मी गीत गाता था या कुछ गजलें भी गाता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने एक्चुअली फॉर्मली म्यूजिक सीखना शुरू किया पिछले
0: अच्छा।
1: लगभग और वो मैंने पूरी पूरी लगन के साथ म्यूजिक सीखना शुरू किया। मैं काफी समय डिवोट करता हूँ म्यूजिक सीखने में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से फीलिंग लेके करें तो उसमें आप परफेक्शन हासिल कर सकते हैं, या एक नया आयाम ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैं जो म्यूजिक सीख रहा हूँ, और मैं काफी समय म्यूजिक में जाता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि म्यूजिक जो है अलग अलग तरह के रंगों में म्यूजिक अवेलेबल है, भक्ति रस में है, प्रेम रस
0: जी
1: में है, सेंटिमेंटल सॉन्ग्स के तरह से है, गजलों के रूप में है, और देशभक्ति के रूप में है। तो सभी तरह का, तो सभी जीवन के रंग इसमें मिले हुए हैं, तो इनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब इनको गाता हूँ, मैं गुनगुनाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मन को बहुत एक शांति का अनुभव होता है,
0: जी बिल्कुल
1: और बहुत
0: बिल्कुल,
1: आनंद।
0: बहुत खूब। संगीत तो वाकई हर थकान को मिटाकर रूह को ताजगी से भर देता है, वाकई ये बिल्कुल सही है। तो आप ये बताइए हेमंता कि आपको ओल्ड क्लासिक्स और संजीदा गजलें सुनना और गाना बेहद पसंद है, और संगीत के इस पुराने दौर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? और फिर इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आज के मॉडर्न म्यूजिक और उस दौर के धुनों के बीच आप मतलब अमूमन क्या फर्क डिफरेंस महसूस करते हैं?
1: ये आरती जी, मैं जो बचपन से जो मैंने सॉन्ग सुने हैं, जो गजलें सुनी है पुराने दौर की, बहुत ही खूबसूरत थे वो सभी। उनमें जो लिरिक्स थे बहुत ही मीनिंगफुल थे, बहुत सुंदर उसका संगीत था, काफी हद तक क्लासिकल संगीत था उसका, सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स भी काफी अच्छे अच्छे पुराने समय में होते थे, और सुनने में जिसको हम कहते कर्ण मधुर थे वो, बहुत ही मेलोडियस वो सभी करते और सॉन्ग थे। और आजकल जो गाने, आजकल भी अच्छे गाने बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, आजकल भी सेमी क्लासिकल गाने बनते हैं, पर जो मेजोरिटी ऑफ सॉन्ग है काफी फास्ट पेस्ड है, पेपी सॉन्ग हैं, थोड़ा सा वो जो कहते हैं म्यूजिक का जो जोनर वो चेंज हो गया है, तो फास्ट सॉन्ग्स आजकल ज्यादा पसंद किए जाते हैं। मुझे वो भी गाने पसंद है, अच्छे लगते हैं, पार्टी सॉन्ग जिसको हम कहते हैं, वो सुनना भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं, काफी सॉन्ग सुनता है, इनको गाता भी हूँ। मुझे दोनों तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है, पर अगर पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे जो पुराने ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स थे, और उनमें भी जो ज्यादातर जो सेंटिमेंटल सॉन्ग्स थे वो सुनना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: जी बात

0: वाह हेमंदा, बहुत खूबसूरत गजल का ये मखमली एहसास मन को एक अलग ही शांति सी दे जाता है।
1: शुक्रिया दी।
0: हेमंदा, अब बात करते हैं आपकी जीवन यात्रा की सीख के बारे में। एयरफोर्स की वर्दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, करियर काउंसलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इतने अलग-अलग स्पेयर्स में काम करने के बाद आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या निखार आया? और इसी बात से जोड़कर हमें ये भी बताइए कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने इस इतने डाइवर्स जर्नी पर आपको कितनी खुशी महसूस होती है?
1: मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी ईश्वर ने जीवन प्रदान किया है, एक बहुत ही परिपूर्ण जीवन है, जिसमें जीवन के बहुत सारे रंग मैंने देखे हैं। बचपन में मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ था, प्राथमिक शिक्षण, वो ऐसे दो गांव में हुआ था जिसमें से एक की जनसंख्या तो 1000 से भी कम थी, दूसरे की 4-5000 से कम थी। और फिर एजुकेशन भी जो हमारा हुआ था, एक स्मॉल टाउन छिंदवाड़ा था, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस था, वहां पर स्कूल एजुकेशन हुआ है। हमारा स्कूल ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल था, मल्टीपर्पज स्कूल। और उसके बाद में कॉलेज एजुकेशन हुआ, तो स्लोली प्रोग्रेसिवली मैं छोटे गांव से बड़े शहरों की तरफ मूव किया है मैंने। और एक जबलपुर में था, उसके बाद एयरफोर्स में रहते हुए तो मैंने बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, पुणे, तो ऐसी जगहों पे भी, तो मैंने एक पूरा स्पेक्ट्रम देखा हुआ है लाइफ में, एक
0: बिल्कुल
1: बहुत ही छोटे गांव से लेके जो बड़े शहर। और मुझे एयरफोर्स की तरफ से विदेश जाने का मौका मिला था, मॉस्को
0: जी
1: में 2 बार जा कर आया, तो मुझे विदेश में भी जो मेट्रो सिटी है या बड़ी सिटी है वो देखने का मौका मिला। तो पूरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस मुझे इसमें आ गया है। और इसमें जो मैंने अनुभव किया है, तो वो पूरा लाइफ का जो मेरा अनुभव धीरे धीरे विकास था, कि पहले जो मैं बहुत ही शांत था, काफी रिजर्व था, पर स्लोली जैसे जैसे हम बड़े शहरों की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे पर्सनैलिटी में निखार आता गया, थोड़े आउटगोइंग हो गए हैं, थोड़े पार्टी एनिमल हो गए हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, लोगों के साथ मिलकर बैठना, बातें करना
0: बिल्कुल
1: बहुत पसंद है। तो
0: बहुत
1: इस
0: बहुत
1: तरह से थोड़ा पर्सनैलिटी चेंज आया।
0: आप बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये बात, क्योंकि आप जमीन से बेसिकली जुड़े हुए हैं, डीप रूटेड हैं, और आपने अपनी अपनी रूट से आपने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया, और धीरे धीरे धीरे जैसे एक पेड़ बढ़ता है, एक पौधा बढ़ता है, फिर ऊंचा होता है, बड़ा पेड़ बनता है, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, पूरे यौवन पे आता है वो, फिर मतलब हर चीज को आपने कितने अच्छे तरीके से, नफीस तरीके से जिया है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत एहसास ऐसा भर देता है कि आपने आपको पूर्णता का एहसास देता है, मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। मैं आपकी आपकी बात सुनते सुनते इस बात को फील कर रही थी कि जैसे आप महसूस करते हैं अपनी लाइफ को, तो आपका सफर वाकई ये साबित करता है कि इंसान अगर चाहे तो एक ही जिंदगी में कई रंग भर सकता है, और जिंदगी के सारे रंगों को बड़ी खूबसूरती से जी भी लेता है और आनंद भी उसका उठाता है। बहुत खूब हेमंता, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, हेमंता की गाई हुई ये प्रोग्राम की गजल सुनते हैं, चौथी। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।

0: वाह हिमांता, क्या खूबसूरती से आपने इस गजल को निभाया है, बहुत सुंदर गाया है आपने। हिमांता, अब हम अपनी इस महफिल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं गालिबन। आप हमें ये बताइए कि इतने डिसिप्लिन, अनुशासन, सेवा और कला से भरे इस समृद्ध अनुभव के बाद जिंदगी को देखने का आपका सबसे बड़ा नजरिया यानी फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, और इसके साथ साथ रेडियो टांटिया भील और रेडियो एफएन के हमारे सुनने वाले सब दोस्तों के लिए आपका क्या खास संदेश है, क्या मैसेज होगा?
1: जी, तो मेरा तो जिंदगी का इतने अनुभव प्राप्त करने के बाद में एक ही विचार है, एक ही फलसफा है, सादा जीवन उच्च विचार, ये हमें रखना चाहिए। आप हमें हम्बल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड से भरे हुए होना चाहिए ईश्वर के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति। उनके आशीर्वाद से हमें ये सुख शांति सम्मान और उदासीता के प्रेमपूर्ण जीवन प्राप्त हुआ है। तो जीवन में अच्छे कार्य करना है, सेवा भाव रखना है और अपनी पूरी क्षमता से दूसरों की मदद करना है, और जो भी कार्य करना है हमें पूरी क्षमता से, पूरी लगन से, मेहनत से और पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ में अपना कार्य हमें करना है, जो भी कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है, पढ़ाई करना है, पुलिस में है, जॉब करना है, या उसके बाद में भी जो अगर सेवा भाव जो भी जन सेवा कर रहे हैं जो अपनी पूरी क्षमता और सिंसियरिटी के साथ करना है।
0: बहुत खूबसूरत,
1: जितना हमने समाज से पाया है उतना हम वापस दे सकते,
0: वापस देना है। ये ख्याल वो कितना खूबसूरत और कितना नफीस ख्याल है दोस्तों। हिमांता की भावनाएं देखिए आप, उनके दिल के उद्गार देखिए, वो क्या कह रहे हैं। इतना लाइफ में जो भी कुछ लिया है वो हमको वापस भी तो लौटाना चाहिए ना, तो बहुत खूब, बहुत अच्छे।
1: इसी के साथ मैं आपका, समीर जी, नितिन जी और रेडियो एफएम की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का अवसर प्रदान किया और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और गजलें सुनाने का अवसर दिया, और सभी श्रोताओं का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम को सुना और करा।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेयर इज ऑल आवर्स हिमांता, आप हमारे पास आए और आपके इतने अच्छे ख्याल जानने के बाद हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम सब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और हमारे सुनने वाले सब दोस्तों को भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांता। और आइए दोस्तों, इसी नोट पर अब प्रोग्राम की आखिरी गजल सुनते हैं। हिमांता ने जो गाकर भेजी है बहुत खूबसूरत सी, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वाकई बिल्कुल मौके पर सटीक बैठती है ये गजल। आइए दोस्तों इस गजल का लुत्फ उठाते हैं।

0: आपने दोस्तों हेमंत दा ने ये अरिजीत सिंह का वर्जन गाया था इस गजल का, और कितनी खूबसूरती से इसको निभाया भी। तो आज ग्रुप कैप्टन हेमंत नासरे जी से बात करके ये एहसास और पुख्ता हो गया कि इंसान चाहे आसमान की कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, अगर दिल में सादगी है, संगीत है और समाज के लिए इतना सेवा भाव हो, तो वो हर दिल में अपनी जगह बना ही लेता है। आज की इस बेहद खास और सुहानी महफिल के नाम अहमद फराज साहब का ये बेहद नायाब और पायदार शेर नजर करती हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, हम परविशे लौह ओ कलम करते रहेंगे, हम परविशे लौह ओ कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। इसी प्यारे से ख्याल और उम्मीद के साथ अब आपकी अपनी दोस्त आरती रॉय आपसे चाहती है इजाजत। कल फिर मिलूंगी इसी वक्त किसी और नए एहसास के साथ, किसी और नए अल्फाज के साथ, किसी और नई सुहानी कहानी और सुरों के साथ। सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो SN। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों से बहुत मोहब्बत करिए। शब खैर, शुभ रात्रि, रब रखा, फिर मिलेंगे।
1: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ। आरती जी फिर से हाजिर होगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: नमस्कार किसान भाइयों, एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं से तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नू यू खेतीबाड़ी कार्यक्रम आपड़ हंगड़ा किसान भाइयों हरु खेतीबाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों, तमु भली बाती वाकिफ है कि आपड़ जावानो जो किसान है वो मुख्यतः जिनी आय नो जो स्रोत है वो कृषि ही है, तो आप खेती ने खेती में अधिक से अधिक मुनाफा आपको की कम ली सकें, केम के आप जानी है अपनी जगह जो है उबड़ खाबड़ है, पथरीली है ने इतनी उपजाऊ मिट्टी नहीं मिले है, तो इन्हीं जगह में आप कई नहीं फसल करी सकें ली सकें तीन थी अधिक से अधिक आप मुनाफो मिली सके तिना बारा में आप चर्चा करूँ जाणूँ इना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज नो जो खेतीबाड़ी कार्यक्रम नो हमारो जो विषय है तो बेहद अलग ही विषय है, केम के आज आप जाणू के जो हमारा किसान है किसान विक्रय मूल्य जिन्हें आपू की है MSP तिनके है, तो तिनी MSP ने किकम जाणवो कितनो डिसीजन किकम था है किकम तिनो निर्णय ले है कौन निर्णय ले है ने जो अपन किसान भाइयों ने क्या हूँ समस्या है तिना बारा में भी आप विस्तृत जानकारी आज ना कार्यक्रम ना माध्यम थी हमणू। तो किसान भाइयों, आशा करूँ है कि यू कार्यक्रम आप सबू हरू लाभकारी था है अने आज ना इना कार्यक्रम में वधु थी वधु चर्चा थवानी है कि हूँ सही है हूँ गलत है इनी पर आप चर्चा करूँ आज ना इना विषय पर। तो किसान भाइयों, आप ना हर बात अपन रेडियो टांडिया भील नो इनो खेतीवाड़ी कार्यक्रम थी कहीं ना कहीं सीजे आप हमेशा हिकवा मले है, तो किसान भाइयों आशा करिए है कि इना कार्यक्रम ने आप आखिरी तक देखूँ अने जानकारी लूँ हिखूँ आपू इना कार्यक्रम थी, ते तमारो वधु समय नहीं लेते हुए आज ना इना कार्यक्रम ने आपू आती शुरुआत करी से।
1: आज जो हमारा विषय है वो MSP से जुड़ा है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से। आपको पता ही है कुछ दिन पहले खरीफ के जो है MSP घोषित किए गए हैं, तो वो MSP कैसे पता लगते हैं, कैसे तय होते हैं, कितना किसानों को फायदा होता, कितने किसान उससे जुड़े हैं, इस सब पे आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए आज का हमारा विषय है MSP क्या मिला किसानों को। देखिए, इस विषय को और अच्छी तरह हम समझेंगे और ये सबके लिए जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि किसान ही इससे जुड़े हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि MSP जो है वो किसान के लिए आता, लेकिन इससे सब कुछ प्रभावित होता है। पूरे जीवन पे सच कहें तो किसानों के जीवन पे इसका असर पड़ता है, उनके आमदनी पे इसका असर पड़ता है। इसलिए थोड़ा MSP को और समझते हैं और ये जानने के लिए देखते हैं ये लघु फिल्म।
2: इस बार केंद्र सरकार की बड़ी पहल रही है कि दलहन के MSP को बढ़ाने के साथ इसमें 200 रुपए का बोनस देना, जो पहली बार हुआ है। देश में दालों की आवश्यकता करीब 23 से 23.5 करोड़ टन की है, लेकिन देश में दालों का उत्पादन करीब 17.3 करोड़ टन होता है और हर वर्ष लगभग 5 करोड़ टन दालों का आयात होता है। देश में अधिकतर दलहन उत्पादक किसान छोटे व सीमांत हैं। सरकार के इस फैसले ने इन किसानों के चेहरों पर खुशियां जरूर ला दी होंगी। सरकार के इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। एक तो किसान दलहन की खेती की ओर मुड़ेंगे, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में इजाफा होगा और साथ ही विदेशों से आयात की जाने वाली दालों की मात्रा में वक्त के साथ साथ कमी आएगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचेगी। कृषि उपज के दाम तय करने की शुरुआत तब हुई जब खाद्यान्न उपलब्धता में कमी होने लगी और सूखा व बाढ़ के साथ अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में उतार चढ़ाव देखा जाने लगा। सरकार को लगा कि किसानों को कृषि उपज के उचित दाम मिलने चाहिए और उपभोक्ता को भी खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए। किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित साधने के लिए तत्कालीन सरकार ने 1965 में APC यानी कृषि मूल्य आयोग का गठन किया, जो कृषि उपज का मूल्य तय करने पर सिफारिश देता था और फिर 1985 में जिम्मेदारियां बढ़ाते हुए सरकार ने APC का नाम CACP यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया। कृषि उत्पादों के मूल्य तय करने में बस तभी से CACP की सिफारिशों पर सरकार गौर करती रही है। सरकार का मानना है कि सही और उचित मूल्य से ही कृषि पैदावार और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। आज CACP करीब 24 कृषि उपजों का MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। MSP तय करने के लिए CACP मोटे तौर पर उत्पादन की लागत, निवेशी मूल्यों में बदलाव, इनपुट आउटपुट मूल्यों में फर्क, बाजार भाव में ट्रेंड, अंतः फसलीय मूल्यों में फर्क, मांग व आपूर्ति हालात, औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य कीमतों के स्तर पर प्रभाव, जीवन शैली पर प्रभाव, राष्ट्रीय विपणन मूल्य स्थिति, किसानों द्वारा चुकाई गई और प्राप्त की गई कीमतों में फर्क आदि पैमानों पर गौर करती है। किसी फसल को तैयार करने में कितनी लागत आ रही है, इसे C2 में कहा जाता है और फिर इस C2 में अतिरिक्त 10% जोड़कर C3 तैयार किया जाता है और ये C3 ही रबी या खरीफ की फसलों के MSP की सिफारिश होती है। लेकिन MSP से कई किसान कम ही संतुष्ट हैं और कई बार तो सरकार व किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि CACP द्वारा तय किया गया MSP उस फसल की उपज लागत से भी कम था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या MSP तय करने के तरीके में बदलाव की आवश्यकता है? क्या किसानों की बढ़ती लागत, जिसमें खाद, बीज, डीजल के दामों से लेकर श्रमिकों पर बढ़ रहे खर्च के सही आकलन में CACP से चूक हो रही है? क्या एक ही MSP अलग अलग राज्यों के लिए मान्य हो सकता है? क्या राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस या राज्य परामर्शी मूल्य को खत्म किया जाना सही है? सवाल कई हैं, लेकिन एक ओर जहां MSP ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने में महती भूमिका निभाई है, वहीं दूसरी ओर कई फसलों का MSP के दायरे से बाहर होना भी परेशानी का सबब है। MSP कैसे देश के 86% छोटे व सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग दे सकता है और उपभोक्ताओं का हित भी कैसे सुरक्षित रहे, इस पर विचार विमर्श आवश्यक है।
1: तो आपने देखा कि MSP जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये जो है किसानों की आमदनी तो तय करने में मदद करता ही है, पर साथ ही कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीदते हैं, खाद्य वस्तु, तो उसके दाम क्या होंगे। वैसे तो कपड़ा वगैरह जो है, कपास, वो भी इसमें आता है, तो उसमें भी बहुत कुछ MSP की भूमिका रहती है। इसी को थोड़ा समझते हैं और MSP के दाम कैसे तय होते हैं, कैसे ये तय किया जाता है कि किसान की इतनी लागत है, उसको इतना मिलना चाहिए पैसा, और उसमें बहुत सी शिकायतें रह जाती हैं, वो शिकायतें भी क्या हैं, उसको भी थोड़ा समझते हैं और सही तरीका क्या होना चाहिए MSP तय करने का, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कई विशेषज्ञ हैं जो इस विषय पर बताएंगे। आप कौन से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर टी हक साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं पूर्व अध्यक्ष हैं CACP के, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो MSP तय करता है। आपसे प्रोफेसर साहब हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये तय होता है MSP, और बहुत सी शिकायतें किसानों की रह जाती हैं। खरीफ पे भी चर्चा करेंगे और पूरा MSP को भी समझेंगे। साथ में हैं प्रभाकर किलकर जी, ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के, किसानों के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और MSP इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभाकर जी। हमारे साथ किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी भी हैं, किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि MSP से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान। आपसे इसी विषय पर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे तेवतिया जी हैं, सुंदर पाल सिंह तेवतिया जी, जो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से आए हैं, खुद किसान हैं, किसानों के मुद्दों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं। MSP से कितना लाभ उन्हें पहुंचता और कितना नहीं, इस पर चर्चा रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संतोष सिंह जी हैं फतेहपुर UP से, किसान नेता हैं, खुद किसान हैं, खेती किसानी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और MSP ये जो नया आया है, इसमें और पुराने में क्या फर्क रहा, कैसे किसानों की मदद करता है MSP, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जो है डॉक्टर हक आपसे मैं करना चाहूँगा, थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये तय कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या है?
3: जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो तय करने का पद्धति है या तरीका है, उसमें एक तो है कि कृषि में लागत, उस फसल का लागत क्या है, वो लागत देखा जाता है। दूसरी बात है कि मार्केट में उस फसल का क्या दाम है, देश के बाजार में या विदेश के बाजार में, वो भी देखा जाता है। उस फसल का आज के दिन में देश को कितनी ज़रूरत है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, किसकी कमी है या ज़्यादा है, वो देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को अगर इनपुट खरीदना है या दूसरी और चीज़ खरीदना है इंडस्ट्रियल सेक्टर से या सर्विस सेक्टर से, तो उनका दाम और फसलों का दामों में एक तालमेल हो, कि बहुत ज़्यादा कम बेसी होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी, तो वो भी ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान में रखना होता है कि फसल का दाम इतना हो कि रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज का है, जैसे केन का है, शुगर मिल्स का है, कॉटन का, कॉटन मिल्स हैं, वो रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करते हैं, तो भी देखा जाए कि मार्केट को ध्यान में रखते हुए उनका रॉ मटेरियल्स का प्राइस भी एक रीजनेबल हो। ये भी देखा जाता है कि जो आपका इनपुट प्राइसेस में, खास करके ओवर टाइम, इस साल अगर फसल का आप दाम तय करते हैं तो पिछले साल क्या लागत था और अभी कितना चेंजेस हुआ, वो देखना होता है। फिर इन्फ्लेशन में क्या असर होगा, ये सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी
1: इतनी सारी चीजें
3: उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन है, उसमें कितना किसको वेट देते हैं वो डिपेंड करेगा चेयरमैन के ऊपर या मेंबर्स के ऊपर या बाकी किस तरह का एटमोसफियर है उसके ऊपर।
1: लेकिन सब आप क्योंकि सीएसीपी से जुड़े रहे हैं, एक चीज जो अभी दो दिन पहले खरीफ के मूल्यों की घोषणा हुई है, उसको आप किसान की तरह से अगर देखें तो किसान को उसमें क्या फायदा होगा? जैसे कुछ अगर हम मान लीजिए चावल की, धान की बात करें, तो धान में उस हिसाब से 50 रुपए का इजाफा किया गया है
3: जी।
1: तो आपको क्या लगता है, सरकार एक सोच समझ के एक ये कदम उठा रही है, क्योंकि धान का हमारे पास स्टॉक भी बहुत है और धान जो है उस चक्र से भी हम निकलना चाहें, तो ये आपको कुछ एक रणनीति उसमें एक दिखती है?
3: बिल्कुल है, क्योंकि कई सालों से ये चर्चा में है कि धान की खेती से, खास करके पंजाब हरियाणा के इस सिचुएशन में देखें तो वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर तो काफी नीचे चली गई है
1: जी।
3: वो लगता है कि फसल आगे, अगला कोई फसल,
1: गेहूं धान के चक्र से किसान निकल नहीं,
3: चक्र से निकल नहीं रहा है। तो कई सालों से चल रहा है कि चावल गेहूं का अभी स्टॉक भी अच्छा है, अभी जैसे कहा गया ना कि स्थिति अभी देखना है, तो उसके बाद अगर उसको डायरेक्शन बदलना है, जैसे पल्सेस में हमारी कमी है देश में, ऑयल सीड्स की कमी है देश में, खास करके एडिबल ऑयल हम 10 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस भी 3 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोत्साहन देना है आपको पल्सेस के लिए भी और ऑयल सीड्स के लिए भी। तो लेकिन हो नहीं रहा है कई कारणों से, कि अभी भी इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी जिसको हम कहते हैं कि

0: संतुलन बना हुआ है और जब तक दूसरे फसलों का दाम ठीक ना हो, रिटर्न्स ठीक से ना मिले किसानों को, और दूसरी बात है कि अगर फसल का दाम आपने तय कर भी दिया और आपने खरीदा नहीं और खरीद के कुछ आगे डिस्पोज अप करने का मैकेनिज्म नहीं क्रिएट किया
1: तो भी बिल्कुल वो क्योंकि अब तक हक साहब अभी हम और इस पे चर्चा करेंगे।
0: 65 से जब से ये हुआ है
1: जी,
0: हम शुरुआत किया है इसको
1: जी।
0: तो उसके बाद से ही एक और इसमें दिक्कत एक आई है किसानों के लिए, चूंकि जानना जरूरी है, बाद में फिर
1: जी, जी।
0: कहीं मैं ही भूल जाऊंगा, भूल
1: जाए इसको बिल्कुल बताइए,
0: जानना जरूरी है। एक सारे देश से आंकड़े इकट्ठे करके एक औसत रूप में जो लागत होता है उसको लिया जाता है। मान लीजिए किसी स्टेट में 700 रुपये पर क्विंटल पैडी का दाम है, खर्चा आता है, किसी स्टेट में 900 आता है, किसी में 1200, किसी में 1300, किसी में 1400 आता है। आपने उसके बेसिस पे अगर 900 फिक्स कर दिया तो जो
1: 1400 वाला वो तो
0: मरेगा, मर गए। इसीलिए आज के दिन में ज्यादातर किसान इस देश में किसानी व्यवस्था को लाभकारी नहीं समझते हैं और परेशान है, और इसीलिए जब तक काफी परिवर्तन नहीं लिया जाएगा इस जो हम जिस
1: पूरी
0: तरह
1: प्रक्रिया, है
0: प्रक्रिया में, और जब तक ठीक से आकलन नहीं होगा और मेथड्स को हम बदलेंगे नहीं, तब तक मेजोरिटी फार्मर्स को प्रॉब्लम रहेगा। तो असली बात यह है
1: प्रभाकर जी, अभी जो 2 दिन पहले खरीफ के दाम आए हैं, आप किसानों के लेके अगर हम बात करें तो आप कैसा सोचते हैं, क्या उनके लिए अच्छे दाम आए हैं, उनको लाभ होगा इससे?
2: देखिए, किसान को अच्छे दाम तो तभी माने जाएंगे जब उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा
1: जी।
2: आज लागत इतनी अधिक बढ़ गई है जिसके आधार पर उसको लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, वो तो सरकार अभी उससे कोसों दूर है, और इसलिए 50 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये बढ़ा देना, ये एक सरकार को अपनी तुष्टिकरण का बात लगती होगी हमने किसानों के लिए कुछ किया, पर किसानों को लगना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया।
1: क्योंकि प्रभाकर जी ये बात भी आ रही थी कि लागत बहुत है, जैसे अभी हक साहब ने भी बोला कुछ क्षेत्र हैं जो भले ही वहां बारिश ना हो पर ट्यूबवेल वगैरह बिजली वगैरह से डीजल का पंप चला के वो अपना सिंचाई कर लेते हैं, उससे लागत जो है बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो औसत है अगर उस हिसाब से लेंगे तो किसान को बहुत नुकसान हो जाएगा।
2: उस हिसाब से भी नुकसान होगा, और आज भी कटु सत्य यह है कि जहां अभी बोला गया कि 86% छोटा किसान है
1: जी,
2: वो उसको सीएससीपी से कोई मतलब नहीं है, उसका खरीदारी कुछ नहीं हो पाती है। आज हमारे देश के अंदर मुश्किल से 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां खरीदारी की कुछ थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था भी नहीं कह सकते उसको, और इसलिए जब तक खरीदारी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, सीएससीपी घोषित करना अपने लिए समाधान मानना है कि हमने किसानों के लिए कुछ किया, किसान तक वो बात पहुंचती नहीं है
1: जी।
2: पंचायत स्तर तक जब तक खरीदी अच्छी नहीं होगी तब तक वो एमएसपी का पूरा लाभ भी किसान को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित करें, साथ में खरीदारी की भी चाक चौबंद
1: किसानों को उस दायरे में तो लाएं, किसान उसमें हो तो सही। ये बात जो प्रभाकर जी ने किया, रामलाल जी मैं आपसे, क्योंकि आप तो इस विषय पे बहुत लिखते रहे कैसे लाभकारी मूल्य दिलवाया जाए, आपको क्या लगता है कि एमएसपी से किसान का भला होता है कुछ?
3: प्रोफेसर हक साहब
1: जी,
3: जिन मापदंडों की चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले अन्यायकारी वो मापदंड है
1: जी,
3: जिनके कारण से किसान को एमएसपी मिली ही, एमएसपी से लाभ मिल ही नहीं सकता। मैं ये कहता हूं, दुनिया का हर उत्पादक अपने उत्पाद का मूल्य तय करता है लागत पर लाभांश जोड़कर, यही फार्मूला है
1: बिल्कुल।
3: और किसानों के लिए जो फार्मूला दिया उपभोक्ता पर क्या फर्क पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा?
1: सबसे बड़ा उपभोक्ता खुद किसान है,
3: उपभोक्ता है ही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा, महंगा भी क्या फर्क पड़ेगा, कच्चे जो कच्चा माल मिलता है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, सभी ठेकेदारी हमारी है क्या? और यदि ये फार्मूला लागू करना है तो हम तैयार हैं, यही फार्मूला औद्योगिक जगत के लिए लागू कर दो। ये नहीं हो सकता, औद्योगिक जगत को तो कॉस्ट और प्रॉफिट के आधार पर आप फार्मूला देंगे, और हमारे लिए 10 तरह के बाध्यकारी मापदंड अपनाएंगे। ये जो अन्यायकारी मापदंड है सबसे पहले बदलने की जरूरत है इन अन्यायकारी मापदंडों को। इसलिए मापदंड होना चाहिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जितनी लागत आई उस पर लाभांश जोड़ो और कीमत तय करो। जब तक ये नहीं होगा तब तक एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हो ही नहीं सकता। ये अब तक छलावा सिद्ध हुआ है, आगे भी ये छलावा सिद्ध होगा, और हर सरकार किसी भी पार्टी का ही हो वो किसानों के लिए उनका उपजों का लाभकारी मूल्य मिले इसके प्रति गंभीर ही नहीं है।
1: सही बात।
3: इसलिए मैं एक कॉट करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, जिन्होंने 2003 में लाल किले से घोषणा की थी, हम किसानों के लिए ऐसा आयोग बनाएंगे जैसा चुनाव आयोग है, उसके लिए संविधान में संशोधन करेंगे, वो ही पूरा नहीं कर सके। तो यहां तो घोषणा तो हो जाती है, उनका जो क्रियान्वित आते आते तो वो जो किसान आयोग निकला वो तो कुछ नहीं था। तो जिस किसान आयोग ने कल्पना की थी वो किसान आयोग नहीं बन पाया, और अभी जो भी एमएसपी तय हुए इस वर्ष भी
1: जी,
3: और जिसका प्रचार किया जा रहा है धान पर 50 रुपए की बढ़ोतरी, अरे भाई किसमें तुमने बढ़ोतरी की हमको तो समझाओ। देश में एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है 17%। इस आधार पर 2014 में कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया गया।
1: बिल्कुल सही,
3: हम तो भाई इसी देश के नागरिक हैं, हमें क्यों छोड़ते हो, हमें भी 17% लाभांश दो ना। अभी सारी एमएसपी की सूची देख लो, अभी जो घोषित की है कृषि में भी बढ़ोतरी
1: 3%
3: 9% ज्यादा नहीं है, केवल जो दलहन है उस पर 9% 9.5%। और ये जिसका अभी प्रचार किया जा रहा है 200 रुपए बोनस दे दिया, अरे 500 तो 9010 में दिया था, नई बात क्या किया आपने। और ये तो 1965 जब से न्यूनतम समर्थन हुए तब से दिया जाता रहा अलग अलग फसलों अलग अलग। तो आप दलहन की बात करते हो, प्रति वर्ष आया जो दलहन का और तिलहन का दोनों मिलकर 73,834 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, विदेश में भेज देते हैं। और हमारा देश का किसान है जिसको मूंग लागत से कम बेचना पड़े, उड़द लागत से कम बेचना पड़े, अरहर लागत से कम बेचनी पड़े,
1: पर उपभोक्ता के लिए तो दाम बहुत ज्यादा है।
3: हाँ निश्चित, हम ये कहना चाहेंगे हमसे दाल खरीद मूंग खरीदा जाता है 40 रुपए किलो, पिछले वर्ष जो लागत उसका एमएसपी था 40 रुपए किलो हमसे खरीदा गया और उपभोक्ता को मिली 120 रुपए किलो दाल। अरे भाई मूंग को दाल बनाने में करने क्या पड़ता है, एक मूंग के दो टुकड़े करो वो दाल हो गई, कितनी लागत आएगी, 1 किलो पे 1 रुपए मान लो 10 रुपए मान लो, तो आप 40 का 50 वसूल कर लो। तो जहां उपभोक्ता लुट रहा है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसका हम ध्यान हटाने के लिए सारा दोषारोपण कर देते किसानों पर और कहते हैं किसानों का एमएसपी बढ़ गया इस कारण से गरीब उपभोक्ता मारे जा रहे हैं। अरे गरीब उपभोक्ता को तो वो बिचौलिया मार रहे हैं जो 40 रुपए में मूंग खरीद कर 5 रुपए भी खर्च नहीं करते और
1: 120 रुपए
3: 80 रुपए का फायदा लेते हैं। अभी हमारा टिंडा की कहानी बताऊं आपको
1: जी,
3: टिंडा जिसने उत्पादन किया उसको मिला 4 रुपए, जो उपभोक्ता खरीद रहा है 20 रुपए से 40 रुपए तक, यानी जिसने टिंडा पैदा किया खेत उसका पैसा उसका जमीन उसकी मेहनत उसकी दिमाग उसका और पूरा वर्ष उसका, उसको तो मिला 4 रुपए लागत भी नहीं। और जिसने टिंडा इधर खरीदा इधर रखा 1 किलो में 16 रुपए का लाभ,
1: टिंडा वगैरह तो, लेकिन उसका तो एमएसपी तय भी नहीं होता ना।
3: तो मांग कर रहे ना कि हर फसल का 109 फसलें हिंदुस्तान में 109 फसलों का तय हो एमएसपी
1: जी।
3: तो जब तक सब, और ये जो बात करते हैं कि भाई ये आपस में कोई फसल गेहूं का चावल बढ़ गई, अरे बढ़ तो इसलिए गई, तुम इनका सबका एमएसपी घोषित करो ना। आप 109 फसलों का घोषित करो तो अपना आप फसलों में अपना आप संतुलन हो जाएगा, अपना आप सामता हो जाएगी, आप वो तो करना नहीं चाहते। और फिर एक जो पक्ष और है अनुराग जी,
1: रामपाल जी इस पे आएंगे क्योंकि पक्ष बहुत हैं और अभी सारे उठाने हैं, आपने कई मुद्दे बताए। ये जो चर्चा हमारी रामपाल जी से हो रही थी, आपने सुना कि वो तो एमएसपी पे ही पूरा सवाल उठाते हैं, जो क्राइटेरिया हमें डॉक्टर हक साहब ने भी बताए उस पे और चर्चा करेंगे। थोड़ा और समझना पड़ेगा कि ये फसल का जो हम मूल्य तय करते हैं इसके क्यों तय करते हैं, पहली बात तो क्यों उसको हम बाजार की ताकतों पे नहीं छोड़ सकते, उसका नुकसान किसान को होगा या फायदा होगा इसको भी समझेंगे कि इससे किसानों को क्या लाभ।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: हुआ बात इसमें जो निकल के भी आ रही है कि बहुत कम किसान हैं जो एमएसपी का लाभ ले भी पाते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो इसमें बहुत सी चर्चाएं हैं। अभी जैसे ये भी पता लगा रहा है कि बहुत सी फसलें तो एमएसपी में आती नहीं हैं, उनके दाम किसान को कम मिलते हैं, उपभोक्ता को ज्यादा मिलते हैं, जो आती भी हैं वो भी किसानों से कम दाम पे ली जाती है, उपभोक्ता को उसके कई गुना ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। ये पूरा एक गड़बड़ी सी है जो पूरी प्रणाली में बनी हुई है। इस पे चर्चा जो है हम अपनी जारी रख रहे हैं और कई और मुद्दे हैं जो आते जाएंगे इसमें। तेवतिया जी, जैसे रामपाल जी ने बताया कि एमएसपी तो किसानों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, उनको उसका कुछ भी लाभ जो है वो नहीं मिल रहा है, आप क्या सोचते हैं इसमें?
5: रामपाल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा, ध्यान आकर्षित किया है। एमएसपी एक भ्रामक शब्द लगता है मुझे। कोई भी व्यापार करता है, दुकान करता है, वो लाभ के लिए करता है।
1: बिल्कुल सही।
5: अगर उसको किसी काम में लाभ ही नहीं है वो क्यों करेगा?
1: बिल्कुल सही है। बहुत से किसान इसलिए, अब तो नया आंकड़ा बता रहा है कि 40 से भी ऊपर फीसदी लोग हैं जो खेती से अलग होना चाहते हैं।
5: किसान के पीछे भी एक परिवार है, खेती करना ही काम नहीं है। आपने लागत मूल्य लगा दिया, उसको उसका प्राइस दे दिया, बाकी परिवार को कहां भेजे वो? उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं, परिवार को पढ़ाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, उसी खेती में से। तो अगर लाभ नहीं है तो खेती का मतलब क्या रह गया? इसलिए किसान पीछे, इसलिए किसान का बेटा खेती करना नहीं चाहता।
1: बिल्कुल सही।
5: इसलिए पूरे देश का कोई भी आदमी अपना काम छोड़कर के खेती करना नहीं चाहता, क्योंकि लाभ का काम है ही नहीं। खेती 50 रुपए बढ़ाए हैं, वो तर्क क्या है? 55 क्यों नहीं बढ़ाए, 45 क्यों नहीं बढ़ाए? 50 रुपए जो बढ़ाए हैं उसके पीछे तर्क क्या है बढ़ाने का? कौन सा गणित है?
1: किसान की लागत जो है तेवतिया जी, क्या इस 1410 रुपए, 1450 रुपए जो भी मिलेगा दाम, उसमें पूरी हो जाती है?
5: नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, आसपास भी नहीं है।
1: और अभी का जो समय है जिसमें हम, एक आशंका है कि बारिश भी हो सकता है, कम हो तो लागत और बढ़ सकती है किसान की, ऐसे में क्या इतना मूल्य जो है वो?
5: अगर कुछ भी नहीं होता है, फसल को कीड़ा भी नहीं लगता है, तब भी नहीं है। अगर वो लग गया तो फिर तो बात ही अलग है, और कई गुना उसकी लागत बढ़ गई है खेती की। कम, और खेती तो सरकार भी कराती है, उसके बड़े बड़े फॉर्म है
1: जी,
5: उनको खुद पता है कितना उसमें लाभ होता है, कितना पैदा होता है, उसको वो क्यों सब्सिडी देती है? जितने सरकारी फार्म है, सरकार उनको बहुत ज्यादा सब्सिडी देने के बाद में उनको जिंदा रखे हुए, वरना उनके फार्म बंद हो जाएंगे। सरकार को देखना पड़ेगा कि जो इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है,
1: उसका मतलब तेवतिया जी यही है कि कम से कम इतना मिलेगा, इससे ऊपर जो,
5: लेकिन मैं कहता हूं ये अधिकतम मूल्य है, किसान को इससे ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार कहती है न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैं कहता हूं ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, इससे ज्यादा किसान को मिलेगा। कायदे में यह होता है कि इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी, अगर उसके नीचे मूल्य जाता है तो सरकार उसको खरीद लेगी। लेकिन मैं कहता हूं इससे ज्यादा कहां आज तक बिका है
1: जी,
5: इससे ज्यादा किसान को समर्थन मूल्य मिला ही नहीं, ये अधिकतम समर्थन मूल्य है, ये न्यूनतम नहीं है। ये बड़ा भ्रम का शब्द है, इसको समझना पड़ेगा।
1: तेवतिया जी हमारे कॉलर हैं उड़ीसा से, वो कुछ बताना चाह रहे हैं जी। हेलो, हेलो,
6: हाँ जी
1: जी, आप कुछ हमसे बातचीत करना चाह रहे थे एमएसपी पे, बताइए आपका शुभ नाम क्या है?
6: तुलसी के जेना है।
1: हाँ जेना जी, आपको क्या लगता है एमएसपी कितना बढ़िया रहा?
6: बहुत बढ़िया रहा, ये किसान को लिए अच्छा दिन आ गया, जो हमारे भी उड़ीसा प्रदेश में वो सारे भारत में जो किसान के लिए जो रेट बढ़ा है, असिस्टेंस बढ़ा है, इसलिए वो किसान को लिए अच्छा दिन आ गया
1: जी। अच्छा जेना जी, आपको धान की प्रमुखता से, आप खेती जो है मुख्यतः तो धान की करते होंगे, चावल की खेती करते होंगे?
6: हमारे यहाँ पर ज्यादा चावल की खेती होती
1: है जी, तो चावल का जो एमएसपी में जो इजाफा हुआ है उससे किसान जो है वहाँ खुश हैं?
6: बहुत खुश है, बहुत खुश है, 50 रुपया बढ़ा है
1: जी
6: चावल के लिए, इसलिए किसान बहुत खुश भी है।
1: जना जी, जो लागत है वो आराम से लागत निकल के और लाभ भी हो जाता है इस दाम में?
6: लाभ तो इतना नहीं है, लेकिन जो पहले नहीं था वो जो असिस्टेंट मिला है ज्यादा 50 रुपया है मिला है, इसलिए तो थोड़ी सी किसान को लिए लाभ है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद जना जी हमसे बात करने के लिए। संतोष जी, जो जना जी से भी बात हुई, ये तो एक खुशी की बात है कि चलिए कुछ बढ़ के मिला, लाभ कितना होता है कितना नहीं वो एक बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि एमएसपी से कितना फायदा किसानों को होता है?
7: अनुराग जी, इससे कितना लाभ होगा या हो रहा है ये विषय नहीं है, विषय यह है कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया
2: जी।
7: आज 50 रुपए मिले हैं, कल हो सकता 100 हो जाए, 150 हो जाए। और मैं हक जी की बात से भी सहमत हूँ, और चूंकि किसानों के बीच में मैं काम करता था और मैं भी किसानों के बीच में जाता था कि भैया किसी भी तरह से अपना समर सेबिल लगा के आप धान की खेती मत करिए। तो आपने जो कहा कि हो सकता है कि सरकार की मंशा ये भी हो कि थोड़ा सा धान कहीं ना कहीं हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है और तमाम तरह के ये हमें लगता है हर जनपद में 2-4 ब्लॉक ऐसे होंगे जहां पे ड्राई जोन घोषित कर
1: दिया, डार्क जोन पे चला गया, पानी बहुत नीचे
7: चला गया। तो शायद कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जरूर रही होगी कि धान पे एमएसपी ज्यादा ना बढ़ाया जाए, शायद मुझे ऐसा लगता है।
1: संतोष जी ने भी कहा ये थोड़ा समझ आता है कि गेहूं धान के चक्र से किसान को निकलना होगा, विविधीकरण अपनाने की बहुत समय से बात चली कि डाइवर्सिफाई करें, और उसमें दलहनी फसलें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मिट्टी को भी जो है वो उर्वर बनाती हैं, और उसके अलावा छोटा ही किसान आमतौर पर सीमांत किसान ही थोड़ा बहुत डालने लगा लेता था, बड़े किसान भी अब उस ओर आकर्षित होंगे। उस हिसाब से जो 200 रुपए का बोनस दिया गया है वो एक लाभकारी चीज नहीं है किसानों को दलहन की ओर मोड़ने के लिए?
0: मैं इसमें दो बातें आती है, एक तो कॉस्ट के हिसाब से देखना, लागत के हिसाब से, दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन का जो नीड है वो इस हिसाब से, और तीसरी बात है कि जैसे इन्होंने कहा हमारे रामपाल जी ने कि अभी जैसे अपना एमएसपी फिक्स किया 4,850 रुपये मूंग का, और मार्केट में आज के दिन में अगर प्राइस देखे मूंग के दाल का तो 12,000-13,000 करके है क्विंटल, है ना। ये जो गैप है तो वो गैप क्यों है
1: जी?
0: इस गैप के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? किसान तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना
1: जी।
0: तो किसान को अगर आप कंज्यूमर से को कहते हैं कि खरीदे 12,000-13,000 रुपये क्विंटल में, तो 10,000 रुपये क्यों नहीं दे देते किसानों को? वो फिर जाएंगे पल दालों की ओर। दूसरी बात एक और है इसमें
1: जी,
0: कि पंजाब और हरियाणा में खास करके मैं जहाँ तक जानता हूँ, पंजाब में तो मैं कई काफ़ी फार्मर से इंटरेक्ट भी करते रहा, उनकी डिमांड था कि और एक्सपर्ट कमेटी के उनकी रिकमेंडेशन भी है कि एक तो दाल और दूसरा मेज मक्का,
1: मक्का
0: पंजाब में काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है और मगरमच्छ के दाम अच्छा किया जाता है। इसमें भी मक्का को उतना इनकरेजमेंट नहीं दिया, पहले जैसे ज्वार बाजरा मक्का ये तीनों का एक करीब करीब प्राइस होता था, और मक्का को अगर आप थोड़ा सा और इनकरेज करोगे तो उसका मक्का का डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज के लिए चाहिए उसको,
1: सिरप वगैरह बनता है, शुगर सिरप बनता है, सब कुछ
0: बहुत कुछ बनता है, मतलब ऐसा कुछ हंड
2: निकलता
1: है, पोल्ट्री फीड वगैरह सब,
0: पोल्ट्री फीड में तो डिमांड है ही, तो मक्का को एनकरेज किया जा सकता था और उसके लिए थोड़ा सा 15 रुपया बढ़ोतरी नहीं करके कम से कम 50 करते, तो ज्वार में अगर 40 किया तो उसमें 50 करना चाहिए था, तो उस तरह से एक बैलेंस थोड़ा सिग्नल।
1: एक चीज जो रामपाल जी ने भी सवाल उठाया कि जब हम किसानों के लिए तय करते हैं तो बहुत सारे क्राइटेरिया, आपने बोला क्राइटेरिया उसमें यह भी है कि गोदामों में कितना पहले से पड़ा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: यानी किसान अगर अधिक उपज कर देता है तो उसको दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, उसको जो किस्में दी जा रही हैं कि ये उन्नत किस्में हैं ये आपको ज्यादा उत्पादन देंगे, वो लगा के अगर ज्यादा उत्पादन कर ले तो मरता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम जानते हैं कि बहुत से विकसित देश हैं जो सीधी सब्सिडी देते हैं, उनका गेहूं भारतीय किसान जितना गेहूं पैदा करता है जितनी कम कीमत में वो नहीं हो सकता पर उनका सस्ता है, उसके बावजूद हम उस बाजार को भी ध्यान में रख रहे हैं, क्या ये क्राइटेरिया गलत नहीं है?
0: ये बिल्कुल गलत है, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो शुरू से इस बातों का खिलाफ रहा और मैं ये कहूंगा कि दुनिया में कहीं भी
2: नहीं, लेकिन हमारा इसमें ही कहना है कि ये क्यों आप सोच रहे, जो पैदा कर रहा है उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: वही को मिल नहीं रहा वो मर रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार आजू बाजू चारों तरफ घूम रहे हैं, ये कौन सी नीति है?
5: ज्यादा पैदा हो रहा तो निर्यात क्यों नहीं करते?
0: अच्छा एक तो वो है, दूसरी दो बातें इसमें, एक तो है जैसे आपने निर्यात की बात
1: कहा, मेरे को ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आके इसी चर्चा को आप ये विचार को थोड़ी देर रोक लीजिए, आप इसे शुरू करेंगे।
0: ठीक,
1: देखिए एमएसपी पे चर्चा हो रही है और बहुत से मुद्दे हैं और थोड़ा हमें भी समझना होगा कि कैसे एमएसपी दिया जा रहा है किसानों को, जैसे कई किसानों के फोन भी आए, किसान खुश भी है, कुछ ना मिलने से कुछ मिल रहा उसी पे हो सकता है उसे संतुष्टि हो, लेकिन उसमें बहुत से मुद्दे हैं उनको समझते हैं।
4: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: पे और इससे किसानों को क्या लाभ हो रहा है, इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा और समझते हैं इस मुद्दे को और देखते हैं ये लघु फिल्म।
2: कृषि उपज के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना आवश्यक है। इससे अत्यधिक उपज होने पर दामों को नीचे गिरने से रोकने में मदद मिलती है और साथ ही बिचौलियों के चंगुल में भी किसान फंसने से बच जाता है और भुगतान तो सुनिश्चित रहता ही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि NSSO का एक सर्वेक्षण कहता है कि देश के करीब 40% किसान खेती छोड़ने को तैयार है। क्यों मंडियों तक किसानों की पहुंच कम है? क्यों करीब 30-35% ही सरकारी खरीद होती है और बाकी निजी कारोबारियों के भरोसे छोड़ दिया जाता है? अगर हमारी विपणन नीतियों में कुछ खामी के कारण हमारे भंडार खाद्यान्न से भरे रह जाते हैं तो इसमें किसानों का क्या दोष? क्या इस बात का बहाना लेकर हम बढ़ती महंगाई के बीच MSP में इजाफे को नकार सकते हैं? जो फसलें MSP के दायरे से बाहर हैं, जैसे अंडे, दूध, सब्जियां, फल आदि, उनके दाम MSP के दायरे में आने वाली फसलों की तुलना में कई गुना बढ़े हैं, तो फिर महंगाई का दोष MSP के सिर क्यों? जिन राज्यों में फसल खरीद में निजी कारोबारी अधिक हैं, वहां के किसानों को सरकार द्वारा तय MSP से काफी नीचे दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ता है। MSP ने किसानों को अच्छे दाम दिलवाने में सार्थक भूमिका निभाई है, लेकिन इसका लाभ आज भी करीब 70% किसानों को नहीं मिल रहा है। MSP की अवधारणा में शायद कोई कमी न हो, लेकिन इसे तय करने के साथ खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है। इस सब के बीच एक राय ये भी बन रही है कि MSP के कारण किसान उन्हीं फसलों को उगा रहे हैं जिनके दाम अच्छे और सुनिश्चित हैं, जिससे विविधीकरण न होने से कीटों का प्रकोप, अधिक संसाधनों की आवश्यकता, मिट्टी की घटती उर्वरता जैसी कई परेशानियां सामने आ रही हैं और साथ ही किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो रही है। अब इन तर्कों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन क्या वाकई खेती को बाजार की ताकतों के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए या संसाधन विहीन किसान की मदद के लिए MSP का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है? खेती को अगर लाभकारी बनाना है तो MSP अहम है। जरूरत अधिक सरकारी खरीद केंद्र खोलने की है, और वो भी ग्राम या पंचायत स्तर पर, क्योंकि मंडी तक जाकर MSP का लाभ लेने की क्षमता हर किसान में नहीं है और परिवहन लागत को बचाने के लिए भी अधिकतर किसान अपने खेत में ही कृषि उपज किसी कारोबारी या निजी कंपनी को बेचने के लिए विवश है और कई मामलों में अगली फसल की तैयारी में देरी के कारण भी किसान औने पौने दामों पर फसल बेच देता है और गरीबी व कर्ज के चंगुल में फंसता चला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के करीब 14 करोड़ किसानों की आवश्यकता है और सभी को इसका लाभ पहुंचे ये सुनिश्चित करना होगा, किसानों के लिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, देश के लिए।
1: ये जो MSP पे बात हो रही है, देखिए आपने देखा कि कितने मुद्दे से जुड़े हैं। बात एक ये भी है कि जब 80% किसान इस दायरे से ही बाहर हैं तो MSP जो घोषित किया जाता है उसका लाभ कैसे मिलेगा? देखिए बहुत से आज भी देश में ऐसे किसान हैं जो MSP से काफ़ी नीचे दामों पे अपनी उपज को बेचते हैं और ये हम जानते हैं गलत है, गैरकानूनी भी है कई जगह, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। उसके कई कारण हैं। देश में 86% किसान जो हैं छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि वो अपनी छोटी जो उनकी उपज है उसको ले जाके कहीं मंडी में बेचें। उसमें तो खर्चा परिवहन का ही बहुत हो जाएगा, आने जाने का ही बहुत हो जाएगा, तो वो भी अपने पास के किसी को दे देते हैं, वही आगे जाके बेच के आए। बहुत सी बातें हैं जो इससे जुड़ी हैं। हमारे साथ सुभाष निगम जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। निगम साहब आपको क्या लगता है कि ये जो MSP है ये कितना किसानों की मदद कर पाया?
3: किसानों की ज्यादा मदद नहीं हो पाई है और इस वर्ष भी जैसे 12 जून तक 2.46 लाख टन जो है हेक्टेयर में दलहनी फसलों को लगाया गया है। सरकार ने जरूर ये जो
1: 200 रुपए का बोनस दिया है
3: तो उनको उम्मीद है कि ये तीनों प्रमुख जो दलहन फसलें हैं ये उड़द मूंग अरहर का इसकी तरफ लोग ज्यादा ध्यान देंगे, किसान इसकी खेती बढ़ाएंगे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भी यह कि जो इन तीनों दलहनी फसलों की जो नई किस्में जो ज़्यादा पैदावार देती हैं उसकी तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित होगा और शायद वो ज़्यादा पैदावार करके दलहन की बढ़ा लें। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है दालों का आयात करने पे का फैसला लिया है, ये खुद ही स्पष्ट कर देता है कि दलहन फसलें जो है हमारे यहाँ मांग से बहुत
1: नहीं बढ़ेगा।
3: हाँ, एकदम बढ़ेगा भी नहीं और मांग कहीं ज्यादा है उसके, उसको देखते हुए जो है हमारे यहाँ उत्पादन जो है उतना नहीं हो पा रहा है और ये पिछले कई वर्षों से हो रहा है।
1: ये एमएसपी की जहां तक बात है निगम साहब, और अन्य फसलों की भी अगर बात करें तो उन फसलों में क्या एमएसपी का लाभ किसान ले पाते हैं जब इतने लोग ही एमएसपी से नहीं जुड़े हैं? किसान 80% तो बिल्कुल अलग है, हो सकता है और ज्यादा हो यह आंकड़ा, तो उसका फिर कैसे हम एमएसपी से कुछ लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है ये आकलन कैसे करें?
3: जैसा कि मैंने अभी कहा था कि हमारे यहाँ जो किसान है लघु और सीमांत किसान जो है उनका 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं
1: जी,
3: और उसमें भी जब परिवार बढ़ रहा है तो और टुकड़े होते चले जा रहे हैं
1: जी,
3: तो उसकी वजह से क्या है कि ये ना खेती और नई युवा पीढ़ी जो है वो खेती पे ज्यादा उनका लगाव भी नहीं है, वो खुद ही खेत से पलायन कर रहे हैं, शहरों में आके नौकरियां कर रहे हैं अपने, तो उसकी वजह से है ना ये नहीं हो रहा। और फिर दूसरे किसान का भी जो बिचौलिए जो होते हैं जो उसके साथ लूट मार होती है मंडी में, उसके साथ जो धोखाधड़ी होती है ये सब, तो उससे बहुत परेशान होता है किसान, खुद ही बिजली पानी इससे परेशान है और वो जो है अपने जो ये कारपोरेट घराने वगैरह जैसे हैं
1: इसमें भी तो कई शिकायतें हैं। कई जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखा जो पूरी तरह फेल हो गई है, वहां किसानों को वो पैसा नहीं मिला,
3: नहीं मिला।
1: और ये क्या कल को ऐसा तो नहीं कि आप एक सिस्टम से बाजार उनके हाथ में जाएगा उसके बाद मोनोपोली शुरू हो जाएगी? ये भी तो एक जो है हमेशा संदेह रहता है कॉर्पोरेट के साथ,
3: बहुत बड़ा जो है ना,
1: तो उसमें एक मुद्दा यही है कि एमएसपी से कैसे फायदा
4: ही चाहिए। कॉर्पोरेट घराना कभी भी खेती में आएगा कोई लाभ नहीं होने वाला।
3: बिल्कुल जी,
4: आखिर हमने समर्थन मूल्य इसलिए घोषित करना शुरू किया कि व्यापारी उनकी लूट मार करते थे
1: जी।
4: हमने एपीएमसी कृषि उपज मंडियां इसलिए शुरू की कि वहां पर एक सामने सबके सामने सब कुछ स्पष्टता से हो, और आज फिर से कारपोरेट घराने यदि घर पर जाकर खरीदारी कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बीच में लेकुना फिर से आ रहा।
5: उसका एक समाधान हो रहा है।
4: एक बात और केवल मैं कहना चाहता हूँ, जो एमएसपी घोषित करता है उसने खरीदारी की भी गारंटी लेनी चाहिए,
1: ये सबसे जरूरी
4: है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
5: जब सारी वस्तुओं पर
1: आप हक साहब इसमें क्या सोचते हैं, क्योंकि किसान अपनी चीज बेचे तो उसको वो केंद्र भी तो खुले होने चाहिए ना, कपास का
6: बिल्कुल सभी चीजों का अगर लोकल लेवल पे केंद्र नहीं होगा खरीदने की और व्यवस्था नहीं होगी उसको ट्रांसपोर्ट स्टोरेज का तो दिक्कतें आएगी, तो पहला तो वो जरूरी है और मेरे ख्याल से करना चाहिए, सरकार ने कहा भी है कि हम करेंगे और करना चाहिए।
4: जो कम दाम पर खरीदता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
6: अच्छा, दूसरी बात है जैसे मार्केट का बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने भी कहा कि मार्केट के ऊपर अपने छोड़ा तो मार्केट एक्सप्लॉइट करते थे, इसीलिए ही एक्चुअली सारा सिस्टम डेवलप किया गया था। लेकिन अगर इस सिस्टम को आप परफेक्ट नहीं करेंगे तो वो तो आएंगे, वो भी आएंगे, और उसको रोकने के लिए रोकना भी जरूरी है। क्योंकि पहले तो आज के दिन में सभी लोग कहते हैं भाई मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट टेक्स क्या, तो फिर गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है?
5: नहीं भट्ट साहब, इसमें मेरा एक
6: क्वेश्चन ये है कि मार्केट हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं चाहते, लेकिन मार्केट में इस तरह का लोग जब एक्सप्लॉइट करें, अभी देखिए अभी क्या हुआ, दलहन के दाम आप मूंग का दाल जो है आप 40 रुपये किसान को देते हैं, आप बाजार में आज का दाम 13,000
5: इसका हिसाब है अनुराग जी, उसका सबसे ये है कि जैसे आपने हम कहे कारपोरेट को आप खरीदारी से बाहर कर दो, क्यों कर दे,
1: एक विकल्प किसान के पास होना चाहिए।
5: नहीं, सारी दुनिया खरीदे, कारपोरेट हो चाहे सामान्य हो, सबको खरीदारी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन एमआरपी लिख दो, आप जब सारी चीजों पर आप अधिकतम मूल्य
1: विषय से इधर जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है एमएसपी जो है
5: एमएसपी
1: अगर है उसका फायदा किसान को कैसे मिले,
5: एमआरपी लिख करके
7: बताता हूँ,
5: एमआरपी लिख करके
7: एमआरपी
5: एक मिनट आप एमआरपी घोषित कर दो ना।
7: 200 रुपए की चर्चा की गई बोनस की, 500 रुपए बोनस 9-10 में दिया गया था दलहनों पर, और उसी साल मूंग 3670 था एमएसपी, बाजार में बिका 1800, और हमने अच्छा। लगातार किया आंदोलन, हम 2010 से अब तक आंदोलन कर रहे हैं, सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। तो एमएसपी घोषित कर भी देंगे तो किस काम की है जब तक खरीद नहीं हो, जबकि ये सीएसीपी ये कहते हैं ये गारंटेड मूल्य है, ये भारत सरकार की गारंटी है। यदि सरकार से सरकार नहीं खरीदेगी, किसानों को कम दाम में बेचना पड़ा, तो सरकार उसकी अंतरराशि देकर भरपाई करेगी। हमने क्लेम किया पिछले वर्ष ही, 3 फसलें नहीं खरीदने से राजस्थान में अकेले में 11,75,00,000,000 रुपए का घाटा हुआ किसान को। हम मांग कर रहे हैं सरकार से इसको दे, पिछले 5 सालों में 80,00,000,000,000 रुपए का घाटा हुआ अकेले राजस्थान के किसान को 7 फसल नहीं खरीदने से। किस एमएसपी की बात कर रहे हैं हम? इसलिए और ये जो कह रहे हैं हम 200 रुपए हमने दे दिए, जो सरकार प्रचार कर रही है 200 रुपए दे दिए इसलिए दलहन बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तब तो खरीदोगे।
6: हाँ बिल्कुल,
1: खरीदना भी जरूरी है। संतोष जी आपके क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं? किसान जो है उसके साथ समस्या ये है कि एमएसपी की घोषणा तो हो गई, उसने उपज भी ले ली, बेचने के लिए जो केंद्र हैं वहां पर भी तो बहुत गड़बड़ियां हैं।
8: ये
1: पूरा एक साथ मिलके ही होगा।
8: शुरुआती दौर पे ये कह चुके कि एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण है खरीदारी, और चूंकि जहां से हम आते हैं वहां तो हम 2-3 वर्षों 4 वर्षों से देख रहे हैं, बल्कि पिछले 8 वर्षों से देख रहे हैं कि जिन्हें शुद्ध रूप से आप कहते हैं बिचौलिए
6: जी वही खरीदते होंगे।
8: आप आज सूचना के अधिकार में किसी भी तरह से जानकारी कीजिए कि वहां पे कितनी खरीद हुई है, खरीदारी पूरी दिखा रहे हैं और किसान से एक भी दाना नहीं खरीदा गया। तो एमएसपी से ज्यादा महत्वपूर्ण कि हमारा गेहूं वहां खरीदा जाए, हमारा धान खरीदा जाए, हमारी फसल खरीदी जाए।
9: हमारे यहाँ कहावत है बोले सो कुंडी खोले, आपने बोला है आपको खरीदना चाहिए
6: जी। मैं एक काम
8: ये चीज कह चुके ना कि इसके लिए प्रदेश सरकारों को कहीं ना कहीं आगे आना होगा।
7: ऐसा प्रदेश सरकार नहीं, इसमें जो एमएसपी घोषित करता है वो खरीद के लिए जिम्मेदार है, और जो प्रदेशों को दे रखी है वो है विकेंद्रित खरीद योजना, एक आपने लॉन्च की हुई है, उस विकेंद्रित खरीद योजना में कुछ इंसेंटिव देता है सेंटर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इट द बाउंड ऑन ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एमएसपी घोषित करेगा वो खरीदेगा। इसलिए आज एक विषय बना दिया पूरी एमएसपी ने, ये विषय बना दिया ये खरीदे वो खरीदे ये खरीदे, खरीद की जिम्मेदारी किसकी?
1: कई सारी एजेंसी का
8: यही
6: सेकंड जरा, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जब से शुरू हुआ उसका एक पर्पस यही था कि मार्केट में उससे नीचे बिकना नहीं चाहिए, जब भी मार्केट में उससे नीचे जाएगा सरकार को खरीदना पड़ेगा। तो जब सरकार व्यवस्था करेगी उस तरह के खरीदने की तभी खरीदारी होगी। तो वो अभी तक एक्चुअली 2-3 फसलों को छोड़ के बाकी है ही नहीं व्यवस्था। दूसरी बात, हम ये नहीं कहते प्राइवेट वाले ना खरीदे, लेकिन प्राइवेट वाले खरीदे तो कम से कम न्यूनतम मूल्य जो है उससे कम में ना खरीदे, उससे ऊपर दे के खरीदे।
7: इसका तरीका है,
8: मेरा कहना है
1: अभी छोटा सा एक
8: बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है,
6: बिल्कुल
8: किसान बिचौलियों को
1: वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और चर्चा जो है वो एमएसपी पे हो रही है। आप सब जानते हैं बहुत सी बातें हैं जो उसमें उभर के आ रही है, थोड़ा आगे ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एमएसपी का दायरा भी बढ़ाएं और किसान को उसका सही लाभ पहुंचे ये कैसे तय करें। देखिए ये बहुत अच्छी एक खबर रही लोगों के लिए कि एमएसपी में जो खरीफ के एमएसपी आए उसमें दाम बढ़े और 200 रुपए का जो दलहन के लिए बोनस दिया गया वो भी एक अच्छी पहल है, लेकिन बहुत से किसान अभी एमएसपी के दायरे से ही बाहर हैं। अगर एमएसपी का सही लाभ हमें देना है तो उन किसानों को भी उस दायरे में लाना होगा, और उससे भी बड़ी चीज खरीद केंद्र हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रामपाल जी, कैसे आपको लगता है कि एमएसपी की अवधारणा से हमें कोई शिकायत नहीं है, किसान को लाभ हो यही एक कोशिश थी, कैसे वो लाभ पहुंचे इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
7: अनुराग जी, सबसे पहला काम होना चाहिए देश की मंडियों में जो नीलामी बोली शुरू होती है वो शुरू हो न्यूनतम समर्थन मूल्य से। दूसरा, खरीद केंद्र हो प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति। तीसरा, जो ई उपार्जन पद्धति मध्य प्रदेश ने शुरू की
1: जी
7: वो हो सब फसलों के लिए लागू हर स्टेट में। चौथी, यदि सरकार खरीदने में अक्षम रहे, किसी भी प्रकार से खरीद नहीं पाए, तो जितना कम दाम एमएसपी से किसानों को मिला है वह अंतरराशि घाटे की भरपाई के रूप में सरकार दे किसानों को। और एक मैं कोट करूंगा टीटी कृष्णमाचारी, 1964 का उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा सरकार केवल दो काम कर दे, किसान को लाभकारी मूल्य दे दे उसके घर से उसकी फसल खरीद कर ले। तीसरा काम कुछ करने की सरकार को जरूरत नहीं, किसान अपना आप कर लेगा
1: जी। बहुत बढ़िया।

0: कि सरकार से ना तो पैसे मिलने, आज अगर हमसे खरीद लिया तो पैसा मिलेगा 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, उसमें भी कटौती हो जाएगी, जैसे आपने कहा कि 2% इसमें, तो इस तरीके से ये जो
1: वो बाजार की एक बात हो गई निगम जी की, बाजार के तो कई विकल्प देने पड़े। एक डायरेक्ट सेलिंग की भी हम बात करते हैं किसान, और उसकी कोशिश भी हो रही है कि किसान को बेचने के लिए सीधे बाजार मिले, लेकिन मुख्य बात इसमें यही है MSP के दायरे में सब आ पाए।
0: इसमें और भी फसलें आनी चाहिए, है खाली यही नहीं है कि आपने जो है गिनी चुनी जो 2-4
2: सब्जियां हैं
0: है, वो ही आपने कर दिया। अब प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाता है, किसान वो इतना परेशान हो जाता है, उसके सारी फसल चौपट हो जाती है। अब पता चला कि उसने फसल बोई भी कर्ज लेके वगैरह, अब आपने आगे MSP भी घोषित कर दी, जब उसकी फसल ही नहीं है तो वो क्या बेचेगा और क्या करेगा,
1: और उसमें कृषि बीमा वगैरह ये सब बातें भी उसमें आ रही हैं।
0: हालांकि इन्होंने अभी सरकार ने उत्तर प्रदेश हरियाणा और राजस्थान में किसान जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, SMS से भी प्राकृतिक उसकी मौसम की जानकारी देनी वगैरह शुरू की है, लेकिन ये कितने किसान, हमारा किसान ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। अब आपने तो कह दिया जी कंप्यूटर पे या फलाने उस पे आ जाएगी, वो उसको पता ही नहीं, वो तो अपने पुराने परंपरागत जो तरीके हैं उन्हीं को अपना रहा, उसी से खेती कर रहा है, उसी
1: उन सबसे जोड़ने के जो प्रयास हैं वो चले जाए। तो ये सब जी आपको क्या लगता है कि MSP जो है कितना प्रासंगिक है, कितना सार्थक, उसको और कैसे बनाए और क्या तरीके होने चाहिए?
3: देखिए जो आदरणीय रामपाल जी ने कहा है और बाकी सब लोगों ने कहा है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। और इसके अंदर मेरा जो आज बार बार चर्चा आ रही कि दलहनी फसलों की हमारे यहाँ कमी है
1: जी।
3: तो उसका जो दूसरा पक्ष है, हमारे यहाँ के यहाँ पर जो जलवायु है वो गेहूं और चावल के लिए बहुत अनुकूल है, दलहनों के लिए उसके प्रकार के जितने खोज होकर के उनको जितनी सुरक्षा चाहिए और कुल मिलाकर के किसानों को जितनी सुरक्षा चाहिए वो आज उपलब्ध नहीं है। किसान पग पग के ऊपर खतरे से खेलता रहता है, और इसलिए उन सारों को भी इसके अंदर जोड़ करके उसका आकलन जब होगा, और जब तक उसको खरीदने की गारंटी नहीं रहेगी। अभी ये कहा गया कि कुछ कुल 24 फसलों की यहाँ पर MSP घोषित होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जबकि 109 फसलें ऐसे, अब मुझे समझ में नहीं आता कि हल्दी है, आलू है, प्याज है, ये तो नॉन पेरिशेबल है, कभी खराब बहुत देर में होते हैं, इनकी MSP क्यों नहीं घोषित होती है?
1: और आलू किसान की तो हम जैसा जानते
3: हैं कितनी बुरी, किसानों की तो हम जानते हैं क्या हालत होती है
1: जी।
3: तो इसलिए MSP का दायरा कई अन्य फसलों तक जाना चाहिए, कम से कम जो मुख्य फसलें हैं, चाहे वो बाग बगीचे वाले हों, चाहे सब्जी के अंतर्गत आती सब्जी वर्गी हो, या फिर मुख्य फसलें हों
1: जी।
3: और 100 से आसपास, कुल मिलाकर 100 के आसपास कृषि जिनसों का कृषि समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए
1: जी। हक साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार MSP की घोषणा करे, बहुत अच्छी बात है, खरीदने का भी इंतजाम करे?
4: बिल्कुल करना चाहिए, उसके बिना तो इसका मतलब ही नहीं रह जाता। फिर
1: क्या तरीका है MSP का दायरा और बढ़ाने का?
4: जैसे हमने पहले भी बताया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, पहले तो आपको डिसीजन लेना होगा कि हर एक चीजों का, जब भी मार्केट से मार्केट में उनका दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो आपको खरीदना ही है, और खरीद के आप डिस्पोजल कैसे करेंगे उसका भी एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। राइस एंड व्हीट में सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि तीन चीजें एक साथ साथ हुआ, तो उस समय आपको ध्यान में होगा 65-66 में सरकार ने तीन बड़ी चीज की थी, एक तो CACP को क्रिएट करके न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की, फिर FCI क्रिएट करके उसको खरीद के स्टोरेज करके, फिर PDS का सिस्टम क्रिएट करके उसको डिस्पोज ऑफ करने की बात की, और तीसरा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी हो उस टाइम, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते
1: हैं,
4: आया तो एकाएक फिर रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, तो ये तीनों का फल था। और अभी भी वही ऑब्जेक्टिव है कि हम कई चीजें में अभी भी हम उत्पादन कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी हमारे अभी भी लो है, तो किसानों को इंसेंटिव्स देना है, और इंसेंटिव्स के साथ साथ तभी इंसेंटिव होगा कि पल्सेस का दाम तो आपने फिक्स कर दिया, पल्सेस को प्रोक्योर नहीं करेंगे तो फिर उसका फायदा नहीं होगा किसानों को। इसलिए हर एक, मैं तो कहूंगा हर एक फसलों का इसी तरह से इंसेंटिव देकर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, और प्रोडक्शन खाली बढ़ाने से नहीं होगा, प्रोडक्शन बढ़ाकर आपने मार्केट प्राइसेस कम कर दिया तो फिर किसानों को नुकसान हो जाएगा, तो उनका इनकम सपोर्ट
1: जी
4: के रूप में देना है, इनकम एक उनका इनकम कभी भी कम ना हो, किसी का इनकम कम नहीं होता, अब सरकारी
1: नौकरों
4: का सिर्फ किसानों का ही होता है, हम तो हरदम 10% 15% 17% करके DA भी ले लेते हैं जब दाम बढ़ता है, लेकिन उनका जब चीजों का दाम बढ़ता है, इनपुट्स का दाम बढ़ता है, बाजार में ज्यादा दाम से खरीदना पड़ता है, तो उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं होता। तो मेरे ख्याल से किसानों के लिए एक सहानुभूति पूर्ण जब तक पॉलिसी बनेगी नहीं और एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वे में सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, तो किसानों की स्थिति स्थिति में सुधार नहीं आएगा, और दुनिया में हर जगह इस बात को जानते हैं और होता भी है। आपके अमेरिका में भी फसल नहीं बोने के लिए भी गवर्नमेंट
1: पैसा मिलता है।

0: सकते हैं, फसल इतना मेहनत करके फसल बो के भी उसका अगर राइट प्राइस नहीं मिलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे नीति में, नियत में और लोगों की मतलब सोच समझ में कमी है
1: जी।
0: तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो करना,
1: मेरे ख्याल से कुछ समाधान भी इसमें जो है वो निकले हैं और लोग भी समझेंगे। और मुझे जो इसमें एक बात लगी कि देखिए, किसान की आय बढ़ाने में किसान तो मेहनत कर ही रहा, सरकार भी एमएसपी दे रही, थोड़ा जो खेती से अलग लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। हम महंगाई और उन सब का दोष देके अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। किसानों को दुनिया भर में बड़े देशों में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, सब्सिडी दी जाती है, पैसा दिया जाता है खेती ना करने का भी, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम तो अन्नदाता मानते हैं, हम तो भगवान के तौर पर किसान को देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी हमें समझनी होगी, उनके साथ जुड़ना होगा। और एमएसपी एक मुद्दा है, उससे जुड़े और भी बहुत मुद्दे हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई कि आपको दाम बढ़ा के मिले, एक अच्छी शुरुआत है कि 200 रुपए का बोनस भी मिला दलहन में, और उसमें जो किसान है उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन ये फायदा और बढ़े, इसका दायरा और बढ़े एमएसपी का, ये कोशिश रहेगी। और उम्मीद करते हैं इस सब कोशिश में आप भी हमारे साथ हैं। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।
2: तो किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम ने जेम की अमुए शुरुआत में के देलो के आजनो कार्यक्रम है तो थोड़ुक अलग थावा वालों है, तो बिल्कुल आजना यू कार्यक्रम काफी अलग हतु बाकी कार्यक्रम होती। आजनी इना कार्यक्रम में आपू जानियो के किकम जो आपणो मूल्य है तीनों निर्धारण किकम थाय है, अने आपू वली वाती वाकिफ है कि आप किसान भाई कितरा दुखी है इनी वात था कि जो आपड़ जो मूल्य है हमारा किसान भाई इतनी मेहनत करे है खेतरों में, अने तीनों मूल्य है आपड़ फसलों नो मूल्य इतरो आपू नहीं मळे है, तो कहीं ना कहीं कि आपड़ किसान भाई है हताश थई जाए है, निराश थई जाए है। तो कहीं ना कहीं ये खरी बात हती, अने आपड़ अमल करवानी जरूरत है, आपड़ एमनी की हार मानवानी जरूरत है, आपड़ अमल करवानी जरूरत है। अमल करीन यूं देखवू है कि आपड़ती कहां पर भूल थई रही है, आपुन कहां पर आपुन आपड़ी खुदनी सुधारनी आवश्यकता है, कहां आमुन खदरवानी जरूरत है, तो इन्हीं बातों ने आपड़ ध्यान रखवानी जरूरत है। किसान भाइयों, आजना इना कार्यक्रम में बस इतरूं केम के समय थई गयो है तमारथी विदा लेवानो, तमारथी फेर काल मुलाकात थाय इना समय पर। एतरे बणेला रहो हमारी हाथे रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम नी हाथे जावानी आवाज पर। रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम छावानी आवाज, सभी किसान भाइयों नो बहुत बहुत स्वागत करे है। रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम हंगला किसानों हरू, किसानों नी जानकारी बढ़ावा हरू इना कार्यक्रम नी हमें शुरुआत करी है, अने यो हमारो एक प्रयास है कि आपड़ जावना जो भी किसान है त्या इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी अलग अलग प्रकार नी खेती ना बारा मा जानकारी ले, अने हजू भी कई नी चीजें हैं आपड़ कृषि मा, कई नी फसलें हैं, कई नी कृषि है जे करीने आपड़ किसान भाई है अधिक थी अधिक मुनाफो ली सके, केम के दिन प्रतिदिन आपड़ी जो प्रकृति है तिनमा बदलाव आवता जा रहा है, अने इना बदलाव ने देखते हुए जो हमारी उत्पादन क्षमता है ते कई थी कम थी जाए है, अने निरंतर हमु जो रासायनिक खातरों नो प्रयोग करी रहा है तिनथी जो हमारी जगह है धीरे धीरे भटाती जा रही है, यो हमारी हरू एक संकट है कि आवा वाली पीढ़ी ने आपू हूँ आलू, ते कहीं ना कहीं हंगली वातू ने अगर आपू देखी ते आपड़ किसान भाई है तिना जागरूक करवानी जरूरत है। अगर हमारो किसान भाई जागरूक भी थायो है ते इनो सोल्यूशन हुए इनो निराकरण आपू की कम करी सकी, इनी बात थी आपड़ किसान है त्या इना ज्ञान नो अभाव है आपड़ा किसानों भाई ने, तो एतरे हमू कोशिश करी है रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी हमू प्रयास करी है कि आपड़ा किसानों तक एक्सपर्ट नी राय पुगे, जे विशेषज्ञ है तिनानी वातें हमू रेडियो टांडिया भील ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम ना माध्यम थी किसानों तक पुगाड़ी सकी, अने आपड़ो जो किसान है वो इनी जो जगह नी में जो कमी आवी रही है तीन पासो किकम हदारी सके, अने पासो किकम एक अपनी जगह ने पासो सजीव किकम बनावी सके, तिना बारा मा जानकारी ली सके, तिनी हाते हाते आप हमू चर्चा भी करी है कि कई नी फसल जो है फायदेमंद थी सके हमारे किसान भाइयों ने, केम के अगर आपू देखी थे अधिकतर अपना किसान भाइयों का मक्की देखा है, सोयाबीन देखे जाए, फिर सेकंड आपू दूसरी फसल में देखी थे गऊ ने सणा देखे जाए, तिनी अलावा अगर आपू देखी थे फूलों नो व्यापार जो है आपड़ हाँ घणो कम थई रो है, बाकी अलग अलग प्रकार की खेती है जो घनी कम मात्रा में आपड़ा इना झाबुआ जिला में देखावा मांगे है। तो किसान भाइयों, हमू कोशिश करी है कि जरूरी नहीं मळे कि आपू जो खाद्यान्न જો ફસલે હે તેની જ ખેતી કરીએ, લેકિન તેની અલાવા ભી આપણે જાવવા જગામાં આપણી જગાને આપણું દેખીએ તો અલગ અલગ પ્રકારની કૃષિ ભી સંભવ હૈ. તે કૃષિ કિકમ સંભવતા હૈ તેની ઉપર આપણે કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર હે જાવવામાં તેને માધ્યમથી ભી આપણું તેના તાના વિશેષજ્ઞોને આપણું પૂછી શકીએ કે અમુન કઈની ખેતી કરવી જોઈએ, કઈની જેના કિસાન ભાઈઓને નહીં પતો હૈ કે કઈની ફસલ આપણા હોઈ શકે, કેમ કે ત્યાં અધિકતર નિરંતર જો હૈ રિસર્ચ કરતા રહે હે, સીઝોને કરી કરીને તેની એક પણતારતા રહે કે કઈની ફસલ આપણા એરિયામાં અસર થઈ શકે હે, તેની ડિટેલમાં તેની જાણકારી આપણા કેવી કેના વિશેષજ્ઞો કન ઉપલબ્ધ રહે તો તાંથી ભી આપણું તેનાની મદદથી જાણકારી લઈ શકીએ અને આપણા ખેતરોમાં એનો પ્રયોગ કરી શકીએ. તો કિસાન ભાઈઓ, આજનો જો આપણા ખેતીવાડીનો યો જો વિષય છે તો હે ફૂલોની ખેતી. ફૂલોની ખેતી અગર આપણો કિસાન કરે હે તો એમાં બી ઘણો ફાયદો આપણા કિસાનોને થઈ શકે. તો આજના એના કાર્યક્રમમાં આપણું જાણવું કે કિકમ અને કઈના ફૂલની આપણે ખેતી કરવી જોઈએ અને ફૂલોની ખેતીમાં હું વાતોનો ધ્યાન રાખવો જોઈએ, કેટલું પાણી લાગે, કે કઈની જમીન હોવી જોઈએ અને એની પૂરી સંક્ષિપ્ત જાણકારી આજના એના કાર્યક્રમમાં આપું હું. એટલે કિસાન ભાઈઓ, આપણું આજના એના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને જાણીએ કે ફૂલોની ખેતી કરીને આપણું કિકમ અધિકથી અધિક લાભ લઈ શકીએ.
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
4: देश में फूलों के उत्पादन को लेकर खासा महत्व दिया जा रहा है. आज हमारे बागवान कितने ही फूलों से दोस्ती कर चुके हैं. फूलों से दोस्ती का ये हाथ उन्हें आय भी करा रहा है. खुशबू भरे आकर्षण लिए प्रकृति की ये भेंट एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती रहती है और हर किसी को लुभाती है. इस समय 60 से भी अधिक देश फूलों का आयात करते हैं तो 50 देश इसके निर्यात से जुड़े हुए हैं. प्रमुख पुष्प आयात करने वाले देशों की बात की जाए तो जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क आदि का नाम आता है. इस समय विश्व पुष्प आयात का 96% अंश इन्हीं देशों के आंगन में महकता है. भारत में पुष्प उत्पादन एक उभरती हुई विद्या है. किसानों के एक बड़े वर्ग को अब ये बात समझ में आने लगी है कि खेती केवल गेहूं, चावल, गन्ना, चने की ही नहीं बल्कि फूलों की भी की जा सकती है. यही कारण है कि आज देश में कुछ किसान इसे पूरक फसल के रूप में अपनाते हैं तो कुछ बड़े पैमाने पर मूल फसल के रूप में भी फूलों की खेती कर खासा उत्पादन ले रहे हैं. ताजे सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में पुष्प उत्पादन और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं. इसी आधार पर फूलों की खेती से रोजगार की नई राहें महक उठी हैं.
5: तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से लगातार दायरा इसका बढ़ता जा रहा है और किसान अब इसकी खेती में रुचि ले रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छी आय भी हो रही है. लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना इस क्षेत्र में बाकी है और किसानों के बीच में भी जागरूकता बढ़े इसलिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं. हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है, उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं. हमारे साथ डॉक्टर एस एस सिंधु जी मौजूद हैं जो कि पुष्प संभाग में अध्यक्ष हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में. बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंधु जी. हमारे साथ डॉक्टर वी एस राजू जी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में. हमारे साथ डॉक्टर बी सी कटियार जी मौजूद हैं, आप सीपीडब्ल्यूडी में उप महानिदेशक रह चुके हैं बागवानी विभाग में, आपका भी स्वागत है. और हमारे साथ जीपी सिंह साहब मौजूद हैं जो कि एक प्रगतिशील किसान है, इन्होंने फूलों की खेती को अपनाया है और आज उन्होंने फूलों की खेती से ये कर दिखाया है कि कैसे अगर पूरी इच्छा शक्ति के साथ और वैज्ञानिक तरीकों के साथ खेती की जाए तो इसमें लाभ ही लाभ है. हम सभी से बात करेंगे, एक बार फिर से सभी मेहमानों का स्वागत है. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले सिंधु साहब, मैं जानना चाहूंगी कि मौजूदा स्थिति हमारे देश में फूलवानी की क्या है.
6: देखिए कि हमारे देश में जो फूलों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग इस समय यदि हम देखें तो 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती की जा रही है, और उसमें जो लूज फ्लावर का जो अपना एक शेयर है वो करीब करीब 1750 टन के आसपास है, और कट फ्लावर की यदि हम बात करते हैं तो लगभग वो 5000 टन कट फ्लावर का उत्पादन किया जाता है, और देश में भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खेती की जाती है, और बदलते मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में भी इसमें प्रचलित हैं, और भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के हाई वैल्यू फ्लावर लो वैल्यू फ्लावर किसान उगाकर अपनी अच्छी आय से।
5: डॉक्टर राजू, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हमने रिपोर्ट में ये बताया कि बीते 10 सालों में इस क्षेत्र में बहुत बदलाव आए हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से आप क्या कहेंगे कि इस दिशा में कितनी नई नई वैरायटीज आई हैं और कितना अब इस पर फोकस है?
7: अभी आप देखेंगे जो फ्लोरिकल्चर है अभी इमर्जिंग सेगमेंट है
5: जी
7: फार्मिंग का, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है दूसरे क्रॉप से आप कंपेयर करेंगे। इसमें सेगमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कर्तित फूल है जो बाजार में कट फ्लावर है, इसमें गुलाब में कई किस्में हैं, और जो संरक्षित खेती में फर्स्ट रेड, ग्लैंड गला, ताजमहल जैसे किस्में कर सकते हैं
5: जी जी।
7: और जो लूज फ्लावर्स हैं गुलाब में, लूज फ्लावर्स में ग्रस्सा एंड टेपलेट करके वैरायटी है, काफी एरिया में इसको देसी गुलाब करके उगाया जाता है, और कर्तित फूल जो बाहरी एनवायरमेंट है आउटडोर एनवायरमेंट में जैसे सुपरस्टार है, ग्लैडिएटर जैसे वैरायटी का किसान कर रहे हैं। इसके अलावा उद्यानों के लिए भी बहुत सारे किस्में हैं, हमारे संस्था ने ही बहुत सारे किस्में इसमें निकाले हैं, जैसे पूसा अजय है, पूसा गौरव है, बंजारन है, चिंगारी है, वह रक्तगंधा है, इन किसानों और नर्सरियों के लिए भी ये किस्मों का चयन कर सकते हैं किसान जो है।
5: डॉक्टर कटियार, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि का भी अब स्वरूप बदल चुका है, और किसान जो है वो सिर्फ पारंपरिक खेती नहीं करना चाहता, जहां भी उसे फायदा होगा वो उसे अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत है कि उसे ये विश्वास दिला जाए कि हाँ भाई इस क्षेत्र में अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आपको फायदा होगा। तो अगर फूलों के कारोबार की बात करें तो ये अब कितना उभरता हुआ क्षेत्र है, सेक्टर है, और पहले से कितने आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड भी होता जा रहा है, संगठित भी हुआ है क्या?
8: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आजकल किसान जो है वो बहुत अवेयर हो रहा है और लगातार इस चीज की नॉलेज गेन करता रहता है कि हमको किसमें फायदा है। तो आजकल उसको नजर आ रहा है कि हमको बदलाव में फायदा है, रोज गेहूं चना उगाने से भी उनको शायद लगता है कि हम एक ही चीज को उगा रहे हैं
5: जी।
8: तो वो चेंज हो रहा है, और बहुत सारे किसान आजकल फूल की खेती कर रहे हैं, और इसको देख के आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के आसपास है या किसी और शहर के आसपास है या किसी कस्बे के आसपास है, जहां पे फूलों की डिमांड है और वहां पे आपको फूलों के खेत मिलेंगे
5: जी।
8: अब रही बात ये कि कौन सा किसान किस तरह की चीज उगा रहा है, तो जिसको जिस चीज की जानकारी मिल जाती है शुरू में वो देखता है कि हमारे पड़ोसी ने क्या उगाया है, हमको किस में फायदा है, इससे इसको क्या रिस्पांस मिल रहा है, तो उसी तरह वो आगे बढ़ता है। सबसे जो सरल चीज है जिसमें किसान को आउटडोर खेती में जाके उगा रहे हैं वो है गेंदे की खेती
5: जी जी।
8: तो गेंदे की खेती और गेंदे के फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर किसी शादी ब्याह में, हर किसी पूजा पाठ में,
5: सस्ता भी पड़ता है
8: जी जी, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है और सस्ता भी है और कलरफुल भी है, बल्कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, इसकी तमाम सारी दवाइयां भी बनती हैं, इससे कलर भी बनता है,
5: मुरब्बा भी बनता है
8: जी जी जी, जी। तो इस तरह से किसान जो है बड़ा जागरूक होकर इस समय चल रहा है और वो लगातार नजर बनाए हुए है कि हमको किस तरफ जाना है
5: जी जी। यानी इसका कारोबार भी बढ़ रहा है, जहां एक तरफ फसलों की हम बात कर रहे हैं कि जो क्षेत्रफल है फूलों की खेती का वो बढ़ रहा है, लेकिन बाजार जो है उसके भी नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। मैं चलिए अब सिंह साहब से बात करती हूं जो कि खुद एक किसान है और फूलों की खेती कर रहे हैं। सिंह साहब आप बताइए, तो चलिए हमने जो पढ़ा और जो रिसर्च की उसके आधार पर बात कर रहे हैं क्योंकि, लेकिन आप जो है आप प्रैक्टिकली उससे जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरीके से इसमें लाभ देख रहे हैं और अपने बारे में बताएं कि आप कौन कौन से फूलों की खेती कर रहे हैं?
9: देखिए इसमें मैं जो हूं अभी वर्तमान में क्रैसेंथेमम जिसको गुलदावरी कहते हैं इसकी खेती कर रहा हूं, और ये संरक्षित खेती है, ये पॉलीहाउस के अंदर होती है, और इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो IRA ने डेवलप की हुई है जिनको हम खुले में भी उनका उत्पादन ले सकते हैं, और गुलदावरी का मार्केट जो बाजार की डिमांड है, यहां मैं कहना चाहता हूं कि किसान कोई भी हो जो भी करता है, काम करना चाहता है या कर रहा है, उसको सबसे पहले देखना चाहिए कि बाजार में उसकी मांग किस चीज की है। तो हम जो मांग समय के हिसाब से मांग बदलती रहती है, तो हमें अपने हिसाब से समय के हिसाब से अपनी फसल का चक्र भी बदलते रहना चाहिए
5: जी।
9: तो अभी जो हम गुलदावदी की खेती कर रहे हैं और गुलदावदी में का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज है, इसमें स्टैंडर्ड वैरायटीज भी हैं, स्प्रे वैरायटीज भी हैं और बटन वैरायटीज हैं, तो इसके हिसाब से हम अभी वर्तमान में इसका कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हम ग्लैडुलस जो हमारी पुष्प जो फूलों की खेती का जो ये उद्योग है हमारा, इसमें ग्लैडुलाई का बहुत बड़ा योगदान है और क्योंकि उसके बिना ये मार्केट हमारा अधूरा रह जाता है, तो ग्लैडुलाई की खेती में भी काफी अच्छा फायदा है
5: जी। आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि कितना समय हो गया आप इस क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जो हम फूलवानी की बात करें, आपको कितना समय हो गया और कहां से आपको प्रेरणा मिली इसको लेकर?
9: मैं 97 से,
5: अच्छा 97 से,
9: 1997 से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और इस पूरी जो श्रेय जाता है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को जाता है
5: जी जी।
9: उस वर्ष 2000 में यहाँ पर एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट काम कर रहा था, तो वहां से मुझे ये प्रेरणा मिली, जो हमारे गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं डॉक्टर सिंधु साहब, उनसे ही मुझे उस समय आप देख रहे थे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को वहाँ पे, तो तब से मैंने वहां से ये प्रेरणा मुझे मिली और 1997 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने ग्लैडुलाई की खेती से स्टार्ट किया था। उसके अलावा मैंने कार्नेशन का उत्पादन किया, पुष्प बीज उत्पादन का कार्य भी मैंने किया, ग्लैडुलाई का मैंने काफी बीज उत्पादन का कार्य भी किया है मैंने। वर्तमान में मैं क्रैसेंथेमम का काम कर रहा हूँ गुलदावदी का।
5: कितने क्षेत्रफल में करते हैं आप इसकी खेती और अगर लाभ के हिसाब से बात करें, क्योंकि किसान सबसे पहले यही देखता है कि कितने भी हम साइंटिफिक तरीके उसे समझा लें, लेकिन वो यही जानना चाहता है कि भाई मैं इतने हेक्टर में करूंगा मुझे कितना इसमें लाभ होगा।
9: जो इसमें लाभ तो किसान अगर अपना लगन से करता है और साइंटिफिक तरीके से करता है, उसमें वैज्ञानिकों से समय समय पर जानकारी ले ले, क्योंकि किसान अभी हम जितना कहना चाहें कि हम किसान परिपक्व हो चुका है, किसान अभी उतना परिपक्व नहीं हुआ है
5: जी जी।
9: क्योंकि किसान अपने हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, तो उसको पहले शुरुआत मेरा कहना तो यह है कि उसको वैज्ञानिकों की सलाह ले, वैज्ञानिकों से पूछे कि उसमें बीमारियां क्या आनी है, उसके बाद कार्य को प्रारंभ करें, क्योंकि किसान के पास आमदनी तो बहुत हो जाती है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि फूलों की खेती में आमदनी बहुत है
5: जी।
9: लेकिन आमदनी के साथ साथ जो खेती है हमारी वो भगवान के भरोसे पे भी है, उसमें दैवी कामना का बहुत बड़ा रोल है।
5: बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मुझे आपकी बातों से समझ आ रहा है, आपने कहा कि लाभ बहुत है लेकिन साथ ही साथ आपने बहुत सारे इसके साथ वजह भी गिनवा दी, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रबंधन बहुत जरूरी है अगर आप फूलों की खेती करें तो। सिंधु साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फूलों की खेती में क्या बहुत ज्यादा अनिश्चितता रहती है, क्योंकि अगर गेहूं धान हम करते हैं तो उसका भंडारण आसान होता है, फूलों में एक तो बाजार आपको तलाशना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, और दूसरा उसे आप भंडारित नहीं कर सकते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो क्या इससे जुड़े हुए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स यानी बहुत सारी वजहें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं किसान थोड़ा रिस्क लेने से डरता है? सिंधु साहब,
6: इसमें देखिए कि बहुत सारे चैलेंजेस तो हैं, नो डाउट कि इसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का यदि पहले से आप थोड़ा सा निवारण करके चलेंगे तो आप एक सफल कृषक के रूप में फूलों की खेती कर सकते हैं। कि आपका बाजार आपको देखना पड़ेगा, आपको तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है, उसके बाद चलते चलते जो वातावरण में जो बदलाव आता है, जलवायु में जितना परिवर्तन होता है उसके हिसाब से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अब आपने फूलों की खेती की हुई है, अचानक बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसको भी आपको प्रबंधन उसका भी करना होगा। तो गेहूं और धान में किसान क्या है कि वो निश्चिंत हो जाता है, एक बार लगा देता है, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर लेता है, स्टोर कर सकता है, आज अच्छा बाजार नहीं है तो 2 महीने बाद बेच लेगा, उसको और अच्छा बाजार मिल जाएगा। लेकिन फूलों में ये संभव भी है और नहीं भी है। संभव इसलिए है कि आपके पास यदि कोई कोल्ड स्टोरेज है तो आप 1 हफ्ते के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बट लेकिन बहुत लंबे समय तक आप इसको फूलों को स्टोर नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते, आपको बाजार में उसको बेचना ही होगा।
5: यानी संवेदनशील है इसका बाजार,
6: संवेदनशील है ये जो व्यवसाय है
5: जी। राजू जी, डॉक्टर राजू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी सिंधु जी ने कहा मौसम बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन जैसी भी समस्याएं हैं, कभी बाढ़ आ जाती जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होनी होती तब बारिश हो जाती है। तो ऐसे में क्या, जैसे कि हम धान की बात करें, गेहूं की बात करें, तो जलवायु परिवर्तन या फिर इस तरीके से जो मौसम बदल रहा है उसके अनुसार नई नई वैरायटीज खोजी जा रही है, किसान उन पर काम कर रहे हैं और वैज्ञानिक उन पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, तो क्या फूलों को लेकर के भी इस तरीके का काम किया जा रहा है क्या?
7: काम तो बहुत हो रहा है लेकिन किसान का अवेयरनेस बढ़ना है। जैसे अभी जीपी सिंह सर ने बात किया है कि

0: जैसे गुलदावरी है, गुलदावरी का जैसे इसको क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी कम करने के लिए शेड नेट का प्रयोग कर सकते हैं, और ये ब्लैकआउट सिस्टम करके इसका फ्लावरिंग को भी रेगुलेट किया जा सकता है ताकि बाजार में अच्छा मूल्य ला सके।
1: जी
0: और इसमें बहुत सारी किस्में भी निकाले गए हैं, जैसे पूसा अनमोल करके एक किस्म है, ये साल में 2 बार फ्लावरिंग देता है और गर्मियों में भी फूल आता है इसका। और जो ग्रीन बटन, जो हमारे किसान भाई ने कहा कि जो ग्रीन बटन है वो गर्मियों में अच्छा फूल देता है।
1: जी
0: और इसके अलावा जो उद्यानों के लिए बहुत सारे वैरायटी हैं जिसके मतलब गमले वगैरह बना सकते हैं, गार्डन्स में उगाया जा सकता है,
1: जी
0: जैसे पूसा आदित्य है, पूसा केसरी है, पूसा सेंटिनरी है, पूसा
1: जी
0: चित्राक्ष जैसे
1: जी जी
0: वैरायटीज है जो हमारी
1: जी
0: संस्था ने निकाली
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। तो अलग अलग वैरायटीज के बारे में आपने हमें अभी बताया, और हम दर्शकों को इसे और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे जिन वैरायटीज के बारे में अभी हमारे मेहमान ने बताया। हम लिखना होगा ब्रेक के बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे, इनके बारे में भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे।
2: चर्चाओं का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो टाइम 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: भावना है, इन सभी बातों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं।
1: भारत में इस खुशबू भरे रोजगार का इतिहास खंगाला जाए तो पता चलता है कि देश में पुष्प उत्पादन की विधिवत शुरुआत वर्ष 1968 से ही हो गई थी। तब भारतीय पुष्प वैज्ञानिकों ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की मदद से गुलाब के फूल फ्रैंकफुर्ट और पेरिस भेजे थे। भारत सरकार की वर्ष 1988 की बीज नीति के बाद देश में फूलों के अच्छे बीज, बल्ब, कटिंग आदि का आयात हुआ। वर्ष 1991 के बाद लगभग 20 पुष्पोत्पादन या पुष्पोदन की संयुक्त देसी और विदेशी कंपनियां भारत में अपनी जड़ें जमाने लगी। विदेशी कंपनियां हॉलैंड और इजराइल के साथ 1,500 करोड़ रुपए की मूलधन पूंजी से पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव में ऐसी ही पुष्प इकाइयां स्थापित हुई। भारत में इन्हीं की बदौलत पहली बार वर्ष 1992-93 में 387 मिलियन रुपए का पुष्प निर्यात हुआ था। ज्ञात हो कि अभी भारत के फूलों का निर्यात मुख्यतः यूरोप में होता है। वहीं हॉलैंड विश्व का सर्वोत्तम पुष्प नीलाम घर है। यहां विदेशों के फूल बिकने को आते हैं। एक लंबे समय से फूलों के व्यापार में भारत की भागीदारी मात्र आधे से पौने 1% तक रही है, मगर अब भारत इस खुशबू भरी तिजारत में ठोस कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहा है। यही नहीं, आशा ये भी की जा रही है कि हम दुनिया को ये खूबसूरत तोहफा देकर अच्छी खासी विदेशी मुद्रा भी समेट पाएंगे। भारत में फूलों के कारोबार का भविष्य इसलिए भी उज्जवल है क्योंकि देश में शोधरत कृषि विश्वविद्यालयों में सबके पास एक स्वतंत्र और पूरी तरह से विकसित बागवानी विषय है। इन विभागों में 1,000 से ज्यादा छात्र डिग्री प्राप्त करते हैं और अपना पुष्प ज्ञान तो बांटते ही हैं, साथ साथ कुछ इससे जुड़ रोजगार की भी शुरुआत करते हैं। फूलों से जुड़ा रोचक मुद्दा ये भी है कि देश विदेश में सूखे फूल पत्तियों तथा टहनियों की भी मांग बढ़ती जा रही है। ये नई विद्या किसान भाइयों, विशेषकर ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार की नई राहें खोल रही हैं। आज अपने देश में सूखे फूलों की घरेलू खपत तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में छोटे बड़े किसान अपना हाथ आजमा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। सूखे फूल पत्तियों टहनियों की विदेशों में बढ़ती मांग का लाभ भारतीय पुष्प उत्पादकों ने उठाया है। यहां से इनका निर्यात किया जा रहा है। इसके निर्यात की मुख्य बात यह है कि इसमें पूंजी लागत जीवंत फूलों के निर्यात की अपेक्षा बहुत कम है।
0: तो चलिए इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सिंधु जी साहब आपसे समझना चाहूंगी कि गेंदे की कौन कौन सी वैरायटी और इस समय क्या हमारे किसान इसे ले सकते हैं।
2: देखिए, गेंदा एक ऐसा फूल है जो भिन्न भिन्न प्रकार के जलवायु में और भिन्न भिन्न प्रकार के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। एक तो गेंदा वो है जिसको कि आप सर्दियों में उगाते हैं, उसके बाद अभी देखें तो हम गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में उगाते हैं। तो अभी गर्मियों में जो लगने वाला गेंदा है वो है कलकतिया, लड्डू गेंदा। अभी आगे जो बरसात में लगेगा वो अफ्रीकन जैंट के नाम से जो किस्म है वो लगाई जाती है। फिर सर्दियों का गेंदा आ जाएगा, उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हमारे संभाग द्वारा काफी किस्में विकसित की गई है, जिसमें से पूसा बहार और पूसा अर्पिता काफी फेमस है। पूसा नारंगी भी एक पुरानी किस्म है हमारी जो अभी अच्छी चल रही है,
0: काफी किसानों के बीच में लोकप्रिय भी है।
2: पूसा बसंती भी है और भी बहुत सारी किस्में हमारी पाइपलाइन में भी हैं जो कि अभी हाल ही में विकसित होने जा रही है। तो इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न मौसम में भिन्न भिन्न जलवायु में
0: यानी कुल मिला के 12 महीने कर सकते हैं।
2: 12 महीने अलग किस्मों का,
0: अलग अलग, लेकिन किस्मों का चुनाव करना होगा कि आप किस समय पर कर रहे हैं, तो गेंदे की कौन सी किस्म आप ले सकते हैं। राजू जी आप बताएं, गुलाब है और अन्य भी हमारे फूल है, ग्लैडुलस वगैरह है, इनकी कौन कौन सी वैरायटी और इस समय अगर किसान फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त कौन सी वैरायटीज होंगी।
3: जैसे गुलाब और ग्लैडियोलस जो प्लांटिंग टाइम है अक्टूबर है मेन तो, और जो गुलाब में काफी सारे किस्में हैं, जैसे कर्तित फूल संरक्षित खेती के लिए ताजमहल एक अच्छा किस्म है
0: जी,
3: और आउटडोर के लिए ग्लैडिएटर और सुपरस्टार किस्में हैं, उद्यानों के लिए जो हाइब्रिड टीस है उसमें पूसा अजय है।

0: क्वीन एलिजाबेथ करके बहुत अच्छा वैरायटी है
1: जी।
0: और जो बागवानी जो फ्लोरिबंडा जो किस्में हैं उसमें है चिंगारी है अरुणिमा है बंजारन जैसे किस्में हैं और जो खुले फूलों के लिए अब ग्रसैन टेपलेट्स हैं और जो तेल उत्पादन के लिए हिमरोज और ज्वाला किस्में हैं वैसे ही ग्लैडियोलस में भी बहुत सारे किस्में हैं इसमें अर्ली वैरायटीज भी है मिड है लेट वैरायटीज है हमारे संस्था ने काफी किस्में इसमें निकाली है वैसे बाजार में बहुत सारे पॉपुलर है जैसे व्हाइट प्रॉस्पेरिटी है नोवा लक्स है प्रिसिला से किस्में उगा रहे हैं किसान और हमारे संस्था ने बहुत सारे किस्में इसमें निकाली है करीब 30 के करीब किस्में है इसमें जैसे नया किस्में जो है पूसा रेड वैलेंटाइन है लाल रंग का है पूसा मनमोहक एक किस्म है और इसके अलावा पर्पल और बैंगनी रंग के फूल फ्लोरेट वाले बहुत सारे किस्में हैं जैसे पूसा उन्नति है पूसा सृजना है
1: जी जी
0: और सफेद रंग में पूसा किरण
1: जी ठीक है ये तो आपने बताया कि इस समय कौन कौन से और एक सोच सी रहती है कि हम सर्दियों के टाइम पर ही फूलों की खेती कर सकते हैं वही सही समय है लेकिन अब जो वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक इससे अब कोई समय सीमा नहीं इस पर कह सकते लागू होती है वैरायटी लीजिए मौसम के हिसाब से और आप फूलों की खेती कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे ये समय है तो इस वक्त हमारे किसानों को बताएं कि कैसे वो खेती कर सकते हैं फूलों की और संरक्षित खेती का कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल हो जाता है।
2: देखिए संरक्षित खेती का सबसे पहले निर्भर करता है कि किसान की क्षमता कितनी है क्योंकि संरक्षित खेती के लिए उसको पॉलीहाउस भी लगाना पड़ेगा और भारत सरकार उसमें अनुदान भी दे रही है लेकिन उसमें किसान को भी अपना अंश देना पड़ता है तो पहली बात तो यह है कि क्या किसान वो अंश देने लायक है कि नहीं है सबसे पहली बात। दूसरा यह है कि हमारा एज एक किसान होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि जो भी किसान इस फील्ड में इस क्षेत्र में आना चाहता है पहले वो बेसिक क्रॉप से आए जो छोटी क्रॉप होती है जिसमें कम खर्चा होता है कम लागत लगती है जैसे गेंदा हो गया ओपन फील्ड का खुले में गुलाब हो गया गुलदावरी का हो गया तो इस तरह की खेती से आए और जैसे डॉक्टर राजू ने बताया कि गुलदावरी एक ऐसी क्रॉप है इसको आप पूरे साल ले सकते हैं। लोगों को ये भ्रांति है कि ये केवल जाड़े का फूल है ऐसा नहीं है हम लोग आज की डेट में इसको शॉर्ट डे करके ब्लैक शेड नेट लगा के इसको कंट्रोल कर लेते हैं और फ्लावरिंग भी इसकी ले सकते हैं तो उससे जो ऑफ सीजन में जो हमें मिलता है ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस समय पे बाजार में जिस फूल की डिमांड कम हो अगर हम उसका उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है।
1: कटियर साहब जैसे कि अभी सिंह जी ने बताया कि ये पहले सोच ले किसान देख ले समझ ले आकलन कर ले कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है उसी हिसाब से ही वो संरक्षित खेती कर सकता है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी सरकार का फोकस खास तौर पर छोटे सीमांत किसान हैं उन पर है उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकारी योजनाएं हैं अगर उसे वो अपनाते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ होगा और उनकी स्थिति भी बेहतर होगी। तो ऐसे में बताइए कि फूलों की खेती संरक्षित खेती इसमें इससे जुड़े हुए कौन कौन सी सरकार की योजनाएं और इसका हमारे किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं क्या क्या अनुदान है इसमें।
3: देखिए ये जो संरक्षित खेती है इसके बारे में सरकार बहुत ही बढ़ावा दे रही है और चूंकि ये प्रचार प्रसार का काम भी हमारे पूसा संस्थान में भी किया जा रहा है और पूसा संस्थान ने खास तौर से अपने यहाँ पे इस तरह के ग्रीन हाउस बना रखे हैं कि किसान वहाँ आके देखते हैं कि ये लोग किस तरह की चीजें किस तरह से उगा रहे हैं ग्लैड्स किस तरह उगा रहे हैं रोजेज किस तरह उगा रहे हैं जरबेरा किस तरह उगा रहे हैं सारी चीजें वहाँ प्रदर्शित की जा रही हैं और उसकी लगभग कुछ कीमत भी कैसे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं बना सकते हैं उसको भी वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है
1: पूरा प्रोजेक्ट समझाया जा रहा है
3: और इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है जिसके पास ये स्कीमें हैं जो किसानों को इस तरह की टेक्निकल गाइडेंस आगे चल के देते हैं उनको पैसे की मदद करते हैं उसमें सरकार क्या छूट दे सकती है वो भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता है हर गांव में हर जिले में हर प्रदेश में उनकी संस्था काम कर रही है और जो भी किसान प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उनके पास जाते हैं कि क्या करना चाहते हैं कितना पैसा लगेगा वो उसमें पूरी मदद करते हैं।
1: जी सिंधु साहब जैसे कि अभी हमें बताया कटियार जी ने कि जो किसान अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर ले जाता है उसी हिसाब से उसे मदद मिल सकती है लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि नहीं आर्थिक तौर पर भी इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है उनकी तो क्या वो एक समूह बनाकर इस बड़े पैमाने पर खेती करने की सोचे तो उन्हें भी किसी तरह की मदद की संभावना है।
4: हाँ देखिए कि जैसा कि भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के हमारे NHM प्रोग्राम में बहुत सारे किसानों को संरक्षित खेती के लिए काफी अनुदान दिया जाता है और ये 50% से लेके 85% तक है, अलग अलग प्रांत के लिए अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं। और इसके साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी बड़े प्रोजेक्ट भी देता है, कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए भी सहायता देता है, और इंटीग्रेटेड कमर्शियल फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी अच्छी सहायता किसानों को मिलती है। 1.16 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 50% तक की उसकी बैक एंडेड सब्सिडी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का भी कटियार साहब ने भी जिक्र किया। तो उसमें क्या है कि किसान अपनी खेत का संरक्षित कर सकता है, बाउंड्री वाल भी कर सकता है, ट्रैक्टर भी उसमें लगा सकता है, पानी का भी कोई साधन उसमें जुटा सकता है, तो वो काफी बड़ा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लगा सकता है।
1: अच्छा।
4: उसमें ग्रीन हाउस भी इंक्लूड है। इसके साथ साथ तकनीकी ज्ञान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली भी है, तो जो किसान बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, जिनकी अपना जो सामर्थ्य है, जो अपना पैसा लगा करके और उसको अच्छा अपना समय जुटा करके करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए ये काफी परियोजनाएं भारत सरकार की उपलब्ध है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो मध्यम और लघु किसान हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उनका फायदा उठाए। और कुछ ऐसे चुनिंदा फूलों से, अभी हमारे बीच में जीपी सिंह जी ने बताया कि कुछ ऐसे फूलों से खेती शुरू करे, जैसे गेंदा है, ट्यूबरोज है, रजनीगंधा है, ग्लैडलस की खेती करे, वो कम पैमाने पे करे, ताकि उसको कल को कोई रिस्क भी उठाना पड़े तो उसको ज्यादा नुकसान ना
1: जी,
4: हो।
1: बिल्कुल। तो आपने बताया कि जो नई नई किस्में हैं उनका इस्तेमाल करें और शुरुआत छोटे स्तर से करें। तो मैं अब आपसे राजू जी जानना चाहूंगी कि कुछ जो वैरायटीज के बारे में आप बता रहे थे, तो इसमें गेंदा की अर्पिता, एक पूसा अर्पिता वैरायटी है, ये नई वैरायटी बताई जा रही है, इसके साथ ही पूसा बहार है, तो इनकी खासियत क्या है जो पहले किसान लेते आ रहे हैं फूलों की किस्में, उससे ये कैसे भिन्न है?
0: जी, आप देखेंगे तो गेंदे के चार किस्में हैं जो हमारी संस्था ने रिलीज किया है, उसमें पूसा नारंगी, एक पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा नारंगी गेंदा जो नारंगी कलर के फूल आते हैं, पूसा बसंती में पीले रंग के फूल आते हैं, ये दोनों फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करते हैं
1: जी।
0: और करीब 20 टन के आसपास प्रति हेक्टर फूल उत्पादन होता है
1: जी।
0: और जो फ्रेंच मेरीगोल्ड, जो जाफरी कहते हैं हम लोग, उसका किस्म है पूसा अर्पिता। ये जो इसका जो फ्लावरिंग टाइम है, ये जनवरी और फरवरी में और मार्च तक इसका 45 डेज फ्लावरिंग होता है
1: जी, जी।
0: और करीब इस 20 से 25 टन के औसतन इसका फूलों का उपज होता है। इसके अलावा एक नया किस्म है पूसा बहार।
1: अच्छा, जी,
0: ये पीले रंग का फूल देता है।
1: हाँ।
0: और ये उद्यानों के लिए काफी उपयुक्त है, करीब 60 से 80 फूल प्रति पौधे में आते हैं, और अगर खुले फूलों के लिए करेंगे तो 20 टन उपज देता है।
1: अच्छा, तो ये हमारे किसान जो है, जो शुरुआत करना चाहते हैं, तो गेंदे की वैरायटी ले सकते हैं, ये अगर हम उन्हें कहना चाहें तो ये बेहतर रहेगा उनके लिए।
0: जी
1: जी,
0: गेंदा ऐसा क्रॉप है कि इसमें कम से कम इनपुट से किसान लाभ पा सकता है, और ये ऐसा क्रॉप है कि अगर किस्म का चयन करेंगे तो साल में 3 बार इसका क्रॉप ले सकते हैं।
1: जी जी पी सिंह जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि छोटे पैमाने पर शुरू करें किसान गेंदे की या फिर किसी भी फूल की, जो बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या उसे ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत है, या फिर जो पारंपरिक तौर पर उसे पता है कृषि जो ज्ञान है फसलों से जुड़ा हुआ, उसी के आधार पर वो इसे शुरू कर सकता है, या फिर ट्रेनिंग लेना उसके लिए बेहतर रहेगा?
2: नहीं, मेरा इस प्रकरण में कहूंगा मैं कि अगर किसान ट्रेनिंग ले, उसका आके संस्थान से, पूसा संस्थान से ट्रेनिंग ले, या स्थानीय स्तर पर उसके आसपास जो भी कहीं भी कृषि संस्थान है वहां से ट्रेनिंग लेता है, तो निश्चित तौर पे वो ज्यादा लाभ कमा लेगा, क्योंकि नुकसान होने के बाद वापसी का कोई संभावना कृषि क्षेत्र में नहीं है।
1: बिल्कुल।
2: तो यहाँ पे जो आपका एक बार नुकसान हो गया, फिर उसके बाद आपको 3 महीने इंतजार करना है, फिर दोबारा से वो ही करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कमा पाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान को कि कहीं भी जाए वो, और जो संस्थान, संबंधित संस्थान है, उससे ट्रेनिंग ले। और देश में मैं समझता हूँ कि शायद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हर राज्य में क्षेत्र है, वो इनके प्रक्षेत्र है, तो वहां से जाके वो अपना ट्रेनिंग ले, और उसके बाद ऐसी फसलों का वैज्ञानिकों से भी सलाह ले कि मैं एक फसल से कैसे अधिक लाभ कमा सकता हूँ। सपोज वो गेंदे का उत्पादन करता है तो गेंदे का पौध भी फूल के साथ साथ वो पौध उत्पादन भी कर सकता है, गेंदा कटिंग से भी तैयार हो जाता है, उसका बीज उत्पादन भी कर सकता है।
1: जी जी।
2: साथ ही गुलदावदी हो गया, गुलदावदी का फूल भी बेच सकता है वो, उसके साथ साथ उन्हीं पौधों से वो नई कटिंग्स पौध तैयार करके नर्सरी व्यवसाय, नर्सरी के जो व्यवसायक है, व्यवसायी है, उनको भी पौधे सप्लाई कर सकता है, बेच सकता है वो, तो उसको वहां से भी उसको लाभ अर्जित हो जाएगा। तो किसान को अधिकतर जो बेसिक छोटा किसान है जो इस क्षेत्र में आना चाहता है उसको वैज्ञानिकों से मिलके सलाह करके पूरा ज्ञान प्राप्त करे और ऐसी फसलों का चयन करे जिससे वो अधिक लाभ कमा सकता है, फूल भी बेचे, पौधे भी बनाए, गेंदा हो गया, गुलदावदी हो गया, गुलाब हो गया, इनके पौधे भी बना सकता है, साथ में नर्सरी वालों को बेच के तो उसको दोहरा लाभ प्राप्त हो जाएगा।
1: जी जी।
2: तो ऐसी फसलों का उसको चयन करना चाहिए जिससे वो ज्यादा उसके लिए लाभदायक रहे।
1: कटियार जी, जैसा कि अभी हमें सिंह साहब ने बताया कि कैसे वो इसका दायरा और बढ़ा सकता है या फिर कहे कि और विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं अतिरिक्त आय के, ये भी हमें समझा, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि किसान के स्तर पर अगर हम जाकर सोचे तो क्या उसमें इतना आत्मविश्वास हम पैदा कर पाए हैं या फिर दिखाई देता है फूलों की खेती को लेकर के कि वो इसे प्रमुख फसल के तौर पर ले, क्योंकि अभी भी वो यही सोचता है कि धान है, गेहूं है, ये तो चलिए हो ही जाएगी और बिक ही जाएगी मंडियों में, लेकिन फूलों के लिए उसे जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, तो क्या ये समय आ चुका है या फिर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि इसे किसान प्रमुख फसल के तौर पर भी लेंगे?
3: जी बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। मैं इसमें ये कहूँगा कि जो हमारे किसान हैं, जो जागरूक किसान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास थोड़ा सा जो आगे हैं, पैसे वाले हैं, तो वो इसमें उन्होंने पहल की है, वो पहले इसमें आगे आ रहे हैं। जैसे आपने अभी पूछा था कि जो छोटे किसान हैं क्या वो ग्रीन हाउस बना सकते हैं, तो छोटे किसान इसमें हिम्मत कम कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
3: जो बड़े किसान हैं जो रिस्क उठा सकते हैं कि अगर कोई फेलियर हो गया तो उसका जो नुकसान है वो झेल पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे, तो इस वजह से बड़े किसान ही इसमें इस संबंध में आगे आते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं वो बड़े किसान की नकल कर लेते हैं, बड़े किसान से परामर्श ले लेते हैं, या जो बड़ा किसान कहीं पूसा इंस्टीट्यूट से या किसी से सलाह लेके कोई काम कर रहा है तो वो उससे सीखते हैं, उससे परामर्श लेते हैं। और शुरुआत, जैसे बार बार इस बात पे हम कह रहे हैं, हमारे और साथी लोग भी कह रहे हैं कि छोटे काम से शुरुआत करनी है
1: जी।
3: तो किसान जो है छोटे काम से शुरुआत कर रहा है, जैसे सबसे पहले गेंदा उगाता है, वो देखता है कि इसमें हमको कुछ फायदा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि गेंदा एक कैश क्रॉप है, ये जितने भी फूल हैं एक कैश क्रॉप है
1: जी जी।
3: पहले डिस्कस हो चुका है कि इसका भंडारण जो है संभव नहीं है, और जहां संभव है तो बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए ऐसी क्रॉप को बहुत जागरूकता से उगाते हैं किसान, और फिर देखते हैं कि इसकी मार्केट कहाँ है, पास में कहीं बिक्री का केंद्र है, उस सबके मद्देनजर ही इसको बोते हैं। तो जो छोटे किसान हैं वो पहले छोटी पूंजी लगाते हैं, गेंदे के अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे गुलाब है, देसी गुलाब जिसको हम कहेंगे, एक तो जो पाली हाउस में या ग्रीन हाउस में लगाते हैं वो तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो ओपन फील्ड में लगाते हैं, जो हमारा देसी गुलाब है, पूजा के काम आता है, उसको हमारे किसान इजीली उगा लेते हैं
1: जी।
3: और उसकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है, और उसको भंडारण में उनको फ्रेश ही लाना पड़ता है बाजार में, तभी कीमत मिलती है रोज के रोज। लेकिन उसमें जैसे बरसात हो जाए या और कोई ओलावृष्टि हो जाए तो वो पेड़ चूंकि हार्ड होते हैं तो वो एक बार फूल खराब हो जाता है तो उसमें क्षमता होती है दोबारा ग्रो करने की। लेकिन जो सॉफ्ट क्रॉप है, जो गेंदा वगैरह है या गुलदावदी है या ट्यूबरोज है, वो सॉफ्ट क्रॉप है, उनमें अगर एक बार ओलावृष्टि हो जाए या तेजी से बरसात हो जाए तो नुकसान बहुत हो जाता है।
5: यह सारी फसलें सॉफ्ट फसलों की गिनती में आती है, और अगर इन फसलों में ओला बारी हो जाए या तेज वर्षा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं ये जो फसलें हैं वो बर्बाद हो सकती है। तो इसके अलावा और भी क्या क्या समस्याएं आती है, इनसे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडियाबिल 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज पर।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का खेती बाड़ी कार्यक्रम में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं फूलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को और जानते हैं किन किन परिस्थितियों में हमारे जीव जो फसल है वो खराब हो सकती है। जो गेंदे के फूल है और भी जो फूलों की फसलें हैं उनका हमें प्रबंधन कैसे करना है, उनकी देखरेख कैसे करनी और किस समय पर कौन से कदम उठाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को आइए जानते हैं।
2: पहले हमने नई नई वैरायटीज के बारे में बताया कि कैसे किसान इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कहां से शुरुआत करें और किन किन चुनौतियों के लिए वो तैयार रहे। लेकिन अब हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है, सरकार इसके लिए किस तरीके से किसानों को मदद कर रही है। और ब्रेक से पहले जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि एक नया बाजार भी उभर कर आया है ऑर्नामेंटल फ्लावर्स यानी अलंकृत फूलों का, तो इससे किसान कैसे जुड़ सकते हैं, उन्हें कैसे लाभ हो सकता है, आइए बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अलंकृत फूल जो हम बता रहे हैं ये हैं क्या और इसका बाजार किस तरह का है।
3: अभी जैसे हमने बात की, अभी तक हम बात कर रहे थे फूलों की और फूलों से जुड़ी हुई किस्मों के बारे में। इसके साथ साथ एक दूसरा विषय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है, वो है अलंकृत बागवानी। जितने भी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखते हैं, नर्सरी देखते हैं, उसमें बहुत सारे पौधे हैं जो आजकल देश विदेश से लोग मंगा करके यहाँ पे उगाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनका टिश्यू कल्चर करते हैं और बहुत ही तादाद में उनको पैदा करके वो बाजार में बेचते हैं। तो अलंकृत बागवानी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें भी काफी किसान इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नवयुवक नवयुवतियां इस विषय पर काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने नर्सरी भी स्टेब्लिश की हुई है और इसमें आजकल बहुत नए नए पौधे भी आजकल आ रहे हैं। अभी जैसे हम बात करें, ऑर्किड है, ऑर्किड यहाँ के लिए नया फूल है
2: जी।
3: सिक्किम में ठीक है, ऑर्किड अच्छा होता है, वहाँ का वातावरण अच्छा है
2: जी।
3: इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पौधे हैं जो आजकल बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे यदि हम कंदीय फूलों की बात करते हैं तो रेनुनकुलस है, बहुत ही नया फूल है। उसके बाद अलंकृत पौधों में क्लोरोफिटम है, पेंटाज है और भी बहुत सारे ऐसे अलंकृत पौधे हैं जो कि बोने हैं, ड्वार्फ हैं, देश विदेश से भी आजकल काफी इंपोर्ट हो रहे हैं और उनको अच्छा बाजार मिल रहा है।
2: जी सिंह साहब, आप क्या बताना चाहेंगे कि आप किसान हैं तो इसके लिए कितना हमारे किसानों के पास कह सकते हैं कि विकल्प है या फिर जो स्थितियां हैं वो दिखाई दे रही हैं कि अनुकूल है कि अलंकृत फूलों की खेती पहली बात तो ये और उसका जो एक और नया आयाम है अलंकृत फूल या फिर बागवानी, इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपने इसे अपनाया है।
4: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि विविधीकरण जो हमें कृषि क्षेत्र में हमारा जो है उसमें हमें विविधीकरण की जो है उसको अपनाना जरूरी है
2: जी।
4: क्योंकि अगर हमारे पास हम चार तरह की फसल लेके चलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लेके चलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में जैसे डॉक्टर सिंधु ने बताया ये हैं, इसके अलावा लिसियंथस ऑस्टोमा काफी अच्छा पॉपुलर प्लांट है और उसकी काफी मार्केट अभी डिमांड बढ़ रही है। तो इस तरह के अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी अपने कट फ्लावर का जैसे हमारा काम है उसके साथ साथ अगर हम इसको भी लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हमारा क्षेत्र एक है, कार्य क्षेत्र हमारा एक है, वर्किंग पीरियड हमारा एक ही है और उस अगर हम एक ही जगह पे अगर दो से तीन या चार काम को एक साथ लेके चलेंगे इसमें तो निश्चित तौर पर किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। और नर्सरी का व्यवसाय जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले 7-8-10 सालों में फूलों का जो क्रेज है लोगों के बीच बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसा शायद ही कोई घर आपको कहीं मिलता होगा जिस घर में 10 गमले कम से कम ना हो और उसमें ऑर्नामेंटल भी है और फ्लावर्स के भी है। तो किसान अगर इसको करता है तो निश्चित तौर पे वो लाभ अर्जन कर सकता है, चाहे वो सीमांत क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सा भी शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। तो फूलों की डिमांड आज की डेट में सब जगह बढ़ रही है
2: जी।
4: तो मैं तो ये कहूंगा जो भी किसान है वो संरक्षित खेती कर रहा हो फूलों की, चाहे वो खुले में कर रहा हो, वो साथ साथ नर्सरी का व्यवसाय को भी अपनाए। तो नर्सरी व्यवसाय अपनाएगा तो अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकता है।
2: चलिए अब बात कर रहे थे चुनौतियों पर और साथ ही साथ उन चुनौतियों का कैसे निवारण हो रहा है या फिर हल ढूंढा जा रहा है। और जो मुझे समझ आता है एक बड़ी चुनौती ये हमारे किसानों के सामने आती है कि जो किसान शहरों के आसपास के हैं वो तो चले ठीक है फूलों की खेती अपना सकते हैं या फिर बहुत आसानी से अपना लेते हैं क्योंकि उन्हें बना बाजार मिल जाता है। दूसरी बात जो यातायात का खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन वो बचता है, भंडारण की समस्या नहीं होती है। तो क्या हम कहें कि ये सिर्फ बड़े शहरों के आसपास के जो इलाके हैं जो गांव हैं उन्हीं के लिए फायदेमंद है, दूर दराज के या फिर सुदूर इलाके के जो किसान हैं जहां दूर है शहर जहां पर इनकी डिमांड होती है उनके लिए अभी भी दूर की कौड़ी है ये? सिंधु साहब
3: देखिए ऐसा है कि चुनौतियां तो बहुत हैं और जैसे दूर के किसानों का आपने जिक्र किया तो दूर के किसानों के लिए हम ये चाहेंगे कि वो इस टाइप का बिजनेस अपनाएं, इस तरह का कोई फूलों से जुड़ा हुआ धंधा अपनाएं जैसे कि बीज उत्पादन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है ये। बीज उत्पादन का वो काम कर सकते हैं, यदि वो किसी मुख्य शहर से बहुत दूर है तो बीज उत्पादन का काम कर सकते हैं, नर्सरी का काम शुरू कर सकते हैं, प्रोपोगेशन का काम कर सकते हैं जिसकी मार्केटिंग के लिए उसके पास काफी समय उपलब्ध रहता है और यदि वो समय से नहीं भी बेच पाता तो उसका जो उत्पाद है वो खराब नहीं होगा
2: जी।
3: तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनको इस तरह से उनका सामना करने के लिए अपने व्यवसाय का जो विविधीकरण की अभी बात की थी वो हमें अपनाना होगा
2: जी। डॉक्टर राजू जैसे कि बीज का भी जिक्र किया सिंधु साहब ने तो हम ये भी देखते हैं कि वैज्ञानिक तो अपना काम करते हैं, वो नई नई वैरायटियां बनाते हैं उनका निर्माण करते हैं लेकिन उस वो किसानों तक कैसे पहुंचे और उस वो वैरायटी कैसे बढ़े इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होती, उनका काम होता कि आपने वैरायटी बना दी अब इसका लाभ कैसे पहुंचे वो दूसरा तंत्र काम करता है। तो क्या ये भी एक चुनौती रहती है कि किसानों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाती?
5: आप जैसे सही बोल रहे हैं इसमें जो बीज जो किसानों तक ले जाना ये बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है और जो हमारी संस्थान है जो और ICAR है सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इसी काम में लगे हुए हैं और जो फूल जो बीज से हो सकता है उसमें काफ़ी मात्रा में बीज प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन किया जाता है और डिफरेंट सेंटर्स में भी उपलब्ध किया जाता है। इसके अलावा जो मतलब प्लांटिंग मटेरियल्स जो प्लांट्स होते हैं इसका पौधे बनाना होता है उनको कमर्शलाइज भी किया जाता है और बहुत सारे नर्सरीज को भी टाई अप किया जाता है ताकि वो डिफरेंट प्लेसेस से में अवेलेबल हो। जैसे गुलाब ही है, जैसे गुलाब में जो मूलव्रंथ होता है जो अलग अलग प्रदेशों के लिए अलग अलग होता है तो इसमें कई डिफरेंट प्लेसेस से नर्सरी से टाई अप करके उनके पास भी ये मटेरियल अवेलेबल किया जाता है ताकि वो लोकल में अवेलेबल हो
2: जी जी।
5: इसके अलावा बहुत सारे वैरायटी ऐसे हैं जैसे ग्लैडियोलस वैरायटीज है, क्रिजान गुलदाउदी की वैरायटी है, हमारे संस्थान ने इसको कमर्शलाइज किया है। जो प्रोग्रेसिव किसान है या जो किसान जो मटेरियल ज़्यादा तरह के अवेलेबिलिटी कराते हैं उनके साथ कमर्शलाइज किया हुआ है ताकि वो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल कराएं और लोकल में उपलब्ध कराएं
2: जी। डॉक्टर कटियार आप क्या बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमने बताया कि समस्याएं बहुत सारी हैं और इसको अगर और हमें बढ़ाना है निर्यात के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है तो हमें इन चुनौतियों पर इन लिमिटेशन पर हमें काम करना पड़ेगा तो ये बताइए कि सरकार भी फूलों की खेती पर काफी ध्यान दे रही है और इसको लेकर क्या ब्लू प्रिंट है सरकार का?
6: देखिए सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि अभी तक जो चीजें हमारी लैब में बनाई जा रही हैं या लैब में उनका उनका रिसर्च वर्क किया जा रहा है तो वो किताबों में या रिसर्च की जो थीसिस है उसके अंदर ना रहे, उससे बाहर निकल के आए। तो अब सरकार ने सारे जितने भी हमारे इस तरह रिसर्च सेंटर्स हैं इनको किसानों से जोड़ने के लिए कोशिश जारी है कि जो भी हमारे साइंटिस्ट जो भी नई चीज निकालें उसका सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंस करें, कॉन्फ्रेंस करके क्रम में हमारे जो क्षेत्रीय किसान हैं उनको बुलाएं, आमंत्रित करें, उनको सिखाएं जिससे उन्होंने जो चीज बनाई है निकाली है वो फील्ड में उतरे और किसानों को रिजल्ट मिले, सरकार भी देखे साइंटिस्ट भी देखें कि उन्होंने जो बनाया है उसका रिजल्ट सही आ रहा है जमीन पे कि नहीं। तो इसमें सरकार बहुत ही आगे कारगर है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी अलंकृत की बागवानी की बात हो रही थी तो उसमें सारे जो हमारे किसान हैं उस फील्ड में भी उतरे हुए हैं और उनमें उनको ऐसा लगता है कि शायद उनमें उनको कुछ सुविधा भी है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बीज हैं, पुटरंजिवा के बीज हैं या मलताज के बीज हैं और पेड़ों के बीज हैं, फूलों के बीज हैं, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं, उनको कुछ फ्री मिल जाते हैं पेड़ों से, जो भी सड़क पे पेड़ लगे हुए हैं उनसे वो बीज तोड़ लेते हैं। सड़क के किनारे जो हाईवे पे हमने सरप प्लांट्स लगा रखे हैं उनसे उसकी वो कटिंग ले लेते हैं, तो उनके बीजों से, उनकी कटिंग से फ्री में उनको जो है वो मदर प्लांट्स मिल रहे हैं सड़क के किनारे जो खड़े हैं, और उनसे वो अपनी नर्सरी ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं
2: जी।
6: और वो जैसे बात आ रही थी कि जो इंटीरियर में है या जो शहरों से दूर है या जो कस्बों से दूर है किसान, वो क्या कर रहे हैं, तो वो किसान भी उसमें उतर गए हैं
2: जी।
6: और वो मेन मार्केट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो बड़े जो उनके व्यापारी हैं, जो बड़े नर्सरी मैन्स हैं, उनको वो माल दे देते हैं, उनको वो अपना प्रोड्यूस दे देते हैं, और उसके बाद वो बड़े जो हैं जिनका टच शहरों से, वो आके वहाँ पे सप्लाई करते हैं
2: जी। सिंधु साहब, मंडियों की भी हम बात कर लेते हैं, तो मंडियां कैसे इससे जुड़े, फूलों की मंडियां, क्योंकि हम अनाज की मंडियां तो देखते हैं कि हर जगह उपलब्ध होती है किसानों के लिए, लेकिन फूलों की मंडियों की अगर बात करें तो वो अभी इतना बढ़ा, कह सकते हैं कि इसमें इतना विकास नहीं दिखाई देता है, तो उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे?
3: फूलों की मंडियों का यदि हम बात करते हैं तो जो आज के समय यदि फूलों की हम बात करें तो देश में अभी कम से कम 5 या 6 बड़ी मंडियां हैं, जिसमें से दिल्ली सबसे बड़ी मंडी है, और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली की मंडियों में विकास हुआ है। अभी जो हाल ही में दिल्ली सरकार ने गाजीपुर में जो जगह दी है वहां पे बहुत अच्छी दुकानें बन गई हैं, वहां पे काफी अच्छी सुविधाएं भी हैं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं भी वहां पे जुटाई गई हैं कि जो सरप्लस बच जाता है ताकि उसको स्टोर कर सके, अगले दिन फिर उसको बाहर निकाल के उसको बेचा जा सके, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्किंग के स्ट्रक्चर्स है, वो वहां पे जुटाई गई है। इसी तरह से बेंगलोर में है, और आपका बॉम्बे है, पुणे है, चेन्नई है, तो बड़े शहरों में हैदराबाद है, वहां पे भी फूलों की बड़ी मंडियां अभी काफी हद तक उपलब्ध हैं, और जो बेंगलोर की मार्केट है वो तो काफी कंप्यूटराइज्ड है, और काफी हद तक इंटरनेट पे उसके आपको रेट मौजूद रहते हैं। दिल्ली की मंडी के रेट भी दिल्ली सरकार के जो हमारा दिल्ली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसकी साइट पे भी आपको डेली उसके रेट उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ साथ जो छोटे आड़ती हैं, जो छोटे कॉर्नर नुक्कड़ वाले जिनको हम बोलते हैं, वो भी छोटे छोटे बाजार हैं, छोटी छोटी मंडियां हैं, और छोटी छोटी फ्लोरिस्ट शॉप हैं, जिसके माध्यम से डायरेक्ट कस्टमर या प्रोड्यूसर भी जुड़ा रहता है। बड़ी मंडियों के थ्रू एक तो कस्टमर जुड़ता है, प्रोड्यूसर जुड़ता है, और एक कुछ ऐसे छोटे प्रोड्यूसर हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर से भी जुड़े हुए हैं, और यहाँ तक कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी भी है हरियाणा में, जैसे अभी कोई 18 के आसपास है फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी, किसान अपना पैदा करके अपना ही बेचता है।
2: अच्छा,
3: तो वो भी एक सरकार का काफी अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो इस तरह मंडियों की तरफ भी काफी ध्यान है सरकार।
2: सिंह साहब, क्योंकि आप खुद किसान हैं और आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि चलिए ये तो बात रही कि सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, वैज्ञानिक अपने स्तर पर अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों की तरफ से आप क्या चाहते हैं कि क्या योगदान होना चाहिए, फिर उनके क्या प्रयास होने चाहिए?
4: देखिए, किसानों का सबसे जो पहले किसान जो चाहता है, जो हमको चाहिए वो अच्छी गुणवत्ता का पौधा चाहिए
2: जी।
4: जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पौधे तैयार करते हैं, नई किस्में तैयार हो रही हैं, अगर हम उनकी एट ए टाइम, अगर कोई किसान अगर 10,000 प्लांट मांगने पहुंच जाए तो शायद वो वहां से उपलब्ध नहीं हो पाता। तो पहला तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृषि अनुसंधान संस्थान को इतनी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं कि जो भी नई वैरायटी हम आपके यहाँ से रिलीज होती है, किसान को वो प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके
2: जी जी।
4: क्योंकि ऐसा नहीं है कि पौध कभी खराब नहीं होती है, अगर पौध अगर आज नहीं बिकी तो 1 महीने तक 2 महीने तक वो स्टोरेज हो सकती है
2: जी जी।
4: तो किसान को एक तो गुणवत्ता युक्त पौध मिलेगा, फिर दूसरा जो पौधा बाजार से हमको 6 रुपए या 8 रुपए 10 रुपए मिलेगा, वो वही हमको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मिनिमम रेट पे मिलेगा
2: जी।
4: दूसरा सबसे मेन चीज उसमें रहेगा कि जो हमें संस्थान दे रहा है इसकी गारंटी है कि वो जो भी दे रहे हैं वो हमें सही पौधा दे रहे हैं, क्योंकि बाजार से हम ओपन मार्केट से लेते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस किस्म का पौधा निकलेगा। हमने ग्रीन मांगा, निकला व्हाइट, तो
2: जी,
4: वो दिक्कत किसान के सामने सबसे ज्यादा होती है
2: जी।
4: दूसरा, किसान से भी किसानों के, एक किसान होने के नाते मेरा सभी किसान भाइयों से भी ये मैं कहूंगा कि कोई भी काम करने से पहले पहले उसके बारे में गहन अध्ययन कर ले, वैज्ञानिकों से सलाह कर ले और उसके बाद उसको स्मॉल स्केल से स्टार्ट करें, जिससे कि हमारा खर्चा कम से कम हो और साथ ही जो भी कार्य करें उसको विविधीकरण की योजना के तहत करें।
1: जी हाँ किसान साथियों, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर सुना है। कैसे अगर हम कोई भी अगर कोई भी फसल की हम अगर उपज लेना चाहते हैं तो उसके पहले उसका गहन अध्ययन करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत या हमारे पड़ोसी किसान से देखकर हम भी चाहते हैं कि हम भी उसी फसल की खेती करें, तो कहीं ना कहीं हम उसके बीजों में और उसके रख रखाव उसमें कौन सी दवा लगेगी आदि चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं और हमारी खेती में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, बहुत ज़रूरी है कि आप पास के केवीकी केंद्र में जाएं और वहां से संपूर्ण प्रशिक्षण ले लें। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो प्रशिक्षण केंद्र है, किसान विज्ञान केंद्र है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र जो चलते हैं उसमें भी आप भाग लेकर अपनी आपका जो भी मन है कि हम मुझे ये वाली खेती करनी है, जो भी खेती आप करना चाहते हैं वो आप उनको बताइए और जानिए कैसे उस खेती को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर गहन अध्ययन करने की बहुत ही आवश्यकता है, तो ताकि हमारी जो हमें नुकसान उठाना ना पड़े और हमें अधिक से अधिक फसल मिल सके, उससे हमारा मुनाफा भी हो सके और साथ ही हम दूसरे किसानों को भी हमारी खेती से प्रेरणा दे सकें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान भाइयों, आजना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आप ये घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारी ने जानियो है ने आशा भी करी है कि ये जानकारी घनी खरी है, आपू हमजमा भी आवी है। आपू जानिए है कि अगर आपू देखें तो आजकल आपू हर भगवान ने आपू फूल सड़ावी से, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं अगर आपू देखें तो फूलों की खेती जो है ये एक फायदा वाली खेती थी सके है। तो किसान साथियों, हूँ आशा करूँ कि घना खरा किसान इन्हीं खेती ने करे अने ये बात तिना ने गले उतरी है कि फूलों की खेती में भी फायदो है। तो आशा करिए हैं कि ये भी खेती कहीं ना हमारा किसान जो भाई है जो करे अने आगाड़ी लीन आवे इन्हीं खेती ने भी और इनकी भी अधिक से अधिक मुनाफा आपू ले सकें। तो आज ने इना कार्यक्रम में आपू ये विस्तृत जानकारी ले दी है किसान भाइयों, अने आशा करिए हैं कि तमू अपना पड़ोसी किसान भाई ने भी इन्हें बारे में बताड़ हो अने

तीन भी ये खेती करवानो सुझाव आलो इन हाथे किसान भाइयों हमने समय थे गयो है तमारती विदा लेवानो आप तमारती फेर काल मुलाकात था है इना समय पर इतने बनेला रो हमारे हाथे रेडियो टाटा बी 90.8 FM नी हाथे झबवानी आवाज पर।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में टैलेंट्स चूज करके लाते हैं जो आपको एक नई प्रतिभा की एहसास कराते हैं। आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं, आज जो गायिका हमारे साथ हैं, उनकी गायकी सुनेंगे आप, उनके बारे में जानेंगे तो अमेज्ड रह जाएंगे। ये हैं मालविका श्याम जी। मालविका जी, हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय देना, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कौन है आप?
1: मेरा नाम मालविका श्याम है
0: जी।
1: मैं पुणे में बॉर्न ब्रॉटअप हूँ एंड वहीं रहती हूँ। मैं एक मलयाली से मेरी मैरिज हुई है, हमारा 22-year-old बेटा है। हाँ, माय प्रोफेशन, मैं एक ग्राफिक आर्टिस्ट हूँ, और अब काफी सालों से मैं एक हाउसवाइफ का वेरी फुलफिलिंग रोल अदा कर रही हूँ।
0: शानदार, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड मैम, एक हाउस मेकर होना, एक परिवार को संभालना अपने में बहुत बड़ा काम है। कई बार लोग गलती करते हैं इस चीज को समझने में कि ठीक है ये तो छोटा मोटा काम है, लेकिन अभी आजकल सोशल मीडिया पर भी कितनी मीम्स आती हैं जहां पर ये पता चलता है कि एक होम मेकर कितनी मेहनत करती है, उसमें कितना मैनेजमेंट थॉट जाता है, कितनी क्रिएटिविटी होती है, कितना कंट्रोल चाहिए। बहुत खूब मालविका जी।
1: yes.
0: तो चलिए एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, हमारे सुनने वालों को आपकी ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। बचपन में चलते हैं मालविका जी।
1: हाँ जी,
0: आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं बचपन में एक टीचर बनना चाहती थी।
0: वाओ, ओके। तो फिर उसकी तरफ आपने कुछ कदम उठाए?
1: नहीं, वैसे हम टीचर, मतलब टीचर होते ही हैं एक्चुअली हम, पर अभी मैं, मुझे लगता है टीचर फॉर्मली तो नहीं बनी, पर एक अच्छी स्टूडेंट बन गई हूँ लाइफ की।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट आंसर। बहुत सोच समझ के, बड़ा ही मजाक में कह रहा हूं, डिप्लोमेटिक ही सही, लेकिन जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। यूं तो हम अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक स्टूडेंट बने ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, और सच्चाई ये है कि जिन्होंने भी सीखना बंद किया वो तभी बूढ़े हो जाते हैं, तभी वो मौत की तरफ चल पड़ते हैं। जब तक हम सीखते हैं तब तक हम जवान रहते हैं, तब तक हम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो दोस्तों, आपने सुना, चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। तो बचपन में अगर हम हैं तो मालविका जी, कोई ना कोई तो आपके फेवरेट टीचर रहे होंगे, कौन थे वो और क्या, किस वजह से वो आपके फेवरेट टीचर थे?
1: हाँ जी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तब हमारी एक हिस्ट्री की टीचर थी, मिसेस पीशा रोटी उनका नाम था।
0: जी
1: तो यू नो, उनका वे ऑफ टीचिंग वाज रियली फैंटास्टिक। वो लेसन शुरू करने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड बताती थी एंड सिनॉप्सिस भी उस चैप्टर में जो था उसका इतना अच्छे ढंग से वो पेश करती थी कि वो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, यू नो। एंड उनके इस वे ऑफ टीचिंग से मैं बहुत ही इम्प्रेस थी। तो मैं जब घर पे हर सब्जेक्ट का, मैंने जो सेल्फ स्टडी करते थे ना घर आके हम,
0: जी,
1: तो मैं हर सब्जेक्ट को वो टेक्निक से पढ़ना शुरू किया था एंड आई यूज टू लव स्टडिंग।
0: क्या बात है, बहुत खूब। क्या नाम था उनका? अमिन ने नाम है उनका,
1: पीशा रोटी नाम। हाँ, मिसेस पीशा रोटी,
0: मिसेस
1: पीशा रोटी, ऐसा ही नाम था उनका, मिसेस
0: okay.
1: पीशा रोटी।
0: ऑलराइट ऑलराइट, बहुत खूब बहुत खूब। दोस्तों, आपने सुना कि इनकी फेवरेट टीचर कौन थी और क्यों, तो चलिए अगला गीत सुनते हैं जो मालविका जी के परमिशन से मैं उनकी इन फेवरेट टीचर को ही डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: बहुत खूब। तो मालविका जी आगे बढ़ते हैं, आप गायिका हैं, तो आपका पसंदीदा गायक तो कोई होगा, गायिका तो कोई होंगी, कौन है वो?
1: हाँ जी, बहुत सारे लोग पसंद हैं, बट अगर आप खाली एक या दो ही पूछेंगे तो
0: जी,
1: लता जी
0: या दो
1: आशा
0: ही।
1: जी।
0: ओके, ओके।
1: लता जी एंड आशा जी,
0: ओके,
1: बिकॉज ऑफ देयर वर्सेटिलिटी एंड मास्टरी ओवर देयर आर्ट, लाइक बहुत मुझे
0: बहुत खूब
1: इंस्पायरिंग लगते हैं। या
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए एक और गीत सुनाते हैं अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को।

0: बहुत बढ़िया, अब कुछ मजे करते हैं, कुछ फन। अपनी जिंदगी में सबसे पहली खाने की चीज आपने क्या बनाई थी और वो कैसे बनी थी?
1: हाँ जी, एक बार आई रिमेम्बर, आई थिंक हम सेवेंथ में थी, तब मेरी मम्मी गई थी अपनी बहन के घर। आई थिंक हम लोग थोड़ा बड़े हुए बाद फर्स्ट टाइम वो हमको अकेला, मतलब मेरे पापा एंड हम दो सिस्टर्स को छोड़ के गई थी छुट्टियों पर। तो तब मेरे पापा ने एग की डिश बनानी सिखाई थी, सनी साइड अप, जो हम उसको ये भी कहते हैं ना, बुलजाई भी बोलते हैं।
0: जी जी जी,
1: बहुत बढ़िया बनी थी, सिंपल डिश है, मगर पहली बार किया था तो बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक लग रही थी, उसको ऐसे गिराओ पैन में, उसको ऐसे करो, तो मजा आया था। या
0: लेकिन वो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, ऐसा?
1: यस
0: जी हाँ। क्या बात है, क्या बात है, सुन के ही अच्छा लगा कि वो कितनी टेस्टी बनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: मालविका जी, आपको और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी हॉबीज के बारे में हमें बताइए ना। जब भी आपको वक्त मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं आप?
1: हॉबी मेरी सिंगिंग, दैट्स माय पैशन आल्सो। या तो मैं पूरा दिन भी गा सकती हूँ, जैसे ही अपने काम वाम खत्म हो जाते हैं तो आई लिसन टू म्यूजिक एंड सॉन्ग मैं सीखने के हिसाब से सुनती हूँ। पहले मैं एंजॉयमेंट के लिए सुनती थी, पर काफ़ी सालों से सीखने के हिसाब से, तो सॉन्ग को के हर एस्पेक्ट को सुन के उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना, यू नो, अपनी गायकी में कैसे लाना, वो ये चीज़ें मेरी हॉबी हैं। या
0: गाने के अलावा, म्यूजिक के अलावा, संगीत के अलावा कोई हॉबी है आपकी?
1: यस, मुझे डांस भी अच्छा लगता था, बट ड्यू टू सम स्पाइन इश्यूज वो मैं डिसकंटिन्यू, अब मैं नहीं डांस कर पाती हूँ। आई ऑल्सो लाइक टू मेक ज्वेलरी, पर वो भी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज वो बैठ के वो करना वो अभी पॉसिबल नहीं। सो अभी तो मैं फुल फ्लैश पैशन मेरा सिंगिंग, आई कैन परस्यू चलते फिरते भी।
0: ओके, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया बात। तो चलिए एक और गीत सुनवाते हैं हमारे सुनने वालों को।

0: और अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो बिल्कुल मजेदार है, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी थिंकिंग को देखने के लिए, परखने के लिए नहीं, देखने के लिए हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि अगर आपको 24 घंटों के लिए गायब कर दिया जाए, मतलब आप गायब हो जाएं, तो उन 24 घंटों में क्या क्या करेंगे आप?
1: हाँ जी, 24 घंटे गायब हो जाऊं तो मैं एक्चुअली एक ही चीज करना चाहूंगी. आशा जी हैं, श्रेया घोषाल हैं, सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह, ये जो सिंगर्स हैं इनके रियाज को मैं सुनना चाहूंगी. वो जो क्योंकि वैसे तो मौका नहीं मिलता है ऐसे रियाज प्रॉपर उनका जो डेली रियाज करते होंगे.
0: जी,
1: आई वुड लव टू लिसन टू हाउ दे डू देयर रियाज. या
0: ओके, तो मैं बहुत ही पोलाइटली सजेस्ट करूंगा कि आप उनके घर चले जाएं. जब गायब होंगे तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, आराम से उनके सामने बैठिए तब सुनिएगा.
1: एब्सोल्युटली,
0: तब आप उनको देख भी पाएंगे, उनको सुन भी पाएंगे.
1: यस,
0: अमेजिंग, बहुत खूब. दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक गीत भी सुनते हैं.

0: बहुत बढ़िया। मालविका जी, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट आज तक की डेट में क्या रहा है?
1: एक्चुअली काफी फुलफिलिंग मोमेंट्स बोल सकती हूँ रहे हैं लाइफ में, पर लाइक एक सुपर ड्रामेटिक लाइक यस आई डिड इट जैसा जो मोमेंट होता है
0: जी।
1: ये कॉलेज टाइम का बता सकती हूँ, काफी ड्रामेटिक था। तो मैं सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए मैंने कराटे क्लासेस ज्वाइन किए थे।
0: ओके।
1: तो या तो हम लोग स्टेट लेवल चैंपियनशिप में खेल रहे थे, तो हम बेल्ट वाइज काफी जूनियर थे, हमारी पूरी टीम लाइक एक ही लेवल में थे, एंड हमारी पूरी टीम बहुत स्किल्ड भी थी इवन दो हम लोग जूनियर लेवल पे थे। तो जब स्पारिंग के कॉम्पिटिशन शुरू हुए, दैट इज जो फाइट्स होते हैं, फाइटिंग कॉम्पिटिशन, तो एक टीम थी जिनमें बहुत सीनियर बेल्ट के लोगों को हमारे लेवल के बच्चों, मतलब जो किड्स थे हमारे लेवल के लोगों के साथ खेलने पर उतारा था, लाइक उन्होंने टीचर ने, तो इट वाज अ चीटिंग, या इट वाज अ चीटिंग गन। तो ये हमारी टीचर को समझ में आया था, बट सब पता था, बट समहाउ आई डोंट नो व्हाट पॉलिटिक्स इट वाज, मैं तो छोटी थी, मैं नहीं जानती थी, पर अलाउड हो गया था वो। एंड हमारे टीम के एक्चुअली सब लोग एक एक करके सब आउट होते जा रहे थे, मेरा टर्न आने तक लाइक मैं सबका ये ऑब्जर्व करके समहाउ आई हैड, मतलब मेरा फोकस मैंने बनाया था, एंड मैं 5 राउंड्स जीती थी, एंड वो 5 राउंड्स के बाद मैंने अपनी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीता था।
0: ओह माय गॉड।
1: बट या मुझे काफी चोट भी आई थी, एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल में वो सब मैचेस हुई थी, बट वो जो स्टार्ट टू सी माय टीचर एंड लाइक यू नो माय टीम सो हैप्पी, इट वाज लाइक
0: क्या बात है। काश, हाउ आई विश मैं आपसे रिक्वेस्ट कर पाता कि आपकी अगर वो बाउट्स की उस फाइट की हम लोग वीडियो देख पाते तो शायद हम लोग एक लाइव मूवी देख पाते। क्या बात, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली फैंटास्टिक, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। एक और फन क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन, क्रिएटिव। अगर आपको मौका मिले तो अंतरिक्ष से आए हुए किसी प्राणी से, किसी एलियन से मिलना चाहेंगी आप, और क्या पूछेंगी उससे?
1: हाँ, एलियन है। एवेंजर्स करके जो मूवी है उसमें लोकी करके कैरेक्टर है,
0: yes.
1: तो बहुत ही पसंद आए, एंड जिस ढंग से उन्होंने उस मूवी में उसको उनको पेश किया उनका कैरेक्टर,
0: okay.
1: तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को कूल रखते हैं,
0: wow.
1: फिर शैतानी में भी उनके एक प्यारापन होता है, एंड ही इज वेरी ह्यूमरस। तो पूछना तो मैं पता नहीं क्या चाहूंगी, वो मुझे नहीं समझ में आता, पर मैं उनके साथ रहना चाहूंगी एंड देखूंगी कि वो किस ढंग से उनका मतलब यू नो किस ढंग से वो सब चीजें डील करते हैं, उनका नजरिया, वो somehow I would like to experience that in his presence.
0: Okay, okay, fantastic. Loki the demigod. क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों आपने सुना, एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं मालविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब। अब ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन भी हो सकता है और मैं फिर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका जवाब जरूर दें। आपके जीवन में आज तक की डेट में सबसे अच्छा तोहफा आपको क्या मिला, गिफ्ट आपको क्या मिला?
1: मेरे लिए सबसे प्रेशियस गिफ्ट है मेरी लाइफ, मेरे माता पिता ने मुझे दी है। एंड इस लाइफ के कारण मैं इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले चुकी हूँ एंड ग्रोथ हो चुकी है विद दोज एक्सपीरियंसेस, लाइक वेरी थैंकफुल टू गॉड माय पेरेंट्स।
0: ओके ओके, अमेजिंग, फैंटास्टिक। दोस्तों आपने सुना, तो चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुन लें।